0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिद्म 90.4 FM
1: सुनो दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है, सुनो दिल से।

0: बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।
2: राधा, ओ राधा।
3: क्या है? मैं नहीं बोलती।
2: देखो आज होली है, मुझे तंग क्यों कर रही हो?
3: जा, मैं नहीं सुनती।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

0: राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भगवान पर अटूट विश्वास है और नाम जब भी निरंतर चल रहा है, किंतु जब जीवन में कठिन परिस्थिति आती है तो ईश्वर के ऊपर विश्वास के साथ साथ जीवन समाप्त करने का या सब छोड़कर सिर्फ भगवान की शरण में रहने की आकांक्षा होती है। महाराज जी, ऐसे में इस परिस्थिति में क्या करना?
1: निरंतर नाम चल रहा है अभी हमें संशय है, क्योंकि निरंतर जब चलने लगेगा तो कुछ स्थिति आ जाती है। हम लोग उसी मार्ग के पथिक है ना, इसलिए एक स्थिति आ जाती है, कोई भी विपत्ति हमें परास्त नहीं कर सकती, कोई भी दुख हमको उदास नहीं कर सकता, क्योंकि नाम चल रहा है। जब ज्यादा कष्ट होता है तो ज्यादा भजन होता है, शांत। जब ऐसा लगता है शरीर छूट तो नहीं जाएगा तो एकदम भगवदाकार वृत्ति, भगवान आ रहे हैं। तो निरंतर भजन शब्द से हम कह रहे हैं कि इस पर सुधार करो। निरंतर अभी नहीं हो रहा है, जिस दिन अव्यावृत भजना अखंड भजन होने लगेगा तो स्थिति आ जाएगी। अटूट विश्वास जब है तो टूट कैसे सकता है? कुछ भी हो, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे, अब कुछ भी हो। अब क्या, जब आपसे प्यार किया फिर हम क्यों किसी से सिखवा करें? भगवान, अब तुम जैसा चाहो वैसा खेलो, जैसा चाहो वैसा विधान करो, मैं उसी में राजी रहूंगा जैसे तुम मुझे रखना चाहते हो। अरे मस्त, नाम जब चल रहा है तब ये मस्ती आएगी, नहीं ऐसे नहीं आएगी। नाम जब चल रहा है तो ये मस्ती आएगी, नहीं मस्ती नहीं आ सकती। इतनी विपत्तियां, मनुष्य जीवन में इतना संघर्ष है कि कदम कदम ऐसा लगता है यार अब खुशी हुई, और अगला कदम इतने दुख में पड़ जाता है कि लगता कैसे निकल पाऊंगा इस दुख से। तो फिर एक सुख का प्रकाश आता है, फिर एक ऐसी समस्या आ जाती है, फिर ये पूरा जीवन चलता रहता है, ये पूरे जीवन। और ये सोचना कि शरीर को मिटा दें, ये कोई समस्या का हल नहीं है। शरीर मिटा देने से एक महापाप बन जाएगा और वो हमारी दुर्गति कर देगा। तो ये जो लोग सोचते हैं कि मैं कर लूं समस्या का समाधान हो गया, बिल्कुल नहीं, भारी समस्या मोल ले ली, आगे तुम्हें परिणाम पता नहीं। इसलिए आप तो कभी कोई निदान है ही नहीं, हमको लड़ना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए, हमें चाहे बेइज्जती हो, चाहे अपमान हो, चाहे दुख हो, हमें लड़ना चाहिए, हमें नहीं करनी चाहिए, आखिरी हद तक मुझे सहना चाहिए। अच्छा, सब छोड़कर भगवान की शरण, वो आप हो क्या? वेश बदल लेना भगवान की शरण है? नहीं, इस भूल में मत रहना। क्या स्थान बदल लेना भगवान की शरण है? ये अंदर की बात है, अंदर से भगवान की शरण में हो तो आप महात्मा हो, और बाहर से आप महात्मा का वेश है और अंदर से रुपया चाहिए, भोजन चाहिए, नाना प्रकार के सांसारिक सुख चाहिए, तो आप विषयी पुरुष हो, आप महात्मा नहीं हो। तो आप पैंट शर्ट में हो, मेहनत से कमाते हो, धर्म से चलते हो, नाम जप करते हो और भगवान का चिंतन कर, बढ़िया हो, आप बढ़िया हो। तो हमें लगता है कि ये कोई निदान सोचे कि मैं समस्या का समाधान बाबा जी बन करके, तो मुझे लगता है नहीं। ऐसी ऐसी समस्याएं हैं जिनका केवल निदान भगवान है, दूसरा कोई निदान नहीं। सोचो, साल, दो साल, चार साल, पांच साल, आप बोल दो कि आप ब्रह्मचर्य से रहो, कोई मनोरंजन नहीं करोगे, आप ये खाओगे, आप ऐसे रहोगे, तो एक एक दिन हम काट सकते हैं कि यार साढ़े चार साल रह गए, अब चार साल रह गए, अब पांच साल, पूरी जिंदगी मनोरंजन नहीं कर सकते, पूरी जिंदगी कोई रिश्ता नहीं है, पूरी जिंदगी में किसी भी तरह का कोई सुख नहीं है सांसारिक। आप जरा थोड़ा विचार करके डालिए आप इस बात पर, आप विचार करो क्या साधु का जीवन है, क्या साधु का जीवन, ना कोई मनोरंजन, ना कोई व्यवहार, ना कोई रिश्ता, ना कोई संबंध। साधु का जीवन ऐसा जीवन नहीं है, बहुत खतरनाक जीवन, बहुत खतरनाक जीवन। ये न सोचो कि बहुत आनंद में जीवन कटता है, बहुत कष्ट में जीवन कटता है सच्ची साधुता के लिए। और जो निकल गया सो मुक्त हो गया, और नहीं फिसल गया तो फिर आओ नया जन्म, फिर साधना करो, फिर भजन करो। इसलिए कोई समस्या से भागे कि मैं समस्या का निदान साधु बन के पालूंगा, तो भूल मत करना, बड़ी समस्या है। मतलब ये कोई ना सोचे कि संत बनना सहज है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। बाबा जी बनने का मतलब मर गए, अब मर के हम चल रहे हैं। जीवित मर जाए उलट आप में समाय, यही दिलगिरी है। मरा हुआ पुरुष महात्मा होता है, जिसका मन मरा, जिसकी इंद्रियां मरी, जिसकी कुछ नहीं चाहिए, जा ही नहीं चाहिए कबहु कछु तुम संसहज सने। तो ये दोनों बातें आप कर लेना, या समस्या में फंस कर बाबा जी बन जाना, ये दोनों बातें समाधान नहीं है। समस्या से लड़ना समाधान है, और वो आप तभी लड़ सकते हैं जब आपका भगवान का भरोसा दृढ़ होगा और नाम जप करोगे, तो कोई न कोई रास्ता भगवान ऐसा निकाल देंगे जिससे आप समस्या से बच जाएंगे। नहीं तो समस्याएं पीस डालती है, अंदर ही अंदर खोखला कर देती है, आदमी चिंतन से परेशान हो जाता है, और जब परेशान हो जाता है तो उसे एक ही रास्ता नजर आता है, और वो रास्ता है नहीं, वो और परेशानी पैदा कर देगा अगले जन्म में जा करके। इसलिए नाम जप करो और सहन करो और लड़ना सीखो। हमको विपत्ति दुख संघर्ष करना पड़ेगा, हमको लड़ना पड़ेगा, इनसे विजय प्राप्त करना पड़ेगा। हार जाऊं तो भी लड़ना पड़ेगा, हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, हमको इन दुख विपत्तियों से लड़कर पार होना ही है।
0: मर्जी हमें लगता है कि कोई ऐसा साधन मिल जाए जिससे तुरंत झट से हमारे दुख दूर हो जाएं।
1: अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, अपने कर्म को जीव को भोगना होगा। ये जब भगवान कह रहे हैं तो और की हम बात कैसे माने। भगवान कह रहे ना अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, भोग भोगना होगा। ये सब इधर से जंतुर बनाने से और राख लेने से और कलावा बनाने से तुम्हारे प्रारब्ध नहीं नष्ट हो जाएंगे। हाँ पवित्र कार्य है करना चाहिए, गृहस्थी में देव मंगल के लिए, जगत मंगल के लिए यज्ञ करना चाहिए, हवन करना चाहिए, ब्राह्मणों के द्वारा अनुष्ठान कराना चाहिए, लेकिन प्रारब्ध भोग नहीं कटता, खुली बात है। हाँ हम ऐसी एक कला जानते हैं जो ऐसे दुखों में भी आप सह सकते हो, वो कला है भगवान का नाम, वो खुली बात कहते हैं। खूब नाम जप करो और भगवान में चित्त जोड़ो, तो चित्त भगवान से जब जुड़ा होता है तो आनंद होता है। शरीर दुख में है, भारी समस्या है, लेकिन मन आनंद में, यही यही बात है। सावई मन कृष्ण पदारविंदयो, मन भगवान कृष्ण के चरणों में लगाए तो आनंद है, राधा जी के चरणों में लगाए तो आनंद है। अगर मन संसार में रहेगा तो कष्ट ही भोगना पड़ेगा, कोई ऐसा नहीं। इतने पढ़े लिखे डॉक्टर, इतने बड़े सर्जन, इतने बड़े ये सब भगवान ने तो बनाए हैं। अगर छू से होता तो बढ़िया काम बन जाता, डॉक्टरों की जरूरत क्या है। बिल्कुल इधर उधर मत भटको, किसी को कोई परेशानी है सीधे अस्पताल जाओ। जैसे हम दवा करवा रहे हैं, टेबलेट खाते हैं, डायलिसिस करवाते हैं, और भगवान की शरण में पड़े और नाम जप करते हैं, बिल्कुल सीधा रास्ता है। हाँ कुछ ऐसे मंत्र हैं, यदि सकामता पूर्वक उनका अनुष्ठान किया जाए तो कुछ दर्द को कम कर सकते हैं, समस्या को कम कर सकते हैं, मिटा नहीं सकते, मिटाने की सामर्थ्य नहीं, प्रारब्ध भोग भोगना पड़ता है। नहीं रामकृष्ण परमहंस जी इतने सिद्ध महापुरुष, उनके गले में कैंसर था, बड़े बड़े महापुरुषों के जीवन में कष्ट पाया गया, भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के हाथों में तो बड़े बड़े कष्ट सहने पड़े। ये छूछा से नहीं जाते भैया, खूब राधा राधा नाम जप करो, सह करके निकल जाओ, बस ये बात है।
0: मर्जी ऐसा कहा जाता है वहां गए लड़का हो गया, यहाँ गए ये ठीक हो गया।
1: तो लड़का होना होगा तो कहीं जाओ चाहे ले जाओ हो जाए, और नहीं होना होगा तो चाहे जाओ चले जाओ नहीं होगा। वो संयोग होता है, जैसे देखो आपका कोई काम नहीं बन रहा था, आप हमारे पास आए, अब वो संयोग बन गया आपके कर्म का और काम हो गया, बोले जय बाबा की। वो प्रेमानंद से नहीं बना, वो तुम्हारे कर्म का संयोग था, वो तुम्हारे कर्म का संयोग था। बिल्कुल समझिएगा, ये नौटंकी नाटक नहीं, खुली बात है। आपका कर्म आपको सहयोग दिया तो आपका काम बन गया, आपका कर्म आपको सहयोग नहीं देगा तो काम नहीं बनेगा। एक हमारे जीवन की धारा है, उसमें दुख सुख दोनों किनारे हैं, हमारा जीवन इसमें होता हुआ जाएगा, कभी सुख कभी दुख, कभी सुख कभी दुख, ऐसा चलता रहेगा, कोई मिटा नहीं सकता यार, हमारी समझ में नहीं आता।
0: तो महात्माओं के पास क्यों जाना चाहिए हमारे जी?
1: सुकृत बढ़ते हैं, बुद्धि शुद्ध होती है, प्रारब्ध को सहने की सामर्थ्य आती है, आगामी हमारे जो कर्म है वो सुधर जाते हैं, पीछे के जो कर्म है वो भस्म हो जाते हैं, प्रारब्ध भोगने की सामर्थ्य आती है।
0: हमें तो लगता है हमारी मनोकामना पूरी हो जाएगी, चलो चलते हैं एक बार, तो क्योंकि हर कोई प्रार्थना तो करता ही है महाराज जी, 100 में से 50 तो करते होंगे हाँ मैं पास हो जाऊं।
1: तो ये कर्म है कि नहीं है? ये भी तो एक कर्म है, उनका सत्कर्म बना। वो नंगे पैर चल करके आ रहे हैं या जूता पहन करके आ रहे हैं या किस भावना से आ रहे हैं, और भावना से आए और संत दर्शन की कामना की, तो एक कर्म भी तो बना उनका। इस कर्म से उनको लाभ नहीं मिलेगा। मान लो संत दर्श को चालिए तज माया अभिमान, ज्यो ज्यो पग आगे बढ़े कोटि यज्ञ समान। तो कोई आ रहा है 1000 कोस से, कोई 500 कोस से कर सवारी में धक्का खाते हुए ऐसे, और रोड में किनारे खड़ा है रात्रि भर, तो ये उसका तपस्या नहीं बनी, ये उसका परम पवित्र कर्म नहीं बना। अब ये कर्म कामना पूर्ण कर दे तो प्रेमानंद उसमें कहाँ है? ये उसका कर्म है, ये उसकी मेहनत है, ये उसकी भावना है, ये उसकी श्रद्धा है, ना कि हम है। अब उसको लगेगा कि हम प्रेमानंद के दर्शन के हमारा काम बन गया। नहीं, तुम्हारी मेहनत, तुम जो सैकड़ों किलोमीटर चल करके आए और खड़े रहे घंटों और फिर इसके बाद दर्शन हुआ, तुम्हें आनंद लगा, ये तुम्हारा कर्म तुमको सुख दे रहा है। नहीं तो देखो, अगर हमारा कर्म बिगड़ जाए तो हम कह रहे हैं फिर हमको कोई सुख नहीं दे सकता। हमारा कर्म, संतों के पास जाना, संतों की दंडवत करना, उससे पाप नष्ट होते हैं, पुण्य बढ़ते। संत दर्श जिमि पातक टरई, पाप नष्ट हुए तो दुख का नाश हुआ, सुख बढ़ा। ये तो सिद्धांत है, इसमें कोई चमत्कार थोड़ी है, ये तो सिद्धांत है ऐसा।
2: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527 88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527 88291 या 95238 74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है। तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
3: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
4: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
3: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
4: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
3: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करे।
4: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
3: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
5: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।

0: क्या चाहते हो? मैं ना जाऊँ अपनी दोस्त की शादी में।
1: क्यों, क्या हुआ है?
0: तुम्ही ने तो कहा था मुझे डिजाइनर लहंगा, साड़ी और गाउन दिलाओगे।
1: अरे तो कौन सी बड़ी बात है, आज ही चलते हैं गोपालगंज में लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स। वहाँ तुम्हें तुम्हारी मन पसंद के अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाएंगे।
0: फिर ये भी ठीक है, चलो चलते हैं लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स।
2: शादी विवाह या किसी भी शुभ अवसर पर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स जो है मेन रोड गोपालगंज में।
1: तो भौजी आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
3: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है पर कोनो जचल है ना।
1: ई बात बा, तो ऐसा करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में।
2: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
4: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
5: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
6: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
7: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
8: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-3945-651 या 97-097-06-575।

0: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
1: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
2: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा।
3: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
4: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
2: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा साड़ी सूट पीस, हर डिजाइन हर रंग हर बजट में।
1: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
2: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
4: कॉल करे 87894-18744।
5: अरे स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
2: अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग।
4: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
2: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
4: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
2: एक बार सेवा का मौका जरूर दें। विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27 बंजारी गोपालगंज।
4: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।
6: ठक ठक।
7: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
8: अच्छा मिला ही नहीं।
7: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
9: जी हाँ कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
7: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
9: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।

0: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
1: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
2: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
0: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
3: नन्ना मुन्ना लाही हूँ देश का सिपाही हूँ।
4: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
3: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
4: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
3: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
5: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
6: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।

0: श्री भारतीय एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
1: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम एक डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
0: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
1: जानकारी है तो कॉल करे 6205-62112 पे।
2: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
3: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
2: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
3: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड शिव मंदिर के ठीक सामने गोपालगंज, प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
4: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे.जी. शरण MD फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे.जी. शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
5: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
6: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 76545-67666।

0: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
1: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
2: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
1: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगढ़ पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82 101 87 952। नियम और शर्तें लागू।

0: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल घोष मोड़ दरगाह रोड गोपालगंज।
1: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
2: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
3: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 6200424403 6200424403।
4: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
5: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
4: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
6: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
7: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा,
8: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
7: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
9: यहां सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
7: संपर्क 99 393 65 930।

0: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
1: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है बीके टाइल्स। बीके टाइल्स, यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
2: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं,
1: अरार मोड़ एसपी कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड़ के पास कुचाई कोट,
2: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड थावे मीरगंज और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़ भोरे।
1: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक हकाम बाईपास सिवान
2: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक मैरवा सिवान।
1: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी बीके टाइल्स ब्रांच पर आए और करे बेहतरीन खरीदारी।
2: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करे गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच में 9693101611,
1: कुचाई कोट ब्रांच में 9693101602, भोरे ब्रांच में 8207856404,
2: सिवान ब्रांच में 9942071405, मैरवा ब्रांच में 8207856403।
1: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
2: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
1: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
2: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
1: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
2: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
1: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
2: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।

0: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलता पूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
1: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टैबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, साइटिका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
0: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलता पूर्वक करते हैं।
2: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता
0: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
2: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
0: और 90971660002।

0: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिनोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
2: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
2: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
2: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710-3992 या 9765-65750।
3: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोडवा पर लड़खड़ा के कहे चलतनी, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
4: अरे ए बबुओ, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आँख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
3: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू। अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आ गइल बनी। यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीर फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करत तनी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आँख में कोनो तरह के दर्द भी ना हुई और ऑपरेशन भी हो जाए।
5: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुपर सिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से, साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर MA अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने, रालसन होटल के पश्चिम, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9903-69015 पे।
6: नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल, पहले मुख्य हालचाल। सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर की गई बैठक, पॉक्सो एक्ट के आरोपी को हुई आजीवन कारावास की सजा, थावे प्रखंड का जिला पदाधिकारी ने किया निरीक्षण, सांप काटने से एक किशोरी की हो गई मौत और कभी पान बेचने वाले सनी गुप्ता आज अपने संघर्षों के दम पर बन गए सप्लाई इंस्पेक्टर। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र, अब हालचाल विस्तार से। सिपाही के पदों पर आयोजित तो होने वाली लिखित परीक्षा को स्वच्छ, निष्पक्ष एवं कदाचार मुक्त वातावरण में संपन्न कराने के लिए जिलाधिकारी समीर सौरभ की अध्यक्षता में आज एक बैठक की गई। इस दौरान परीक्षा की तैयारियों, सुरक्षा व्यवस्था एवं आवश्यक सुविधाओं की विस्तृत समीक्षा की गई। जिला पदाधिकारी ने परीक्षा से जुड़े सभी अधिकारियों को निर्देश दिया कि परीक्षा संचालन में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए तथा केंद्रीय चयन पर्षद द्वारा जारी दिशा निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करना होगा। बैठक में उप विकास आयुक्त गौरव कुमार, अपर समाहर्ता राजेश्वरी पांडे, अनुमंडल पदाधिकारी अनिल कुमार सहित तमाम अधिकारी गण मौजूद रहे। आज जिलाधिकारी समीर सौरभ ने थावे मां भवानी के मंदिर में पहुंचकर विधि विधान से पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने जिले की सुख समृद्धि एवं जन कल्याण की कामना करते हुए माता से प्रार्थना किया। जिलाधिकारी ने मंदिर परिसर में चल रहे विकास एवं सौंदर्यीकरण के कार्यों का निरीक्षण भी किया। उन्होंने प्रगति के संबंध में जानकारी ली और कार्यों को निर्धारित समय सीमा के अंदर गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा करने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने कहा कि मां थावे दुर्गा मंदिर जिले का महत्वपूर्ण धार्मिक एवं पर्यटन स्थल है। यहां आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सभी आवश्यक कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाएगा। उन्होंने मंदिर परिसर की स्वच्छता, श्रद्धालुओं की सुविधा एवं मूलभूत व्यवस्थाओं पर भी विशेष ध्यान देने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। 2024 में भोरे थाने में एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना हुई थी। इस मामले में पुलिस ने दो वर्षों के भीतर ही सुनवाई पूरी करते हुए इसके मुख्य आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुना दी। साथ ही आरोपी को 50,000 रुपए के अर्थ दंड की सजा भी सुनाई गई है। अर्थ दंड की राशि जमा नहीं करने पर आरोपी को 6 महीने की अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भी भुगतनी होगी। बताया जा रहा है कि जिस आरोपी को सजा हुई है उसका नाम जितेंद्र शाह है। यह भोरे थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर गांव के राम नरेश शाह का पुत्र बताया जा रहा है। गोपालगंज पुलिस प्रभावी अनुसंधान एवं न्यायालय में की गई सशक्त पैरवी के परिणाम स्वरूप आरोपी को कम समय में सजा दिलाने में कामयाब हो सकी। पुलिस ने कहा कि अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक दरोगा सिंह के द्वारा प्रभावी पैरवी प्रस्तुत की गई और आवश्यक साक्ष्य भी न्यायालय में प्रस्तुत किए गए, जिसके वजह से आरोपी को सजा हो गई। आज जिलाधिकारी समीर सौरभ ने थावे प्रखंड कार्यालय का भी निरीक्षण किया। वहां उन्होंने परिसर की व्यवस्थाओं, साफ सफाई और विभिन्न शाखाओं के कार्यों का जायजा लिया। इस दौरान साफ सफाई की स्थिति संतोषजनक नहीं मिलने पर उन्होंने नाराजगी व्यक्त की। संबंधित अधिकारियों को परिसर में नियमित साफ सफाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सरकारी कार्यालयों में स्वच्छ एवं व्यवस्थित वातावरण होना आवश्यक है, जिससे आम जनता को बेहतर सुविधा मिल सके। भोरे थाना क्षेत्र के छटियाओं गांव में एक जहरीले सांप के काटने से 17 वर्षीय किशोरी की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि सांप के काटने के बाद परिजन किशोरी को लेकर प्राथमिक इलाज के लिए सरकारी अस्पताल में पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद इस लड़की को पटना रेफर कर दिया। पटना ले जाते समय रास्ते में ही इस युवती ने दम तोड़ दिया। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। बताया जा रहा है कि यह मृत युवती छटियाओं गांव के राम पुकार राम की 17 वर्षीय पुत्री गायत्री कुमारी थी। परिजनों के अनुसार गायत्री रात में घर के अंदर चौकी पर सो रही थी, इसी दौरान जहरीले सांप ने इसके गर्दन पर काट लिया। सांप के काटते ही उसकी तबीयत बिगड़ने लगी, वह अचेत हो गई। परिजन आनंद फानन ने उसे सरकारी अस्पताल में भर्ती कराए, जहां से डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे रेफर कर दिया और पटना जाते समय बच्ची की रास्ते में मौत हो गई। नगर थाना क्षेत्र के बसडीला गांव में एक छोटी सी गुमटी में कुछ वर्ष पहले पान बेचने वाले सनी कुमार गुप्ता ने अपने हौसले बुलंद और सच्ची मेहनत के दम पर आज परिस्थितियों को बदल दिया। बताया जा रहा है कि सनी कुमार गुप्ता को 17वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा, जो बिहार लोक सेवा आयोग ने आयोजित की थी, इसमें सनी कुमार गुप्ता को 1505वीं रैंक मिली है और इन्हें सप्लाई इंस्पेक्टर का पद प्राप्त हुआ है। आज सनी कुमार गुप्ता से हमारी बातचीत हुई। ये बसडीला गांव के विनोद गुप्ता के पुत्र हैं। इन्होंने काफी संघर्ष के बाद सप्लाई इंस्पेक्टर का पद प्राप्त किया है। हालांकि इसके बाद भी ये हार नहीं माने हैं। इन्होंने अगली परीक्षा की तैयारी भी शुरू कर दी है। इसके बाद भी इनका इससे बेहतर रैंक पर अपनी सेवा देने का संकल्प है और उसकी तैयारी में लगे हुए हैं। आज सनी कुमार गुप्ता से हमारे रेडियो रिमझिम के संवाददाता ने बातचीत की तो उन्होंने कहा,
7: धन्यवाद पहले आपका और आपको नमस्कार। ये जो जर्नी है काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहा। हमारे जैसे जो परिवार से जिस बैकग्राउंड से हम लोग आते हैं, और सबसे पहली बात होती है कि आप जो चीज़ करना चाहते हैं उसके लिए डेडिकेटेड होना। परिस्थितियां हर एक समय आएंगी और परिस्थितियों से लड़ के ही कुछ किया जा सकता है। तो मैंने जब इस फील्ड में प्रयास किया, शुरुआत किया हमने, तो मेरा लक्ष्य फिक्स था कि मुझे यही करना है। फिर मैं कई बाधाएँ आई, मैंने उनको स्वेच्छा से स्वीकार किया और उसका सामना किया, और मेरा ये तीसरा प्रयास है और इस प्रयास में मैंने जाके ये उपलब्धि हासिल की, जिसमें मेरे परिवार, मेरे दोस्त, मेरे विशेषकर नाना नानी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। सबसे बड़ा श्रेय तो मैं अपने नानी जी को देना चाहता हूँ, नाना जी को देना चाहता हूँ। इसके बाद मेरे दोस्त, माता पिता, इन सब ने मेरे लिए बहुत सहयोग किया और मुझे बहुत खुशी होती है कि अच्छे ऐसे दोस्त, ऐसे समाज, ऐसे मेरे सहयोगी मिले, मेरा सहयोग किया उन्होंने समय समय। जी, मैं सप्लाई इंस्पेक्टर के पद पर चयनित हुआ हूँ। मेरा रैंक 1505 है।
6: आज पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी के निर्देश पर साइबर ठगी के शिकार एक व्यक्ति को साइबर थाना से इंसाफ मिला। उसके साइबर अपराधियों द्वारा लूटे गए पैसे वापस मिल गए। बताया जा रहा है कि पुलिस को कर्णपुरा के रहने वाले दुर्गेश कुमार शाह ने अपने साथ हुए साइबर ठगी की सूचना दी। पुलिस ने तत्काल एक्शन लिया और साइबर ठगी के 24,370 रुपए की राशि वापस कराकर पीड़ित के खाते में भेज दिया। पुलिस ने जनता से अपील किया कि किसी भी प्रकार की साइबर ठगी होने पर तत्काल 1930 पर कॉल करें अथवा www.cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें। पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी ने अपने कार्यालय में आज लोगों की शिकायतों को सुना। इस दौरान बहुत सारे मामलों का निष्पादन किया गया और कुछ मामलों को संबंधित अधिकारियों को जल्द से जल्द पूरी निष्पक्षता के साथ निपटाने का निर्देश भी दिया गया। पुलिस अधीक्षक प्रत्येक दिन सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक अपने कार्यालय में जनता की समस्याओं को सुनते हैं और लोगों की समस्याओं का समाधान करने का प्रयास भी करते हैं। बरौली थाना की पुलिस ने 154 लीटर से अधिक विदेशी शराब के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया है। एक बोलेरो गाड़ी को भी पुलिस ने जब्त किया है। बताया जा रहा है कि पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर मिर्जापुर के पास पुलिस ने नेशनल हाईवे पर छापेमारी की, जहां से इस बोलेरो गाड़ी को पकड़ा गया। इस गाड़ी के अंदर से 154 लीटर से अधिक विदेशी शराब मिली। इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए दुर्गेश कुमार पिता स्वर्गीय पंचा भगत जो कुचायकोट का रहने वाला है और दूसरा अनिल कुशवाहा पिता राम वृक्ष कुशवाहा, यह जमुनिया कुशीनगर उत्तर प्रदेश का निवासी है, दोनों को गिरफ्तार किया गया। गाड़ी और शराब को जब्त कर अब इन पर कार्रवाई की जा रही है। सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर जिला पदाधिकारी ने प्रशासन को अलर्ट कर दिया है कि किसी भी तरीके की कोई भी गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कुल 2 परीक्षा केंद्रों पर 2 पालियों में परीक्षा होगी, जिसमें कुल 1761 अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं। देर से आने वालों को एंट्री नहीं मिल सकेगी। मोबाइल, स्मार्ट वॉच और अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण पूरी तरह से प्रतिबंधित किए गए हैं। सभी केंद्रों पर सीसीटीवी नेटवर्क, जैमर, वीडियोग्राफी, बिजली, पेयजल और सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने का जिला पदाधिकारी ने आवश्यक निर्देश दिया है। 20 वर्ष पुराने एक मामले में अदालत ने फैसला सुनाया है। मामला विजयपुर थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। बताया जा रहा है कि हत्याकांड के इस मामले में एडीजे 14 की अदालत ने 2 अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए 7 वर्ष कठोर कारावास और 10,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर 6 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। पुलिस की प्रभावी अनुसंधान और न्यायालय में सशक्त पैरवी के आधार पर दोनों अभियुक्तों को सजा मिल सकी। इधर भोरे थाना क्षेत्र में चैन स्नेचिंग मामले में एक अप्राथमिकी आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि पुलिस की जांच अभियान में इसकी गिरफ्तारी की गई है। अभियुक्त मनीष मिश्रा उर्फ मनीष तिवारी पिता स्वर्गीय रमेश मिश्रा उर्फ रमेश तिवारी बताया जा रहा है, जो मुजफ्फरपुर जिले के सरिया थाना क्षेत्र के बखरा गांव का निवासी है। इसकी शराब और गाड़ी को पुलिस ने जब्त कर लिया है। विजयपुर थाना की पुलिस ने हत्या के एक मामले में 2 आरोपियों को आजीवन कठोर कारावास की सजा दिला दी है। बताया जा रहा है कि जिन आरोपियों को अदालत ने सजा सुनाई है उनमें एक आरोपी नंद किशोर सिंह पिता रामवचन सिंह और दूसरा नरसिंह भगत पिता महादेव भगत हैं। ये दोनों चखनी टोला सीतापढ़ी थाना विजयपुर जिला गोपालगंज के निवासी हैं। इन पर हत्या, लूट और डकैती के मामले दर्ज हैं, जिनमें पुलिस इन्हें गिरफ्तार कर न्याय हिरासत में भेज दी।
8: इधर थामे थाना की पुलिस ने पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत एक प्राथमिकी आरोपी को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि पकड़ा गया आरोपी सफी आलम पिता नसीब मियां, जो सासा मुसा थाना कुचायकोट का रहने वाला है। इस पर 26/5/2026 को पशु तस्करी के मामले में केस दर्ज हुआ था और तभी से आरोपी को पुलिस ढूंढ रही थी। अब इसे गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है।
6: और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर की गई बैठक, पॉक्सो एक्ट के आरोपी को हुई आजीवन कारावास की सजा, थावे प्रखंड का जिला पदाधिकारी ने किया निरीक्षण, सांप काटने से एक किशोरी की हो गई मौत और कभी पान बेचने वाले सनी गुप्ता आज अपने संघर्षों के दम पर बन गए सप्लाई इंस्पेक्टर। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
9: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
10: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
11: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
12: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
11: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
13: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
14: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
13: आज ही संपर्क करें 7388-89470 या 9198-88-6973।

0: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
1: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
2: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
3: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94395461 या 97-0-97-06-575।
2: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
3: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है, चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से।
2: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें, आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
3: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
4: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527-88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं, नंबर है 98527-88291 या 95238-74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: सुनिए,
2: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
1: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
2: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
1: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
3: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
4: इस सीजन

0: ठक ठक।
1: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा मिला ही नहीं।
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
2: जी हाँ कमल श्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
2: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
3: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
4: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिनो फेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक।

0: यहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
1: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
0: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
1: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
0: पता: शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलो फेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
1: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
0: संपर्क करें 84710309 या 9765665750।
2: अरे मुन्नी, तुम आ गई, चल मेरे कान का झुमका ला।
3: ओ माई गॉड, आज फिर से भूल गई।
2: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
3: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
4: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
3: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
4: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
3: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
4: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं। तो रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
5: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लेके आओ तनी बाबू।
4: अरे, ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
5: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
4: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
5: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लिया या? दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कर ले से का फायदा?
6: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
4: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।

0: एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
1: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
0: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
2: अरे स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
3: अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग।
4: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
3: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
4: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
3: एक बार सेवा का मौका जरूर दें। विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27 बंजारी गोपालगंज।
4: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।
5: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है, रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
6: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
3: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
4: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूर्व भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
3: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
4: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेष द्वारा।
3: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
4: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
3: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा, NH 27 गोपालगंज।
4: कॉल करें 7070-7563-100 या 7070-7542-400 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
7: सोहन मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
8: अरे टीना टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL जियो एयरटेल VI जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
7: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
8: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF लेमिनेशन प्रिंट फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है, माया क्लासिकल सिनेमा रोड शिव मंदिर के ठीक सामने गोपालगंज, प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399-66999।
9: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
10: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
9: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
10: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
9: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
11: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
12: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है, इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
11: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
12: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
11: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
12: जानकारी है तो कॉल करें 6252162112 पे।

0: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
1: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
0: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
1: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
0: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
2: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा, गोपालगंज। शाखा राजापुर बाजार, गोपालगंज। CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
3: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
2: तो देर मत कीजिए,
3: सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा, गोपालगंज। कॉल अस 9939721308।
4: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
5: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 86034 पे।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
2: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
1: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
2: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
1: या अभी कॉल कीजिए 9289922567 या 9779786164।
3: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण MD फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
4: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
5: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 76545 67666।

0: रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। अब समय हो गया है समाचार प्रभात का, आइए सुनते हैं आकाशवाणी के नई दिल्ली केंद्र से समाचार प्रभात।
1: जरूर पसंद आया होगा। अगर आप हमारे कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर लॉगिन कर सकते हैं www.newsonair.gov.in पर। तो इसके साथ ही शगुन और फरहत को दीजिए कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की इजाजत। नमस्कार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। ब्रिक्स देशों ने आतंकवाद और साइबर खतरों समेत वैश्विक सुरक्षा की बढ़ती चुनौतियों से निपटने के लिए आपसी सहयोग को और मजबूत करने का आह्वान किया। कतर के अमीर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन पर रास लाफान गैस संयंत्र दुर्घटना में 12 भारतीयों की मृत्यु पर दुख व्यक्त किया। भारत ने पाक अधिकृत कश्मीर की स्थिति पर पाकिस्तान की टिप्पणी की कड़ी आलोचना की, कहा पाकिस्तान मानवाधिकारों के हनन से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है। भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते की समीक्षा के लिए नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक, और फीफा विश्व कप में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हराया। इंग्लैंड और घाना के बीच मैच बगैर किसी गोल के बराबरी पर छूटा। और अब समाचार विस्तार से। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों और वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों की दिल्ली बैठक में आतंकवाद, साइबर खतरों और वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाने पर बल दिया गया है। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने की। बैठक में सदस्य देशों ने उभरती सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। विदेश मंत्रालय के अनुसार ऐसे सुरक्षा खतरों पर खासतौर से चर्चा हुई जो अब वैश्विक रूप ले चुके हैं। प्रतिनिधियों ने ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और आतंकवादी संगठनों द्वारा नई तकनीक के दुरुपयोग पर भी चर्चा की। बैठक में आतंकवाद रोधी तथा सूचना और संचार तकनीक के उपयोग में सुरक्षा संबंधी कार्य समूहों के कार्यों और उनके परिणामों की भी समीक्षा की गई। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने हर तरह के आतंकवाद के खिलाफ साझा कार्रवाई की प्रतिबद्धता दोहराई। बैठक के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और रूस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सर्गेई शोइगु के बीच नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक के क्रम में द्विपक्षीय वार्ता हुई है। इस वार्ता में दोनों पक्षों ने विभिन्न क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। श्री डोभाल ने सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता पर बल दिया।
3: हमें सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता है। गैर पारंपरिक खतरे राष्ट्रीय सीमाओं से आगे निकल चुके हैं और पारंपरिक जवाबी कार्रवाई से निपटने के लिए उन्होंने अपने बचाव के तरीके भी विकसित कर लिए हैं। नई और क्रांतिकारी तकनीकें, आतंकवाद के छिपे हुए रूप और तेजी से डिजिटल होती दुनिया में साइबर खतरे, ये सभी हमारे लिए एक बड़ा खतरा है।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी के साथ टेलीफोन पर बात की। कतर के अमीर ने रविवार को रास लाफान शहर में हुए हादसे में भारतीय नागरिकों की मृत्यु पर दुख जताया और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री मोदी ने पीड़ित परिवारों के प्रति सहानुभूति व्यक्त करने के लिए धन्यवाद दिया और घायलों को तुरंत चिकित्सकीय मदद पहुंचाने के लिए श्री थानी की सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम एशिया में शांति के प्रयासों में कतर की भूमिका की भी सराहना की। उन्होंने आशा व्यक्त की कि इलाके में शांति और स्थिरता बहाल होगी। इस बीच विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कतर में हादसे पर बताया कि दुर्घटना में मृतकों के शव वापस लाने के प्रयास जारी हैं।
4: रास लफान परियोजना में जो वहां एक विस्फोट हुआ, उस विस्फोट में 12 भारतीय नागरिक मारे गए हैं। इसके अलावा कुल 66 लोग ऐसे हैं जो घायल हुए हैं, वो लोग सब लोग सुरक्षित हैं और हॉस्पिटल में उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट हो रही है। ये 12 लोग के बारे में हम लोग कतर में वहां के सरकार के साथ और इनके परिवारजनों के साथ उनसे बातचीत हो रही है हमारी।
2: भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के हालात पर पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की टिप्पणियों की कड़ी आलोचना की है। भारत ने कहा है कि ये टिप्पणियां पाकिस्तान की नाकामियों को छिपाने और मानवाधिकारों के उल्लंघन से ध्यान भटकाने की कोशिश है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संवाददाताओं से कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में विरोध प्रदर्शन इसलिए हो रहे हैं कि पाकिस्तान वहां के लोगों का दशकों से आर्थिक शोषण, बुनियादी अधिकारों का हनन और प्रशासनिक दमन कर रहा है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी प्रशासन ने निहत्थे नागरिकों के साथ बर्बर व्यवहार किया, जरूरी सामान और दवाओं की आपूर्ति रोक दी गई है और इंटरनेट बंद है। श्री जायसवाल ने बांग्लादेश में देवी देवताओं की मूर्तियों के अपमान की खबरों पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है।
4: हम लोगों ने देखा कि बांग्लादेश में से कुछ खबर आई कि वहां पर हिंदू भगवान के तस्वीरों के साथ अपवित्र हरकतें हुई, जिसके कारण वहां पर विरोध प्रदर्शन हुआ है। और हम लोग क्या ये उम्मीद है कि बांग्लादेश की सरकार जो वहां पर चरमपंथी लोग हैं उस पर अंकुश लगाएगी और जो वहां पर अल्पसंख्यक समुदाय के लोग रह रहे हैं उसकी सुरक्षा को गारंटी करेगी।
2: खाड़ी क्षेत्र में जारी टकराव पर श्री जायसवाल ने बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फारस की खाड़ी में हैं। उन्होंने कहा कि 17 जून को अमरीका और ईरान के बीच सहमति पत्र पर हस्ताक्षर होने के बाद 11 जहाज होर्मुज जलडमरू मध्य से भारत पहुंचे हैं।
4: 11 जहाज जो भारत की तरफ आ रहे हैं, इसमें से 3 भारतीय जहाज हैं जो कि क्रूड ऑयल टैंकर्स हैं। इनमें 2,85,000 मेट्रिक टन क्रूड ऑयल है। इसके अलावा एक विदेशी पताका के साथ एक एलपीजी टैंकर जो भारत की तरफ आ रहा है और एक विदेशी पताका के साथ फर्टिलाइजर कार्गो के साथ वो आ रहे हैं। और जो अन्य 10 हमारे जहाज हैं वो भी हमारी उम्मीद है कि जल्द ही वो हॉर्मुज पार करके भारत की तरफ आ जाएंगे।
2: अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन होर्मुज जलडमरू मध्य में फंसे 11,000 से ज्यादा नागरिकों को निकालेगा। संगठन के महासचिव आर्सेनियो डोमिंग्वेज ने कहा कि इस अभियान में मदद के लिए जरूरी सुरक्षा की गारंटी ली गई है। इस अभियान में ईरान, ओमान और क्षेत्र के अन्य देशों और समुद्री उद्योग जगत का सहयोग लिया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र के जिनेवा कार्यालय में ईरान के राजदूत अली बहरीनी ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य व्यावसायिक जहाजों के लिए बिना किसी टोल के पूरी तरह खुला है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत और अमरीका ने प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते को आगे बढ़ाने के लिए उच्च स्तरीय वार्ता शुरू की है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में अमरीका के व्यापार प्रतिनिधि जैमिसन ग्रीर और भारत में अमरीका के राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
5: दोनों पक्ष 24 जुलाई से पहले एक अंतरिम व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इसी तारीख को व्यापारिक साझेदारों से होने वाले आयात पर अमेरिका का अस्थायी 10% टैरिफ समाप्त होने वाला है। 20 फरवरी को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने व्यापक टैरिफ को रद्द कर दिया था। इसके बाद अमेरिकी प्रशासन ने सभी देशों पर 24 फरवरी से 150 दिनों के लिए 10% का अस्थायी टैरिफ लगाया था। द्विपक्षीय व्यापार तनाव कम होने के बाद अमेरिका ने ज्यादातर भारतीय सामानों पर जवाबी टैरिफ को घटाकर 18% कर दिया और पहले से लगे 25% पेनल्टी टैरिफ को हटा दिया। भारत ने भी अमेरिका के कई औद्योगिक और कृषि उत्पादों पर टैरिफ कम करने या समाप्त करने का प्रस्ताव दिया था, जिनमें सूखे डिस्टिलर अनाज, पशुओं के चारे के लिए लाल ज्वार, ट्री नट्स, फल, सोयाबीन तेल, वाइन और स्पिरिट्स आदि शामिल हैं। रिशु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
2: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने, विकास की गति को तेज करने और समावेशी विकास के लिए सभी पक्षों से और अधिक सहयोग आवश्यक है। उन्होंने ये बात कल नई दिल्ली में ग्लोबल कन्वर्जेंस फॉर ग्रोथ सम्मेलन को ऑनलाइन संबोधन में कही। एक रिपोर्ट।
6: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि मौजूदा दुनिया में समृद्धि और चुनौतियां तो साझा हैं, लेकिन संघर्षों और अनिश्चितता का असर विकासशील और पिछड़े देशों पर अधिक पड़ता है। उन्होंने कहा कि इन चुनौतियों से निपटने के लिए साझा वैश्विक कार्रवाई जरूरी है। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि सभी देशों की घरेलू जरूरतें अलग अलग होती हैं और लगातार बने रहने वाले वैश्विक असंतुलन पर ध्यान दिया जाना चाहिए। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत की विकास दर मुख्य रूप से घरेलू मांग के कारण है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ रही अर्थव्यवस्था है और मध्यम अवधि में इसके सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर लगभग 7% रहने का अनुमान है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की अध्यक्षता में आयोजित इस सम्मेलन में विकसित और उभरती अर्थव्यवस्था वाले देशों ने हिस्सा लिया। इनमें भारत, ब्राजील, चीन, केन्या, दक्षिण कोरिया जैसे G7 देशों और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रतिनिधि शामिल थे। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
2: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार अल नीनो के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने के लिए खरीफ फसल के लिए एहतियाती तैयारियां कर रही है। श्री चौहान ने नई दिल्ली में कहा कि जुलाई में भी मॉनसून के कमजोर रहने की आशंका है।
7: ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है, हमारी खरीफ की फसल उस पर इसका असर पड़ सकता है। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना है। इनमें से 111 जिले हमारी उच्च प्राथमिकता वाले जिले होंगे क्योंकि इनमें सिंचाई 25% से कम है। मध्यम प्राथमिकता वाले मतलब जहां 25-50% सिंचाई की व्यवस्थाएं हैं ऐसे 76 जिले हैं और 128 जिले निम्न प्राथमिकता वाले इसलिए वहां सिंचाई के लिए डैम और बाकी चीजों की व्यवस्था है।
2: सरकार ने कहा है कि एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित है और इसकी निरंतर निगरानी की जा रही है। निगरानी में तेल कंपनियां, वाहन निर्माता, ईंधन परीक्षण एजेंसियां और अन्य पक्ष शामिल हैं। सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि सोशल मीडिया पर इस बारे में चल रही खबरें भ्रामक हैं, निराधार हैं। E20 पेट्रोल की शुरुआत के बाद से एथेनॉल मिश्रण के कारण इंजन की खराबी या वाहन में किसी तकनीकी खराबी की कोई व्यापक शिकायत सामने नहीं आई है। लखनऊ में कोचिंग सेंटर में आग लगने की घटना को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के कोचिंग संस्थानों के नियमन को मजबूत करने और अवैध कोचिंग सेंटर्स के विरुद्ध अभियान की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि पूरे राज्य में आग से बचाव के उपायों की जांच मिशन मोड में की जाएगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप में ग्रुप के में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हरा दिया है। पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2 गोल दागे और इसके साथ ही रोनाल्डो 6 विश्व कप टूर्नामेंट में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। ग्रुप एल के एक अन्य मैच में कनाडा के टोरंटो में क्रोएशिया और पनामा के बीच मैच चल रहा है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
1: धन्यवाद मनीष। देश की राजधानी से प्रकाशित हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों से पद्म सम्मान ग्रहण करने वाली हस्तियों की तस्वीरें और होर्मुज़ को पार कर भारत की ओर आगे बढ़ रहे 11 ईंधन वाहक जहाजों की खबरें सबसे ऊपर छाई हैं। दैनिक भास्कर ने CUET परीक्षा परिणाम में सर्वाधिक अंक पाने वाली देवीना गहलोत का चित्र प्रकाशित करते हुए खबर को शीर्षक दिया है 100% वाले 20% बढ़े, प्रीमियम संस्थानों में दाखिला कठिन होगा। नवभारत टाइम्स ने परीक्षा में सफल रहे कुछ छात्रों के चित्र के साथ इस समाचार को शीर्षक दिया है। दिल्ली विश्वविद्यालय के दाखिले में CUET के बाद भी 100% की रेस। देशबंधु ने मौसम के मिजाज को पहले पन्ने पर जगह दी है। खबर को शीर्षक दिया है दिल्ली NCR में मौसम ने ली करवट और 12 दिन की देरी से मुंबई पहुंचा मानसून, जबकि दैनिक भास्कर का कहना है मानसून 3 दिन देरी से मुंबई पहुंचा। पत्र ने दिल्ली NCR में अभी हफ्ते भर और गर्मी और उमस बने रहने का अनुमान प्रकाशित किया है। जनसत्ता ने संकट के बीच शीर्षक से प्रकाशित संपादकीय में कहा है कि पश्चिम एशिया में हालात पूरी तरह सामान्य नहीं हो पाने की वजह से देश में बढ़ती महंगाई के बीच अब इसका असर औद्योगिक उत्पादन पर भी दिखने लगा है। पत्र की राय में मौजूदा संकट के लिए भले ही वैश्विक परिस्थितियां जिम्मेदार हों, लेकिन इसके समाधान के लिए कारगर कदम उठाने के बजाय इसका बोझ जनता पर डाल देने को उचित नहीं ठहराया जा सकता। वहीं राजस्थान पत्रिका ने कृषि क्षेत्र में भारत की उपलब्धि को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। वैज्ञानिकों की 7 साल की मेहनत रंग लाई, सुपरफूड ग्रेन ओट्स में भारत बन रहा आत्मनिर्भर।
2: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। ब्रिक्स देशों ने आतंकवाद और साइबर खतरों समेत वैश्विक सुरक्षा की बढ़ती चुनौतियों से निपटने के लिए आपसी सहयोग को और मजबूत करने का आह्वान किया। कतर के अमीर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन पर रास लाफान गैस संयंत्र दुर्घटना में 12 भारतीयों की मृत्यु पर दुख व्यक्त किया। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की स्थिति पर पाकिस्तान की टिप्पणी की कड़ी आलोचना की। कहा, पाकिस्तान मानवाधिकारों के हनन से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है। और फीफा विश्व कप में पुर्तगाल ने उज़्बेकिस्तान को 5-0 से हराया। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
8: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमझिम 90.4 एफएम पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण। अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
9: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
8: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
9: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
8: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
9: पता, कमला राय कॉलेज रोड नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
8: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
10: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 9857788291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 9857788291 या 9522874088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
11: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
12: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
11: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
12: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
11: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 9555

0: रोज रोज का पेट दर्द।
1: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
2: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
3: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
2: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
0: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
4: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
5: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
4: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
5: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
4: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
5: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
4: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
5: कॉल नाउ 9056-59536 या 9056-57902।
6: ठक ठक।
7: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
8: अच्छा मिला ही नहीं।
7: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
2: जी हाँ, कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
7: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
2: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
9: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
5: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
4: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से।
5: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें, आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
4: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94-512-11-001।
10: डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, गाना चला दो, गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, गाना चला दो, गाना

0: गाना बजा दूं।
1: जानते हो दोस्तों, जिसे हम सिर्फ चिलचिलाती धूप कहते थे, आज उसी धूप से हम अपनी छतों पर ऊर्जा बना लेते हैं। तभी तो आज लगभग 37 लाख घर पीएम सूर्य घर बने हैं, जिससे देश का बिजली बिल घटा है और आत्मविश्वास बढ़ा है।
2: एक दशक पहले भारत सोलर पावर के मामले में बहुत पीछे था, लेकिन आज सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप 5 देशों में आ गया।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: क्या चाहते हो? मैं ना जाऊँ अपनी दोस्त की शादी में।
4: क्यों, क्या हुआ है?
3: तुम्ही ने तो कहा था मुझे डिजाइनर लहंगा, साड़ी और गाउन दिलाओगे।
4: अरे तो कौन सी बड़ी बात है, आज ही चलते हैं गोपालगंज में लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स। वहाँ तुम्हें तुम्हारी मन पसंद के अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाएंगे।
3: फिर ये भी ठीक है, चलो चलते हैं लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स।
4: शादी विवाह या किसी भी शुभ अवसर पर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स, जो है मेन रोड गोपालगंज में।
5: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
6: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
7: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा।
8: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
9: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
7: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
6: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
7: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
9: कॉल करें 87 894 18744।

0: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
1: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 8604348652 पे।
2: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
3: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
4: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
5: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
4: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9478434068 पे।
6: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
7: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है BK टाइल्स।

0: के टाइल्स यहाँ मिलेंगे, सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
1: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं,
0: अरार मोड़ SP कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड़ के पास कुचायकोट,
1: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड ठावे मीरगंज, और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़ भोरे।
0: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक हकाम बाईपास सिवान,
1: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक मैरवा सिवान।
0: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी BK टाइल्स ब्रांच पर आए और करे बेहतरीन खरीदारी।
1: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच में 9693101611,
0: कुचायकोट ब्रांच में 9693101602, भोरे ब्रांच में 8207856404,
1: सिवान ब्रांच में 9942071405, मैरवा ब्रांच में 8207856403।

0: का फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
1: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
2: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
1: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगढ़ पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82 101 87 952। नियम और शर्ते लागू।
3: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
2: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
3: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
2: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
4: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
5: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
4: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
5: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
4: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
6: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
7: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
6: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
7: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
6: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
7: जानकारी है तो कॉल करें 62052 61112 पे।

0: कब भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
1: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना?
0: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में। महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
2: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
3: अरे मुन्नी, तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
4: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
3: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
4: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
0: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी।
4: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
0: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
4: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
0: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
5: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज, जैसे
6: सभी प्रकार के नशा, जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोरायसिस तथा
5: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
7: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता,
5: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड, थावे रोड, भी मार्केट के बगल में, कृष्णा जी के मकान में।
7: जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
5: और 90971602।

0: का संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 9857788291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 9857788291 या 9522874088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
1: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोडवा पर लड़खड़ा के काहे चलतनी, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
2: अरे ए बबू, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आँख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
1: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू। अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आ गइल बानी। यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़ फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करतनी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आँख में कोनो तरह के दर्द भी ना हुई और ऑपरेशन भी हो जाए।
3: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुपर सिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर एम ए अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने रालसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9903569015 पे।
4: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
5: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे जे शरण, एमडी फिजिशियन, अब बैठ रहे हैं सुबह।

0: सुनिए सुनिए सुनिए,
1: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
0: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
1: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
0: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
2: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
3: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
0: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराएं नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहां है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
4: हमारे यहां दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
0: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
5: Now pick it up,
6: hello.
5: Now pick your phone up,
6: hello.
5: Pick it up,
6: hello.
5: Now pick your phone up.
7: हेलो, नमस्ते, नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूं आप सबकी दोस्त RJ भारती और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। और हमारे स्टूडियो की घड़ी में 5 बज चुके हैं और बिल्कुल समय के साथ हाजिर हो चुकी हूं। आप सभी के बीच आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम हेलो माई चॉइस के साथ। यदि आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो नंबर है 8029-94-11 पर कॉल करके जुड़ सकते हैं और अपने फरमाइश सुन सकते हैं। और अब बढ़ते हैं आगे और लेते हैं पहला कॉल और सुनते हैं इनकी फरमाइश।
8: हेलो।
9: हेलो
8: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 94.4 FM में। नाम बता दीजिए अपना।
9: अनवी।
8: और कहाँ से हैं आप?
9: दुबई से।
8: क्या हाल है आपका?
9: ठीक है।
8: क्या हो रहा है अभी?
9: बेबी को खिला रहे हैं, मेरे बेबी को। प्यारा से सॉन्ग सुना दीजिए।
8: नाम है आपकी बेबी का?
9: अनवी।
8: ओके, और कौन सा सॉन्ग सुनना है?
9: जो आपका इच्छा हो।
8: ओके, और ये सॉन्ग किसे सुनाना है?
9: मेरी बेबी को।
8: और सब बढ़िया है ना?
9: बढ़िया है।
8: चलिए फिर गाना प्ले करती हूँ, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रंजन 90.4 FM।
9: ओके।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रेंजन 90.4 FM में।
1: नरसी जी नमस्कार।
0: नमस्कार।
1: अरे तो बहुत परेशान हो गया, मैं सोचा कि अब लगेगा ही नहीं। मैं सोचा एक बार और ट्राई करता हूँ, बारिश तो बजी गया। और तो
0: बढ़िया है, आप बताइए।
1: बस ठीक है, आप लोगों के आशीर्वाद है, आप लोगों के सहारे चलते हैं, आप लोगों के आवाज के सहारे चलते हैं। इतनी काम छोड़ के आप लोगों के पास कॉल किया जाता है। और तो ठीक है,
0: मेरा बढ़िया, आप अपना बताइए। खाना हो गया आपका?
1: नाश्ता हुआ है, अब दोपहर में होगा ना, लंच में।
0: अच्छा जी,
1: आज अपने फरमाइश से एक गाना सुना देना कोई सा।
0: अपनी फरमाइश से?
1: हाँ।
0: अच्छा जी, आप नहीं बताइएगा?
1: नहीं, आज हम नहीं बताएंगे, आज पहली बार बोल रहे हैं आपसे।
0: अच्छा जी, चलिए बढ़िया,
1: भोजपुरी चलाना, बढ़िया चलाना अपने पसंद से। मैं भी ये भी देखूं कि आपका पसंद कैसा है, तो सुना दीजिए। ठीक है
0: फिर गाना प्ले करती हूँ, सुनते रहे सबके साथ।
1: थैंक यू,
0: करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: तब रामू काका हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
1: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लेके आओ तनी बाबू।
0: अरे ई सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
1: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
0: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
1: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लिए या दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कर ले से का फायदा?
2: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
0: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
3: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
4: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
3: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
4: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
3: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
5: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
6: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
5: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
6: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
5: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
6: जानकारी है तो कॉल करे 6205-62112 पे।
7: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
8: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
9: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
7: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
9: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
7: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेष द्वारा।
9: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
7: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
9: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा, NH 27 गोपालगंज।
7: कॉल करें 70-70-75-6300 या 70-70-75-4200 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
10: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं श्रृंगार वाटिका।
11: आज ही आए चंद्रगोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज या कॉल करें 86034-48652 पे।
12: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, शाखा राजापुर बाजार गोपालगंज। CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
13: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
12: तो देर मत कीजिए,
13: सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, कॉल अस 9939721308।
14: Now pick it up,
15: hello.
14: Now pick your phone up,
15: hello.
14: Pick it up,
15: hello.
14: Now pick your phone up.
16: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94911। जी हाँ 80-29-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
15: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका।
17: हाँ सब बताइए ठीक है।
15: मेरा बढ़िया, आप अपना बताइए।
17: बस चल रहा है, भगवान के दया दृष्टि है। मुझे गाना सुनना है तो राजा सिंह।
15: और इसका कौन सा सॉन्ग?
17: सॉन्ग का नाम है चोट लगे तुझको तो दर्द मुझे होता है, भाई भाई में अगर ये होता है।
15: और ये सॉन्ग किसको डेडिकेटेड भी है?
17: सबसे पहले तो आपका है और जितना श्रोता बंधु है सुनने वाले सही जिनका, सबसे अक्सर ज्यादा रामा जी हावे भाई को सुनाना है क्योंकि वो भी बहुत पुराने पुराने गाने का फरमाइश की तरफ।
15: जी जी
17: भैया दीजिएगा,
15: फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहे सबके साथ। रेडियो रिंग में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
17: आपका भी धन्यवाद।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 एफएम में।
0: नमस्ते।
1: नमस्ते,
0: हम बोल रहे हैं गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट से, रामपुर खरिया पंचायत से।
1: जी जी,
0: जयनाथ जयनाथ भगत।
1: क्या हाल है आपका?
0: ठीक है जी, आपको आप बताइए।
1: मेरा भी बढ़िया है।
0: हमको गाना सुनना है हाथी साथी को।
1: मेरा कौन सा सॉन्ग सुनना है आपको?
0: कोई भी सॉन्ग सुना दीजिए हाथी साथी।
1: अच्छा, और ये सॉन्ग किसी को डेडिकेटेड भी है?
0: आपको सुनाया जाए, जितना रेडियो रिंगिंग सुनने वाले हैं सबको सुनाएंगे।
1: चलिए फिर गाना प्ले करती हूँ, सुनते रहें सबके साथ रेडियो रिंगिंग 94.4 एफएम।
0: नमस्ते। नमस्ते
1: नमस्ते। आठन

0: एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
1: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
0: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
2: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
3: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
2: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
3: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
4: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
3: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
4: तो अगर आपको कुछ अच्छा कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
3: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
4: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
5: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
6: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
5: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे आईसीयू इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
6: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
7: अरे स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
8: अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग।
9: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
8: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
9: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
8: एक बार सेवा का मौका जरूर दें। विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27 बंजारी, गोपालगंज।
9: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।
10: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूं?
11: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहां दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
12: यहां सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
11: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
12: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
11: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
12: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
11: संपर्क करें 8470103992 या 9765665750।
13: जानते हो दोस्तों, जिसे हम सिर्फ चिलचिलाती धूप कहते थे, आज उसी धूप से हम अपनी छतों पर ऊर्जा बना लेते हैं। तभी तो आज लगभग 37 लाख घर PM सूर्य घर बने हैं, जिससे देश का बिजली बिल घटा है और आत्मविश्वास बढ़ा है।
14: एक दशक पहले भारत सोलर पावर के मामले में बहुत पीछे था, लेकिन आज सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप 5 देशों में आ गया।
13: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
15: Now pick it up,
16: hello.
15: Now pick your phone up,
16: hello.
15: Pick it up,
16: hello.
15: Now pick your phone up.
17: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में।
18: hello, hello, hello.
16: आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
17: हेलो मैम, नमस्ते।
18: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रेंज 90.4 FM में।
17: सुनील कुछ बात कर रहा हूँ मैम, मैं MP से।
18: जी जी, कैसे हैं आप?
17: बस ठीक है मैम, बस बैठे थे, आज बहुत जल्दी फोन लग गया मैम।
18: तो और सब बताइए, क्या हो रहा है अभी?
17: कुछ नहीं मैम, बस होकर इंतजार कर रहे थे और फोन लगाते हुए मैम।
18: अच्छा, तो बता दीजिए कौन सा गाना सुनना है आज आपको?
17: जी आज हमको सुनवा दीजिएगा गाने के बोल है, अकर इस दुनिया में अनजाने मिलते हैं, मिलते खो जाते हैं, फिल्म अंदाज से होएगा मैम।
18: ओके, और ये सॉन्ग किसी को डेडिकेटेड भी है?
17: कितने रेडियो रेडियो रिमझिम दोस्त लोग सुनते, सभी दोस्तों के साथ सुनना चाहते मैम।
18: ओके, तो गाना प्ले करें।
17: ओके मैम, धन्यवाद।
18: रेडियो रिमझिम में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो,
1: प्रणाम मैडम।
0: प्रणाम। बहुत बहुत स्वागत है रेडियो रंजन 90.4
1: पर। कॉल करते करते थक गए, एकदम बिजी बिजी बतावत रहे। का समाचार बा? ठीक बा ना?
0: हमार ठीक बा, अपन बताई रोवा रोवा कैसन बानी?
1: हम सब ठीक बा, पहाड़ में ठीक बा। वर्षा होले बिहार में ना होला?
0: अभी तो नहीं खेत, अभी तो बारिश होते नहीं है, गर्मी पड़ता।
1: यहाँ तो पूरा बारिश हो रहा है, रात में पूरा बारिश, सुबह पूरा बारिश पहाड़ में। हाँ, गाना सुना दी?
0: बताई कौन सा गाना सुने?
1: राम लखन, हिंदी मूवी के, मैं राम लखन ऐसे गाना बा ना।
0: हाँ हाँ,
1: सुना दे ना।
0: ठीक बा, अरे गाना के नाम सुना हो के बा?
1: रावत तो पहले सुना, उसके बाद में हम सुना, हम कोई सुनी।
0: हाँ हाँ,
1: हमारा नाम महेश शर्मा, कालीपुर से बोले था जी मैडम। तो प्रणाम सुना दे।
0: ठीक बा, प्रणाम। रेडियो रिम से मैं कॉल करे खातिर बहुत बहुत धन्यवाद।

0: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
1: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
0: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
1: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
2: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
0: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
2: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
0: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
2: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99-554-97-644।
3: ठक ठक।
4: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
5: अच्छा मिला ही नहीं।
4: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमलश्री में।
6: जी हाँ, कमलश्री। याद रखें, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
4: आप भी आए कमलश्री, कमलश्री, कमलश्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
6: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
7: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
8: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
9: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
10: आज ही आएं गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
11: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
12: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं, उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
10: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है चरक सफेद दाग।

0: स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
1: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
0: पता: जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी के दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
3: Now pick your phone up.
4: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माई चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94911। जी हाँ, 8029-94911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हाँ नमस्ते मैडम।
6: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 92.4 एफएम में।
5: मैडम गाना सुनना है।
6: क्या नाम है आपका?
5: रानी
6: जी।
5: रानी,
6: और कहाँ से हैं आप? रानी जी
5: कररिया से बोल रही हूँ।
6: ओके, क्या हो रहा है अभी?
5: अभी कुछ नहीं हो रहा है, बैठे हैं।
6: अच्छा जी, क्या करती हैं वैसे आप?
5: ऐसे घर पर रहते हूँ।
6: अच्छा, चलिए बोलिए ना, और हालचाल कैसा है आपका?
5: ठीक है, आपने सुनाइए मैडम।
6: मेरा भी बढ़िया है। तो बता दीजिए आपको कौन सा गाना सुनना है?
5: शारदा के आवाज में गाना कोई भी सुना दीजिए भोजपुरी में।
6: आप अपनी पसंद बता देते तो बहुत अच्छा होता।
5: अपने पसंद से सुना दीजिएगा शारदा के आवाज में।
6: जी हम तो रोज ही सुनाते हैं अपनी पसंद का। अभी कॉल तो फायदा आपको उठाना चाहिए ना। हाँ,
5: आज भी सुना दीजिएगा अपनी पसंद से।
6: अच्छा चलिए, और सॉन्ग किसी को डेडिकेट भी करेंगी?
5: आपको और जितना रेडियो सुनने वाला है उन सबको।
6: तो फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सब।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, नमस्ते
1: नमस्ते। बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 FM में।
0: जी पचकड़ा से बोलते हैं भोला जी।
1: हाँ हाँ, क्या हाल है आपका?
0: ठीक है, अपना बताएं।
1: मेरा भी बढ़िया है।
0: धूप तो बहुत तेज निकला है।
1: धूप तो है
0: भाई, तो कार्यक्रम बहुत भीड़ चल रहा है जी। 11:25 से कॉल कर रहा है लेकिन लगता ही नहीं है, बिजी बिजी बिजी अब जा रहा है। बहुत मेहनत किया है आज कॉल करने के लिए।
1: ये भोजन हो गया आपका?
0: हाँ हाँ, भोजन हो गया, आराम से घर में पंखा चल रहा है, सो कर कॉल कर रहे हैं आपके पास।
1: चलिए, गर्मी का मौसम है तो कोई कहाँ ही जाएगा।
0: ये
1: तो बता दीजिए कौन सा गाना सुनेंगे आप
0: आज? गाना एक सोहर सुनवा दीजिए, धनी धनी भारत लिहला जनामवा हो।
1: अच्छा,
0: वही वाला गाना सुना, सोहर सुना दीजिए।
1: ओके, और ये किसी को सुनाना भी चाहते हैं?
0: रेडियो रंजन के पूरे टीम को, जितना आदमी सुनते हैं, आप सुनेगा हम सुनेते हैं जी। भारती जी बोलते हैं लोग।
1: हाँ
0: हाँ, आवाज वैसे कर रहे हैं कि जी।
1: चलिए फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए
0: जी। जी
1: रेडियो रंजन 90.4 FM
0: जी। नमस्ते
1: नमस्ते।

0: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलता पूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
1: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, साइटिका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंताएं और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोरायसिस तथा
0: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
2: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता
0: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
2: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554493
0: और 9097160602।
3: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
4: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
5: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर एमडी सादाब के पास जो है ईएनटी स्पेशलिस्ट।
6: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर एमडी सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस्मत ईएनटी केयर सेंटर सिसवन ढाला के उत्तर आरके मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
7: अरे ए चाची, जब आंख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के काहे चलतनी, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
8: अरे ए बबुओ, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला, सुनले बानी की आंख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
7: अरे बाक चाची, तू कावना दुनिया में बारू, अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आगल बनी, यहाँ के आंख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आंख के ऑपरेशन करतनी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आंख में कोनो तरह के दर्द भी ना हुई और ऑपरेशन भी हो जाए।
9: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुपरसिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से, साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर एम ए अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने रालसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9903569015 पे।
10: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
11: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है, चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से।
10: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें, आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
11: पता जंगलिया मोहल्ला नूर मेडिकल के पास गोपालगंज, कॉल करें 9452111001।
12: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
13: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है बीके टाइल्स।
11: बीके टाइल्स, यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
10: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं,
11: अरार मोड़ एसपी कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड़ के पास कुचाई कोट,
10: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड थावे मीरगंज, और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़ भोरे।
11: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक हकाम बाईपास सिवान,
10: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक मैरवा सिवान।
11: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी बीके टाइल्स ब्रांच पर आए और करे बेहतरीन खरीदारी।
10: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करे गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच में 9693101611।
13: कुचाई कोट ब्रांच में 9693101602, भोरे ब्रांच में 8207856404,
10: सिवान ब्रांच में 9942071405, मेरवा ब्रांच में 8207856403।
14: Now pick it up, pick it up.
15: Hello.
14: Now pick your phone up.
15: Hello.
14: Pick it up, pick it up.
15: Hello.
14: Now pick your phone up.
15: Hello.
16: Jab phone ring de bajti hai to kehte hain hello. Hello. Hello. Hello. Hello.
17: Break ke baad aap sabhi ka ek baar fir se swagat hai Hello My Choice ke show mein. आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
18: हेलो
19: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM।
18: नमस्कार मैम।
19: नमस्कार,
18: मैं पप्पू ठाकुर बघई से।
19: क्या हाल है आपका?
18: बढ़िया जी, अपना बताइए।
19: मेरा भी बढ़िया है।
18: आज भी तो बहुत गर्मी है।
19: जी गर्मी तो है।
18: जी जी, हमारे यहाँ 2-3 दिन पहले बहुत तेज आंधी आई थी। बहुत सारे बिजली के खम्भे और पेड़ उखड़ गए थे। 2-3 दिन तक लाइट नहीं थी। बहुत कड़ी मशक्कत करने के बाद से कुछ प्रशासन वाले ने मिलकर और बिजली विभाग ने मिलकर अभी लाइन बहाल किया है। लाइट मोबाइल वाली कार्य हुआ है जी।

0: चल रहा है मैडम, गाना एक सुनवा दीजिए।
1: क्या दीजिए, कौन सा गाना सुनना है?
0: गाना है प्रेमा फिल्म है लैला मजनू, उसमें का एक सॉन्ग है ऋषि कपूर पर फरमाया गया फिल्म है और आवाज है मोहम्मद रफी का, बर्बाद मोहब्बत की दुआ साथ लिए जा।
1: गाने के बोल रहे
0: हैं? सॉन्ग है।
1: अच्छा
0: जी जी, गाने के बोल
1: है। ठीक है, फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो।
0: थैंक यू।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका 90.4 एफएम में।
0: हाँ जी, हम परमात्मा महतो बोल रहे हैं जी।
1: कैसे हैं आप?
0: कॉल लगा के तो थक गया मैं तो लगा अभी।
1: अच्छा जी, आज बता दीजिए आपको कौन सा सॉन्ग सुनना है।
0: कोई भी सॉन्ग अपनी मर्जी से सुना दीजिए बस।
1: आप नहीं बताइएगा कॉल किया।
0: पंकजपुरी का गाना जो नहीं है उसमें का कोई पंकजपुरी का गाना जो है

0: रोज का पेट दर्द।
1: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
2: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
3: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
2: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
0: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
4: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
5: और दुल्हन का लहंगा, साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
6: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
7: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
8: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
6: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
5: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
6: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
8: कॉल करें 87-894-18-744।
9: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
10: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
9: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
10: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
11: जिले का गौरव, संतोष मेडिकल हॉल, घोष मोड़, दरगाह रोड, गोपालगंज।
12: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
13: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
2: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले, गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 6200-42-34-03, 6200-42-34-03।
14: टॉप भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
15: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
14: ई बात बा, तो ऐसा करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में,
2: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
16: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
17: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
18: Assalamualaikum.
19: वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 एफएम में। नाम बता दीजिए अपना।
18: मैं रजिया खातून।
19: कहाँ से हैं आप रजिया जी?
18: पेट्रोलियम।
19: ओके, कैसी हैं आप?
18: बढ़िया है अपने।
19: मेरा भी बढ़िया है। तो और बताइए क्या हो रहा है अभी?
18: क्या हो रही है? नहा रही है। बैठा है।
19: अच्छा जी, तो बताइए आपको कौन सा सॉन्ग सुनना है?
18: मैं गाना नहीं, अपने दिल पापू का तू दिल ना दुखा।
19: हाँ,
18: ये गाना सुना दीजिए।
19: ओके, और ये सॉन्ग किसी को डेडिकेटेड भी है?
18: हसमुल है, सब्बू है।
19: ओके, तो चलिए फिर गाना प्ले करती हूँ, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रंजन में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: भी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
1: नमस्ते मैम।
0: नमस्ते
1: नीतीश कुमार।
0: और मॉडर्न
1: अच्छा
0: क्या हो रहा है अभी?
1: हम लोग ने फोन लगाए थे।
0: क्या करते हैं वैसे आप?
1: करते हैं।
0: चलिए बढ़िया है, तो बता दीजिए कौन सा गाना सुनना है आपको?
1: अंजनी हम
0: ओके। और ये सॉन्ग किसी को सुनाना भी चाहते हैं?
1: पहले आपको और मेहमान को और रेडियो रंजन वाले को।
0: ओके तो फिर चलिए गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रंजन में। कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: शादी की ज्वेलरी लेनी है। हाँ,
1: भरोसे वाले से लेंगे,
0: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
1: और कीमत भी।
0: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
2: एसपी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
3: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन तो मेरा सर्टिफिकेशन।
2: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसपी ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
4: 22 कैरेट 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
2: आज यहाँ एसपी ज्वेलर्स जो है डीएवी गर्ल्स स्कूल के सामने स्टेशन रोड गोपालगंज,
5: और अब एसपी ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
2: कॉल करें 85070-32042 पे।
6: जानते हो दोस्तों, जिसे हम सिर्फ चिलचिलाती धूप कहते थे, आज उसी धूप से हम अपनी छतों पर ऊर्जा बना लेते हैं। तभी तो आज लगभग 37 लाख घर पीएम सूर्य घर बने हैं, जिससे देश का बिजली बिल घटा है और आत्मविश्वास बढ़ा है।
7: एक दशक पहले भारत सोलर पावर के मामले में बहुत पीछे था, लेकिन आज सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप 5 देशों में आ गया।
6: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
8: अरे मुन्नी, तुम आ गई, चल मेरे कान का झुमका ला।
9: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
8: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
9: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
2: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
9: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
2: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड एक्सिस बैंक के सामने तड़कुल के पास गोपालगंज।
9: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
2: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
10: Now pick it up, pick it up.
11: Hello.
10: Now pick your phone up.
11: Hello.
10: Pick it up, pick it up.
11: Hello.
10: Now pick your phone up.
11: Hello.
12: जब फोन घंटी बजती है तो कहते हैं हेलो, हेलो, हेलो, हेलो, हेलो।
13: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 80029-94-911। जी हाँ, 80029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
14: हेलो।
15: हेलो जी, नमस्ते।
14: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजीव 90.4 FM में।
15: धन्यवाद।
14: हाँ जी, नाम बता दीजिए अपना।
15: जी मैं धर्मेंद्र यादव, अरेराजपुर चंपारण बिहार से।
14: अच्छा, कैसे हैं आप?
15: जी बढ़िया, आप बताइए।
14: मेरा भी बढ़िया है
15: जी। तो एक सॉन्ग सुना दीजिए, तुम्हें देखे मेरी आँखें, इसमें क्या मेरी खता है।
14: और ये सॉन्ग किसी को डेडिकेटेड भी है?
15: जी ये सॉन्ग तो मैं सबसे पहले आपको सुनाना चाहूंगा और अभी रेडियो से जुड़े संपूर्ण श्रोता मित्रों को सुनाना चाहूंगा।
14: ओके,
15: थैंक यू।
14: तो चलिए गाना प्ले कर रहे हैं।

0: नमस्ते मैडम जी।
1: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 FM में।
0: कैसे मैडम जी?
1: मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं?
0: मैं भी अच्छा हूँ।
1: तो क्या हो रहा है अभी?
0: अभी तो कोई इंतजार आ रहा है।
1: और सब बताइए कैसी हैं?
0: और सब ठीक है। आपका इंतजार हो रहा है मैडम जी को, अपन उठाएंगे गाना बताएंगे।
1: बताइए कौन सा गाना सुनना है आपको?
0: गाना सुनना है, गाना बोल देते हैं।
1: हाँ हाँ बता दीजिए।
0: दूसरा गाना है ये, वो साईं बाबा उठाएंगे।
1: कौन सा?
0: ओ साईं बाबा, साईं बाबा।
1: ओके, और ये सॉन्ग किसी को डेडिकेटेड भी है?
0: आपको आज इतना रेडियो रेल घुमाया, सब है दो सब सुनते हैं सबके साथ।
1: ओके, तो चलिए फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ। रेडियो रंजन में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद
0: जी। मैडम जी नमस्ते।
1: नमस्ते।

0: अरे स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
1: अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग।
2: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
1: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
2: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
1: एक बार सेवा का मौका जरूर दें। विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27 बंजारी गोपालगंज।
2: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।
3: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
4: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
5: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
1: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
6: सोहन मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
7: अरे टीना टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
6: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
7: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है, माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी, संपर्क करें 99-399-66-999।
1: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
2: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
1: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
2: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
1: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
2: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
1: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
2: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
8: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
6: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं, कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं, अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
8: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
6: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीठ की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
8: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99-554-97-644।
9: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94911। जी हाँ, 8029-94911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
0: भाटी जी बोल रही हैं?
1: हाँ हाँ।
0: अच्छा, तो बहन जी मैं बोल रहा हूँ सुनील साहू मधुसूदनगर जिला गुना से।
1: जी जी, क्या हाल है आपका?
0: बस बैठे हैं और आपको ही फोन लगा रहे थे यार, तो बहुत परेशान हुए दीदी। आज जाके फोन लगा है, 11 बजे से लगा रहे हैं।
1: अच्छा जी।
0: जी आज बहुत परेशान हुए हैं फोन लगाने में।
1: आज तो कॉल ज्यादा ही आया है।
0: जी जी जी।
1: और तो
0: बस पानी गिर रहा है हमारे यहाँ पर, आपके यहाँ?
1: नहीं, हमारे यहाँ तो बहुत गर्मी है, धूप निकला हुआ है।
0: तो पानी भेज दे क्या आपके उधर?
1: हाँ हाँ, भेजिए, बिल्कुल भेजिए।
0: भेज रहे हैं हम, गाने के साथ भेज रहे हैं।
1: जी बिल्कुल।
0: तो आज की फरमाइश रहेगी बहन जी हमारी, भोजपुरी सुना देंगे ना आप?
1: जी बिल्कुल सुनाएंगे।
0: पिक्चर का नाम है ससुरा बड़ा पैसे वाला।
1: ओके।
0: और गाने के बोल है सैया जी दिलवा मांगे ले गमछा बिछाई के।
1: ओके। और ये सॉन्ग किसी को डेडिकेटेड भी है?
0: जी आपको है सबसे पहले, और हमारे दोस्त है मांगीलाल जी और गोपाल ओझा खगवासा से और गजराज सिंह लोधी है। जी, और आपको भी है गाना डेडिकेट।
1: ओके, चलिए फिर गाना प्ले करते हैं।
0: धन्यवाद जी,
1: सुनते रहिए रेडियो 90.4 FM।

0: हेलो
1: हेलो नमस्ते जी।
0: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 एफएम में।
1: हाँ जी, हम संतोष महतो बोल रहा है दिगवा दिगावली भाईपुरपुर से।
0: कैसे हैं आप?
1: बढ़िया है, आप सुनाइए।
0: मैं भी बढ़िया हूँ। क्या हो रहा है अभी?
1: अभी तो पंजाब में है, काम हो रहा है।
0: अच्छा, क्या काम करते हैं वैसे आप?
1: हम लोग मजदूरी करते हैं।
0: अच्छा जी, और बताइए, और सब बढ़िया है ना?
1: हाँ जी बढ़िया है।
0: तबीयत ठीक है ना?
1: हाँ जी बढ़िया है।
0: चलिए बढ़िया ही होना चाहिए। तो बता दीजिए आपको कौन सा गाना सुनना है?
1: गाना सुना दीजिए। गाना तो बहुत किस्म के सुनने का मन करता है, बाकी अब एक कौन कौन सुनेंगे?
0: कोई नहीं, सब रोजाना दिन आता ही है, रोज रोज एक एक को बताइएगा, रोज रोज सुनिएगा।
1: हाँ जी,
0: आज बता दीजिए आज कौन सा सुनना है।
1: गाना सुना दीजिए, गर्मी गर्मी बेना डुलाने वाला।
0: भोजपुरी सॉन्ग है?
1: हाँ जी।
0: गाने का थोड़ा सा लाइन याद है?
1: गाना गर्मी में बेना डुला दो।
0: और ये सॉन्ग किसी को सुनाना भी चाहते हैं आप?
1: ये परमात्मा बिजली बिजली के धनजय को, हरकेश को, बादल को, सबसे पहले आपको।
0: ओके ओके, तो फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रंजन में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: Now pick it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
1: Hello.
0: Pick it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
2: तो श्रोताओं, अभी आप हेलो माय चॉइस सुन रहे थे मेरे साथ यानी आरजे भारती के साथ। और अब हमारे स्टूडियो की घड़ी के कांटे इशारा कर रहे हैं समय हो गया है शो की समाप्ति का। यदि आप भी चाहते हैं इस कार्यक्रम से जुड़ना तो सोमवार बुधवार शुक्रवार को सुबह 11 बजे से 12:30 के बीच हमारे नंबर 8029994911 पर कॉल करके जुड़ सकते हैं। तो फिलहाल हमें आज इस शो से दीजिए जाने की इजाज़त, मिलते हैं अगले दिन। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल और अपनों का भी। सुनते रहें रेडियो रंजन 90.4 FM। नमस्कार।
3: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण MD फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
4: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
5: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 7545 67666।
6: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527 88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527 88291 या 95238 74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है। तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
7: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
8: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलता पूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य SP त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज, जैसे
9: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
8: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलता पूर्वक करते हैं।
10: वैद्य SP त्यागी जी से मिलने का पता
8: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
10: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99555-94-94-53
8: और 90-97-61-60-02।
11: Excuse me boss, you have a text message.

हेलो हाय नमस्ते नमस्कार प्रणाम सलाम, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग मस्त एंड स्वस्थ होंगे और मैं भी मस्त एंड स्वस्थ आप सभी के बीच उपस्थित हो चुका हूँ। मैं सोनू SMS फरमाइश के साथ रेडियो रेमछेम 90.4 FM पे समय 9:24 हो रहे हमारे स्टूडियो घड़ी में और कार्यक्रम शुरू होने जा रहे हैं। यदि आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, अपने पसंद के गाने सुनना चाहते हैं तो बिल्कुल सुन सकते हैं। इसके लिए आप सभी को टेक्स्ट मैसेज करना है। टेक्स्ट मैसेज का नंबर है 72 77 16 65 96। ध्यान रखना है कि जब भी गाने का फरमाइश करना है, ये बातें आप सभी से हर रोज़ बताई जाती है और फिर भी कई श्रोतागण हैं जो समझते नहीं हैं, नए गाने का फरमाइश करते हैं। तो आप लोग थोड़ा सा समझें और जैसे कार्यक्रम चले वैसे कार्यक्रम के साथ दें और अपने को मनोरंजन को करें और दूसरों को भी ऐसे गाने के फरमाइश करें कि अच्छा लगे। ऐसा ना हो कि अपने खुशी के लिए दूसरों को थोड़ा सा दिलों को ठेस पहुंचाए। यहाँ पे कुछ मैसेज पहुँचे हुए, तो मैसेज को शामिल करते हुए इस कार्यक्रम को हम शुरू करते हैं। यदि आप जुड़ना चाहते हैं, जो भी श्रोतागण सुन रहे हैं वो जुड़ सकते हैं। पहला मैसेज हमारे पास पहुँचा हुआ है, लिखा गया कि क्या हाल है भैया जी, मुझे सॉन्ग सुनना है सैड खेसारी लाल जी के आवाज़ में और गाने के फरमाइश करते हैं जा जान खुश रहिया हमके भुला के। और चलिए आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में गाने के फरमाइश से तो पूरा करने की कोशिश है। और आगे में से इस पहुंचा हुआ है सॉन्ग, बिछड़े हुए हैं मिलेंगे फिर किस्मत ने अगर मिला दिया, फिल्म पोस्ट बॉक्स नंबर 99, नाम सगीर अंसारी फ्रॉम तेजपुर आसाम से डेडिकेटेड। नाम देते हैं दिलीप राम हजरा साजा और कमरान जी को। तो बिल्कुल आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे, फ़िलहाल स्वागत है आपका भी। और आगे मैसेज तो अभी नहीं पहुंचे हुए, तो चलिए सगीर जी आप ही के गाने के साथ इस कार्यक्रम को हम शुरू करते हैं और सुनते हैं आपके पसंद के गाने। हम सभी बैठे

कमाल के शौंग रेडियो रंची 90.4 FM पे सुन रहे हैं हम सभी। शगीर जी की फरमाइश क्या खूब रही। इसी तरह के गाने के लिए ये कार्यक्रम जो स्पेशली बनाए गए हैं और आप लोगों से हर रोज़ मांग की जाती है कि ओल्ड इज गोल्ड गाने की फरमाइश करें। जैसे अभी हम सभी सुन रहे थे, बिछड़े हुए हैं हम मगर किस मिलेंगे अगर किस्मत ने मिला दिया। और आप लोग से हर रोज़ हम विनती करते हैं, आग्रह करते हैं कि आप लोग पुराने गाने का फरमाइश करें। फिर भी कई श्रोतागण हैं जो नए गाने के फरमाइशों को लेकर जीत पे अड़े रहते हैं, तो थोड़ा सा समझें और आप लोग पुराने गाने का फरमाइश करें। यहाँ पे कुछ और मैसेज पहुँचे हुए थे, मैसेज को शामिल करते हुए इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि शाम भी खूब है, पास महबूब है और ज़िंदगी के लिए क्या चाहिए। हेलो सर, ये गाना सुना दीजिए। तो बिल्कुल सुनाएंगे, लेकिन आप कौन कहाँ से हैं ये तो बता दीजिए, फिर आपके गाने हम बिल्कुल सुनाएंगे। यहाँ पे आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि सर गलत बात है, हम SMS किए कुमार सानू का गाना। तो बिल्कुल आपका मैसेज तो अभी इतना ही पहुँचा हुआ है, लेकिन आपका पहले वाला मैसेज तो पहुंचा ही नहीं है, तो हम कैसे आपके गाने सुनाएं। आप फिर से मैसेज करें उस जो आप पहले मैसेज किए थे, रिसेंड करें, फिर आपकी फरमाइश हम पूरा करेंगे। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि क्या हुआ भैया जी। तो बिल्कुल आपकी फरमाइश हम प्ले करने वाले हैं और आगे कुछ मैसेज आ रहे हैं, तो मैसेज को शामिल करते हुए चलिए आपकी फरमाइश हम प्ले कर ही देते हैं और सुनते हैं आपके पसंद के गाने हम सभी, दीपक एंड जेलर जी। लेकिन आपसे कहेंगे कि आप थोड़ा सा समझें, और साथ ही साथ हर सभी श्रोतागण से मेरा आग्रह है कि पुराने गाने की फरमाइश आप लोग करें। फिलहाल गाने को प्ले करते हैं और सुनते हैं हम सभी।

0: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
1: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
2: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
3: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
2: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
4: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
5: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
4: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
5: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
4: या अभी कॉल कीजिए 92899-22567 या 97-714-86164।
6: ठक ठक।
7: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
8: अच्छा मिला ही नहीं।
7: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
2: जी हाँ, कमल श्री, याद रखिए सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
7: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
2: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है। सुनिए सुनिए सुनिए,
9: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
2: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
9: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
2: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
10: छोटा सा ब्रेक हो गया खत्म और ब्रेक बाद पुनः आप सभी का स्वागत है रेडियो रिमझिम 94.4 FM पे। शो चल रहा है SMS फरमाइश का और यहाँ पे आगे कई मैसेज पहुँचे हुए हैं और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है। लिखा गया है कि हेलो हाय, कैसे हैं सर? फ्रॉम अमोआ मौजम से। तो बिल्कुल बढ़िया है और आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, लिखा गया है कि सॉरी भैया आगे आज से गलती नहीं होगी, कोई बात नहीं। और आप लोगों से हम हर रोज़ कहते हैं कि आप लोग इस कार्यक्रम में खासकर पुराने गाने के साथ ही जुड़े, ताकि जो भी हमारे बुज़ुर्ग लोग भी रात के समय में सुनते हैं उनको भी अच्छा लगे और आपको समझे कि चलिए आपके माध्यम से तो हम लोगों को गाने सुनने को मिल रहा है कुछ अच्छा। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और आगे लिखा गया है कि सर मेरा एक सपना है, गाना है, और इस मैसेज को करते हैं सफरोज अली जी आखिल टोला से। तो चलिए आपकी फरमाइश हम प्ले करते हैं और सुनते हैं आपके पसंद के गाने हम सभी रेडियो रेम 6.4 FM पर। मेरा एक सपना है।

काफी प्यारा सॉन्ग सुनने हम सभी रेडियो रेमझेम 94.4 एफएम पे शो चल रहा है। इसमें फरमाइश का हार है। आप भी इस शो से जुड़ना चाहते हैं, अपने पसंद के गाने सुनना चाहते हैं तो बिल्कुल सुन सकते हैं। इसके लिए आप सभी को टेक्स्ट मैसेज करना है। मैसेज का नंबर है 72 77 16 65 96। ध्यान रखना है कि पुराने या 90s के गाने की फरमाइश करना है और अपना नाम और कहाँ से मैसेज कर रहे हैं ये जरूर बताएं, ताकि आपकी पहचान हो सके और पहचान के साथ साथ आपकी फरमाइश पूरी की जाए। यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा हुआ लिखा गया कि हेलो सर, गोपालगंज चनावे से बोल रहा हूँ और प्लीज़ गाना बजा दीजिए। और कई मैसेज किए लेकिन नाम नहीं बता रहे थे। अंत में बताए हुए हैं प्रिंस यादव जी हैं और इनके तरफ से गाने के फरमाइश पहुँचा हुआ है। शाम भी खूब है पास महबूब है, जिंदगी के लिए और क्या चाहिए। बिल्कुल, अब तो कुछ ज़रूरत ही नहीं है जब सब कुछ पास ही है। तो आपके गाने हम सुनाएंगे और यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा हुआ है लिखा गया है कि प्लीज़ मेरा भी गाना सुना दीजिए। बिल्कुल, लेके करके सबकी फरमाइश पूरी हो ही रही है, आपकी भी फरमाइश पूरी होगी। और आगे मैसेज पहुँचा हुआ लिखा गया है कि सर थैंक्स, आप भी गाइए ना। बिल्कुल गाया जाएगा। और मिसेस करते हैं सफरो जल्दी और आगे मिसेस तो नहीं, कॉल आ रहा है तो आप लोग कॉल न करें। जिस नंबर पे आप कॉल कर रहे हैं उस नंबर पे आप मैसेज टाइप करके सेंड करें, हम बिल्कुल आपके मैसेज शामिल करेंगे और आपकी फरमाइश कुछ ही समय में पूरा करेंगे। तो आप लोग मैसेज करें। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और आगे गाने को प्ले करते हैं। शाम भी खूब है पास महबूब है।

0: क्या चाहते हो? मैं ना जाऊँ अपने दोस्त की शादी में?
1: क्यों, क्या हुआ है?
0: तुम्ही ने तो कहा था मुझे डिजाइनर लहंगा, साड़ी और गाउन दिलाओगे।
1: अरे तो कौन सी बड़ी बात है, आज ही चलते हैं गोपालगंज में लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स, वहाँ तुम्हें तुम्हारी मन पसंद के अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाएंगे।
0: फिर ये भी ठीक है, चलो चलते हैं लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स।
1: शादी विवाह या किसी भी शुभ अवसर पर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स जो है मेन रोड गोपालगंज में।
2: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
3: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
4: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
3: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
4: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
3: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
4: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
3: संपर्क करें 84710309 या 9765665750।
2: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
3: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
2: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
3: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करे।
3: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
2: संपर्क करे 9006978856 या 6203139564।
5: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के कहे चलतनी, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
6: अरे ए बबुओ, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला, सुनले बानी की आँख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
5: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू, अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आगल बनी, यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़ फाड़ कैले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करो तनी, तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आँख में कोनो तरह के दर्द भी ना हुई और ऑपरेशन भी हो जाए।
1: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुप्रसिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से, साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर MA अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड, यमहा शोरूम के सामने, रालसन होटल के पश्चिम, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9903369015 पे।
7: थोड़ा सा ब्रेक हो गया खत्म, और ब्रेक बाद पुनः आप सभी का स्वागत है रेडियो MGM 90.4 FM पे। शो चल रहा है इसमें फरमाइश का, और यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा हुआ लिखा गया है कि थैंक्स सर मेरा गाना बजाने के लिए। चलिए, आपको धन्यवाद है रेडियो MGM सुनने के लिए। और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, लिखा गया है कि हाय सर, मेरा नाम लक्ष्मी और मुझे गाना सुनना है, और गाने की फरमाइश अभी हम ही सुन रहे थे, उसी गाने की फरमाइश करती हैं, शाम भी खूब है पास महबूब है, तो आप दूसरे गाने की फरमाइश करें, बिल्कुल पूरा करने की कोशिश रहेगा। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, सुनो भाई नमस्कार, कैसे हैं आप और सब मस्त है ना, और मैं रोहित देहरादून से, मैं भी आपके कार्यक्रम से जुड़ गया हूं, तो बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि बिल्कुल आपकी मैसेज हमारे पास पहुंची है, और आपकी भी मैसेज पे हम ध्यान दे रहे हैं एक एक करके, और आप बन रहे हमारे साथ। आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए अगले गाने की फरमाइश हम प्ले करते हैं। विदाई गीत की फरमाइश पहुंचा हुआ है निशा की तरफ से, और यह मैसेज डुमरिया से पहुंचा हुआ है, तो तो चलिए आपकी फरमाइश हम प्ले करते हैं। निशा आप इंजॉय करें अपने गानों के साथ रेडियो एमजीएम 90.4 एफएम।

सभी प्यारा संग रहा रेडियो एमसीएम 94.4 एफएम पे विदाई। और यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और आगे गाने की फरमाइश पहुँचा हुआ है। लिखा गया है कि हेलो हाय नमस्ते भैया, कैसे हैं आप? और मेरे तरफ से सभी प्यारे प्यारे दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार एंड सलाम बोलिएगा। और मैं भी आपके शो से जुड़ गई हूँ और मेरी भी हाजिरी लगा दीजिए और मुझे भी सॉन्ग सुनना है। और सॉन्ग की फरमाइश करती हैं गदर मूवी से, और तो बिल्कुल आपकी फरमाइश हम पूरी करेंगे। और डेडिकेट करती हैं, लिखी है आपको एंड मेरी सिस्टर हैं सब प्रियांशी पूजा, कुछ प्यारे प्यारे रेडियो दोस्त हैं रानी रजनी संतरा कुशवाहा सविता चौहान आशा चौहान नीतू सिंह निशा भारती सबीना अपी गुड़िया अपी शिल्पी सिस्टर इरफान भैया कमरान भैया अर्किस भैया समीर भैया गुलाम भैया दिलीप भैया वीरेंद्र भैया लवली भाभी एंड ऑल रेडियो फ्रेंड्स को। तो बिल्कुल आपकी फरमाइश हम प्ले करते हैं और सुनते हैं आपके पसंद के गाने हम सभी। और यहाँ पे अभी मैसेज करती हैं काफ़ी प्यारा सॉन्ग, और इस मैसेज को करती हैं रोशनी मानिकपुर से। तो बढ़ते हैं आगे और इंजॉय करते हैं आपके गाने के साथ हम सभी रेडियो एमजीएम 94.4 एफएम पे।

0: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
1: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
0: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
0: संपर्क 99-393-65-930।
3: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
1: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
2: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
0: RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड, गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा, NH 27, गोपालगंज।
0: कॉल करें 70-70-75-6300 या 70-70-72-4200 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
2: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
0: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
2: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज।

0: में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 1,10,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
1: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
0: या अभी कॉल कीजिए 92899-22567 या 97-714-86-164।
2: जानते हो दोस्तों, जिसे हम सिर्फ चिलचिलाती धूप कहते थे, आज उसी धूप से हम अपनी छतों पर ऊर्जा बना लेते हैं। तभी तो आज लगभग 37 लाख घर PM सूर्य घर बने हैं, जिससे देश का बिजली बिल घटा है और आत्मविश्वास बढ़ा है।
3: एक दशक पहले भारत सोलर पावर के मामले में बहुत पीछे था, लेकिन आज सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप 5 देशों में आ गया।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: कभी प्यारे गाने सुन रहे थे, अभी हम सभी गदर मूवी से ऊर्जा काले काम आते हैं और शो चल रहा है इसमें इस फरमाइश का। और यदि आप इस कार्यक्रम में बने हैं तो बिल्कुल बने रहें और एक ही करके सबकी फरमाइश पूरी की जाएगी। और यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा हुआ लिखा गया है कि हाय, गुड इवनिंग सोने सर, कैसे हैं आप? और मैं अनिल छोटपुर से, और कल मुझसे नाराज हो गए थे, क्या मेरा गीत नहीं सुनाए? तो याद तो नहीं है, और आप बताएं कि आपके गाने हम सुनाए थे कि नहीं। और फिलहाल आपके तरफ से कोई फीडबैक मैसेज भी नहीं पहुंचा हुआ है कि हमें पता चले कि आपके गाने सुनाए थे कि नहीं। और फिलहाल हम आगे बढ़ेंगे और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि नाइस सॉन्ग, थैंक्स। चलिए आपको भी धन्यवाद है रेडियो रमछम सुनने के लिए रोशनी। और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और लिखा गया है कि हाय सर, मैं अंश कुमार गोपालगंज से, और मुझे गाना सुनना है और गाने के फरमाइश करते हैं मिलते मिलते हंसी वादियों में दिल खो गया तो क्या करें। तो चलिए बिल्कुल आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे और प्ले करते हैं और सुनते हैं आपको पसंद के गाने हम सभी रेडियो रमछम 90.4 FM पे।

कभी प्यारा सॉन्ग रेडियो रेमझिम 94 FM पे सुन रहे हैं आप सब। और कार्यक्रम चल रहा है इसमें फरमाइश का, और यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और लिखा गया है कि भूलन सा जलाल्दी टोला से जुड़े हुए हैं और गाने के फरमाइश करते हैं, रफ़ी जी का कोई भी सॉन्ग सुना दीजिए। तो चलिए आपकी फरमाइश हम प्ले करते हैं और आप ही के गाने को प्ले करते हुए इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। और जो भी श्रोतागण छूट जा रहे हैं नाराज नहीं होना है, समय की कमी है और समय जो है समाप्ति का हो चुका है और थोड़े हम आगे निकल रहे हैं। तो अंतिम गाने प्ले करते हुए इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले दिन। आप सब सुनते रहें रेडियो एमछिम 94 FM, जो हमेशा कहता है सुनो दिल से। नमस्कार।

0: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
1: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
0: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
2: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
3: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
2: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
3: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
4: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
5: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
4: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
5: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
4: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 9956 97644।

0: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
1: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
0: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
1: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
0: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
2: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
3: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
2: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
3: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम एक डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
2: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
3: जानकारी है तो कॉल करे 6205-62112 पे।
4: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
5: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
4: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
5: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
4: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
5: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
4: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
5: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
6: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
7: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
6: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
7: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
8: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।

हेलो हाय नमस्ते नमस्कार प्रणाम सलाम वेरी वेरी गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे और आप सुन रहे हैं अपने जिले की आवाज़ रेडियो रिमझिम 90.4 और मैं हूँ आपके अपनी रेडियो दोस्त एंड होस्ट आरजे सोनी, आप सभी के बीच उपस्थित हो चुकी हूँ आपके अपने कार्यक्रम योर वॉइस योर चॉइस के साथ। और स्टूडियो घड़ी में 12:01 हो चुके हैं और अभी से लेके शाम को 4 बजे तक मैं आप सभी के साथ हूँ, आपकी फरमाइशों के साथ हूँ। तो फटाफट से अपना फ़ोन उठाइए और शो से जुड़ना शुरू कर दीजिए। शो में जुड़ने के लिए माध्यम है व्हाट्सएप इंस्टा कॉल, आप जिस माध्यम से चाहे जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप से जुड़ने के लिए नंबर है 98527888291 पे व्हाट्सएप मैसेज करिए या फिर अपनी आवाज़ में एक छोटा सा वॉइस रिकॉर्ड करिए, हमें भेज दीजिए अपने नाम पता और गाने की फरमाइश के साथ। और जो भी हमारे पुराने लिसनर हैं उनके लिए ये है कि आप जब भी गाने की फरमाइश करिए अपनी फरमाइश एक सप्ताह बाद ही भेजिए, बाकी नए लिसनर जो भी है हमारे गाने की फरमाइश डायरेक्ट भेज सकते हैं। उसके अलावा आप रेडियो रिमझिम के इंस्टाग्राम पे भी डायरेक्ट मैसेज करके अपने गाने की फरमाइश को सुन सकते हैं, या फिर आप व्हाट्सएप इंस्टा नहीं यूज़ करते हैं तो आपके लिए कॉल का माध्यम है और नंबर है 7277165696 पे कॉल करिए। तो चलिए अपनी बातों की बकबक को यहीं रोकेंगे और बिना देरी किए आज की शो की आगाज़ करेंगे एक प्यारे से गाने के साथ। तब तक आप सभी अपना मैसेज अपना फरमाइश हम तक पहुंचाइए, तब तक एंजॉय करते हैं इस गाने को रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे।

0: एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में आपके अपने कार्यक्रम योर वॉइस योर चॉइस में। 12:09 हो चुके हैं स्टूडियो घड़ी में और हमारे पास यहाँ काफी सारे मैसेज पहुंच चुके हैं, काफी सारे लिसनर हमसे जुड़ चुके हैं और सो बाकी है अगर आप लोग भी जुड़ना चाहते हैं सो में जुड़ने के लिए माध्यम है व्हाट्सएप इंस्टा कॉल, आप जिस माध्यम से चाहे जुड़ सकते हैं। और यहाँ अपना रुख करेंगे व्हाट्सएप मैसेज की तरफ और यहाँ काफी सारे मैसेज है। गणेश कुमार पिपरा नारायण से जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका। शमशेर जी मुंबई से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, एक और यहाँ मैसेज है। और अनिल जी जुड़े हुए हैं दरभंगा जिला से, बहुत बहुत स्वागत करते हैं, एक और यहाँ मैसेज है। लिख रहे हैं मुझे भी सॉन्ग सुनना है, तो बिल्कुल आपको सॉन्ग सुनना है सुनवाएंगे। और विलेज मुगल बिलचिया से जुड़ी हुई है शाहजहाँ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और गाना कौन सा सुनना है ज़रूर बताइए, हम आपके गाने की फरमाइश ज़रूर प्ले करेंगे। और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि हेलो जी नमस्कार, साध मास्टर धनाव से और आपके कार्यक्रम से जुड़ गया हूँ, कहिए कल कहाँ थी आप। तो कल मेरा कुछ निजी काम आन पड़ा था जिसकी वजह से हम नहीं आ पाए, इसके लिए आप सभी से माफ़ी चाहेंगे कि बिना बताए गायब हुए, लेकिन आज आप सभी के बीच उपस्थित हैं आप सभी की फरमाइशों के साथ, आप सभी की मैसेजों के साथ। और बहुत बहुत स्वागत आपका इरशाद जी, एक और यहाँ मैसेज है और लिख रहे हैं कि हम कश्मीर में रहते हैं मैम, और मैसेज करने वाले हैं सुनील कुमार जी पश्चिमी चंपारण के हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका और गाने की फरमाइश है, तो बिल्कुल आपकी फरमाइश प्ले करेंगे, बने रहिए हमारे साथ में। और आगे एक और यहाँ मैसेज, अली अख्तर जी कश्मीर से जुड़ चुके हैं, लिख रहे हैं वेरी नाइस सॉन्ग, बहुत बहुत स्वागत आपका। संजय यादव जी दुबई से लिख रहे हैं, क्या हाल है मैम, बिल्कुल बढ़िया, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि नाइस ओपनिंग सॉन्ग सुन दी, थैंक यू। और गाना बजाने के लिए मैसेज करने वाले हैं श्याम सुंदर जी संग्रामपुर से, बहुत बहुत स्वागत। मुस्तफ़ा सऊदी से, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। अहमद अली जी जुड़ चुके हैं, लिख रहे हैं अस्सलाम वालेकुम मैम, हम अहमद अली सारा वार्ड नंबर 1 से, गुड आफ्टरनून मैम, कैसी हैं आप, और सुने कि आपकी तबीयत ठीक नहीं थी और क्या हो गया था मैम इसलिए कल नहीं आई थी, और अभी तबीयत अच्छी है ना मैम, मेरा टाइम हुआ है कि नहीं बता दीजिए। तो बिल्कुल आपकी टाइम हो चुकी है, एक सप्ताह पूरा हो चुका है, आप अपने गाने की फरमाइश दे सकते हैं और बहुत बहुत स्वागत है। और ये कौन बताया कि मेरा तबीयत सही नहीं था, और वैसे भी आज आवाज़ सुन के आप लोगों को लगता होगा कि मैं कैसी हूँ, समझ में आ ही गया होगा। और यहाँ मनीष सुजाग जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। और लिख रहे हैं कि कजरा रे कजरा वेरी नाइस सॉन्ग, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। प्रीति रेदास जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत। एक और यहाँ मैसेज, नूर आलम जी आ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका भी, बदरपुर दिल्ली से जुड़े हुए हैं, फरमाइश है तो प्ले करने की पूरी कोशिश है। विशाल जी जुड़ चुके हैं देवरिया से, बहुत बहुत स्वागत आपका भी, आपकी फरमाइश है प्ले करने की कोशिश है। प्रमुख जी हैं लुधियाना पंजाब से, लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून प्यारी उद्घोषक महोदय जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। सानिया सैफी चकशना से, बहुत बहुत स्वागत। और यहाँ आज अमन जी हैं, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका भी। गुलाम हुसैन जी हैं वेस्ट मुंबई से, बहुत बहुत स्वागत। और भी काफ़ी सारे मैसेज हमारे शामिल करेंगे, उससे पहले यहाँ अगली फरमाइश हमारे पास पहुंचा हुआ है। विशाल जुड़े हुए देवरिया से, उनको सुनना है गाना, तो चलिए सुनते हैं, वॉइस मैसेज पहुंचा हुआ है, कौन सी गाने की फरमाइश है इनकी तरफ से।
1: हेलो, मेरा नाम विशाल गौतम है यूपी से, और मेरा गाना है कि प्यार काल परसों के भइल ना रहे, भुला गए वैसे जैसे भइल ना रहे, खेसारी लाल यादव का।
0: तो विशाल जी आपके गाने की फरमाइश प्ले कर दी, एंजॉय करिए अपने गाने को और बताइए गाना सुन के कैसा लगा। आप बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर से, आप शो में पहली बार जुड़े हैं, एंजॉय करिए अपने गाने को रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे खेसारी लाल की आवाज़ में।

का तबीयत सही था, आप किसी और वजह से नहीं आई होंगी। जी हाँ बिल्कुल, और लिखते हैं कि वाह सोनी मैडम जी क्या बात है। और आगे यहाँ प्रमुख जी हैं लुधियाना पंजाब से, लिख रहे हैं कि ये भाई साहब बेवफाई के गाना बजवाए हैं, पक्का दिल तोड़वा के आइल बढ़े। और अब तो ये भाई साहब ही बताइए कि पक्का दिल तोड़वा के आइल बढ़े कि कैसे आइल बढ़ान। फिलहाल गाना बहुत ही बढ़िया, एंजॉय करी रहुआ सबे।

0: 90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहे हैं आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और अभी गाना सुन रहे थे, गाने की फरमाइश पहुंची थी देवरिया से विशाल जी का और इन्होंने गाना सुन लिया है, मैसेज भी पहुंच गया, लिख रहे हैं कि वाह गाना सुनाने के लिए और किसी की याद आ गई मैम जी गाना सुन के। हो तो याद किसकी आ गई ज़रूर बताइए। और आगे यहाँ और भी सारे मैसेज है और एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि गुनगुनाते रहिए मैडम जी और इधर से साथ दे रही हूँ मैं, बिल्कुल दीजिए साथ। और प्रीति रदास जी हैं लकड़ी दरगाह जी ठीक सिवान से, बहुत बहुत धन्यवाद और लिख रहे हैं कि फैंटेस्टिक ओपनिंग सॉन्ग। और आगे यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं सुपर सॉन्ग, गणेश कुमार है पिपरा नारायण से, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। और यहाँ इंस्टाग्राम की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ भी कुछ मैसेज पहुँचे हुए हैं और सुधांशु यादव जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। प्राप्ति शर्मा जी हैं, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका भी, बने रहिए साथ में। और आगे यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि आज तो बड़ा बिजी है, जी हाँ बिजी तो थे। और आगे यहाँ एक और मैसेज है, लिख रहे हैं कि ये प्यार कल परसों के कहला रहे, वेरी नाइस सॉन्ग। और मैसेज करने वाले हैं मनीष रजाक जी फाजिलनगर कृष्णनगर उत्तर प्रदेश से। और आगे यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि गुड आफ्टरनून नमस्ते मैम। और केशव राज बेगूसराय बिहार से जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका भी। और अगली फरमाइश की तरफ रुख करेंगे और अगली फरमाइश जो हमारे पास पहुंचा हुआ है वो है कैफ मोबाइल गोंडा से जुड़े हुए हैं और इनको सुनना है गाना, लिख रहे हैं गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत आपका और आपकी गाने की फरमाइश जो है प्ले कर दी है, एंजॉय करिए अपने गाने को और सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को।
1: अपने मेहरारू का शहर में लेके आवत है, वका बोले चाले के उठे बैठे ढंग सिखावता है, का कहता है

0: अरे स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
1: अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग।
2: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
1: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
2: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
1: एक बार सेवा का मौका जरूर दें। विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27 बंजारी गोपालगंज।
2: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।
3: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
4: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
3: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
5: ठक ठक
6: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
7: अच्छा मिला ही नहीं।
6: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
8: जी हाँ कमल श्री, याद रखिए सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
6: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
8: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
9: सेहत सही लाभ कई अभियान के अंतर्गत HPV टीका के बारे में, तो दोस्तों सरकार द्वारा HPV टीकाकरण की शुरुआत की गई है और इसके बारे में लोगों के मन में कई तरह के सवाल और जिज्ञासाएं हैं, खास करके सोशल मीडिया और मोबाइल पर मिलने वाली अलग अलग जानकारियों के कारण कई बार भ्रम की स्थिति भी बन जाती है। ऐसे में आज हम आप सभी के द्वारा भेजे गए कुछ सवाल उठाएंगे और आसान भाषा में हम उनकी जवाब भी साझा करेंगे। तो अगर आपके मन HPV टीका को लेकर कोई सवाल है तो आप हमें भेज सकते हैं। और
10: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
11: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
12: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
13: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
12: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
10: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है रेडियो रिमझिम 90.4 FM में आपके अपने कार्यक्रम योर वॉइस योर चॉइस में। और यहाँ व्हाट्सएप मैसेज की तरफ बढ़ेंगे। मैसेज है, डीके सिंह जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक और यहाँ मैसेज है और लिख रहे हैं कि सोनी मैम नमस्ते, प्रणाम, राजू सोनी हरपुर से, मुझे भी सॉन्ग सुनना है दामाद जी और वाइफ के नाम से सुनना चाहते हैं। और लिख रहे हैं कि हमके और लिख रहे हैं कि हमके मिले ना ही देलु गुरु बना के चले चला ससुराल हमके, बहुत सिस्टम और मैसेज के साथ हैं। राजू सोनी जी बहुत बहुत स्वागत है। और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि सोनी जी कॉल उठाएंगी। जी हाँ बिल्कुल कॉल उठाएंगे, कॉल करिए आप सभी। और आगे पूजा कुमारी जुड़ चुकी है, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि हमारा गनवा बजा दी, बिल्कुल सबके गाना बजाते बानी। और पुरानी वाली जीएफ की याद में गाने की फरमाइश की है। तो अपना नाम भी बताइए कि आप कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बात कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आगे यहाँ और भी सारे मैसेज शामिल करेंगे, उससे पहले अगली फरमाइश की तरफ बढ़ेंगे। और अगली फरमाइश जो हमारे पास है, और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि फरमाइश भेजे तो बजाइए क्या। बिल्कुल बजाएंगे, क्यों नहीं बजाएंगे। और अपना नाम पता जरूर मेंशन करिए। और एक और यहाँ मैसेज पहुँच गया है, लिख रहे हैं कि हेलो मैम नमस्ते प्रणाम, और शिव सागर दीवाना जी हैं जम्मू एंड कश्मीर से, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका, बने रहिए हमारे साथ में। यहाँ दिनेश मिश्रा जी दिल्ली से जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। और एक और यहाँ मैसेज है, MD निशाद जी, MD नौसाद जी हैं, MD सदाब और बजाजी रोड लालगंज से जुड़े हुए हैं अभिनंदन टेलर के सभी लोग हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और अगली फरमाइश जो हमारे पास पहुंचा हुआ है, फरमाइश करने वाले हैं रंजन कुमार जी तमकुई रोड कुशीनगर उत्तर प्रदेश से। तो चलिए आपकी गाने की फरमाइश जो है प्ले कर दी, एंजॉय करिए अपने गाने को और सुनते रहिए रेडियो रंजन को।

90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहे आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और अभी गाना सुने थे रंजन कुमार जी की फरमाइश थी जो कि थे कुशीनगर उत्तर प्रदेश से। और आगे यहाँ मैसेज है।

0: और मैसेज नहीं किया, डायरेक्ट फोन किया है क्योंकि हम बिजी हैं दूसरे काम के लिए, तो एक बार फोन करके ये भी फरमाइश कर लेते हैं।
1: जी जी बिल्कुल बढ़िया सोचे
0: आप। ओपनिंग सॉन्ग बहुत अच्छा था खजरारे, उसके बाद से भी एक जो देवरिया से फरमाइश आया था ना भाई साहब का, मेजर लाल यादव का,
1: जी जी
0: बहुत बढ़िया सॉन्ग था
1: जी।
0: हमारा आज एक फरमाइश है
1: जी,
0: बजाने की कृपा कीजिएगा
1: जी। बिल्कुल बताइए।
0: वो पुराना सॉन्ग है मैम, थोड़ा शायद लोगों को पसंद ना आए लेकिन बहुत बढ़िया सॉन्ग है।
1: ऐसा नहीं है, कुछ लोग हैं जिनको पुराने सॉन्ग भी पसंद आते हैं और सबकी अपने अपने चॉइस होती है। फिलहाल यहाँ अपनी चॉइस का गाना सुनने का अधिकार है तो आप बता सकते हैं।
0: जी जी सबको अधिकार है ना।
1: जी जी बिल्कुल।
0: तो हमारा एक सॉन्ग है तो इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है, मोहम्मद रफी का आवाज है जी, राज बब्बर साहब का फिल्म है, याद तो फिल्म नहीं आ रहा है मेरे को नाम, लेकिन बहुत अच्छा फिल्म है, जरूर प्ले करिएगा सॉन्ग।
1: और गाना भी काफी खूबसूरत है। वैसे जाते जाते अपना नाम पता अपने मुख से बता के जाइए।
0: जी जी मैं पप्पू ठाकुर रामदासपुर गए पोस्ट बगैन बिहार थाना कटिया जिला गोपालगंज से बोलता हूँ।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका शो में कॉल के जी।
0: जी जी कॉल आज नहीं आई थी, हम इंतजार करते करते रह गए, फिर समझे कि आज हो सकता है तो नहीं होगा।
1: जी जी नहीं, कल कुछ जरूरी काम आन पड़ा जिसकी वजह से नहीं आ पाए अचानक, और गाना प्ले कर दिया आपकी और काफी खूबसूरत गाना है और मुझे उम्मीद है कि काफी सारे लिसनर को पसंद आएंगे और सभी को पसंद आएंगे। जी
0: थैंक यू
1: वेलकम, बहुत बहुत धन्यवाद सो मैं कॉल किया।

और यहाँ काफ़ी सारे मैसेज पहुँच चुके हैं। आज़िया अमन जी हैं, लिख रहे हैं कि तो इस तरह से ज़िंदगी में शामिल है। मुस्तफ़ा जी हैं सऊदी से, लिख रहे हैं कि भाई बहुत लोग हैं पुराने गाने सुनने वाले, हम खुद यहाँ हैं, बहुत ही अच्छा सॉन्ग। और इरशाद मास्टर जी हैं धनाव से, लिख रहे हैं कि सुपर सॉन्ग, तो इस तरह से मेरी ज़िंदगी में शामिल है। और मोहम्मद रफ़ी साहब का बहुत ही खूबसूरत गाना। और आगे

94.4 रेडियो रिमझिम सुन रहे हैं आप सभी, और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और अभी गाना सुन रहे थे तो इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है और कॉल के माध्यम से गाने की फरमाइश थी। और यहाँ व्हाट्सएप मैसेज की तरफ बढ़ेंगे, काफ़ी सारे मैसेज है। नूर आलम जी हैं, लिख रहे हैं कि सुपर सॉन्ग तो इस तरह से जिंदगी में शामिल है। राजेश गौतम जी जुड़ चुके हैं मुंबई से, बहुत बहुत स्वागत, लिख रहे हैं कि बेहतरीन सॉन्ग, फरमाइश करने वाले भाई को दिल से धन्यवाद देते हैं। एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि नाइस सॉन्ग, नाम मेंशन नहीं है, नाम ज़रूर मेंशन करिए आप। और शमशेर जी हैं मुंबई से, जोहर आलम अंसारी हैं कुवैत से, फरमाइश के साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। और रोहित जी जुड़ चुके हैं देहरादून से, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका भी। एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि भाई तो पुराने दिन याद दिला दिए, और पप्पू भाई को जय माता दी, जय माता दी मैडम जी। और मैसेज करने वाले हैं शिव सागर दीवाना जी जम्मू एंड कश्मीर से। एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि नाइस सॉन्ग मैम। और केशव राज जी हैं बेगूसराय से, बहुत बहुत धन्यवाद आपका शो में जुड़े। और यहाँ मिजाजी यादव जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। एक और मैसेज पहुँचा हुआ है, लिख रहे हैं कि नाइस सॉन्ग। और मैसेज करने वाले हैं सुनील कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत आपका, छपरा से जुड़े हुए हैं। और अगली फरमाइश की तरफ बढ़ेंगे, उससे पहले एक और यहाँ मैसेज पहुँच चुका है और नाम मेंशन नहीं है, सिर्फ हेलो मैसेज पहुँचा हुआ है, बहुत बहुत स्वागत है, नाम पता ज़रूर मेंशन करिए अपना। और कन्हैया दास जी दुबई से जुड़ चुके हैं गाने की फरमाइश के साथ, बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और अगली फरमाइश की तरफ रुख करेंगे, और अगली फरमाइश हमारे पास पहुँचा हुआ है वो है ईशा के माध्यम से, इंस्टाग्राम पर मैसेज पहुँचा हुआ है। और मैसेज करने वाले हैं सुधांशु जी, और उनको सुनना है गाना, तो चलिए आपके गाने की फरमाइश जो है प्ले कर रहे हैं, एंजॉय करिए अपने गाने को। और साथ में इनके कृष्णा सरोज भी सुन रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और आपके गाने की फरमाइश है, प्ले कर रहे हैं, एंजॉय करिए अपने गाने को और सुनते रहिए रेडियो रिमझिम

0: आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
1: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
2: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
1: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगर पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82 101 87 952। नियम और शर्तें लागू।
3: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
4: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
5: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
6: आज ही आएं गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94 3945 651 या 97 0975 0675।
7: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस, और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5 से 25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
8: आज ही आए चंद्रगोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करे 86 034 48 652 पे।
9: आज HPVTK से जुड़ी आपके बात करने वाले हैं सही लाभ कई के अंतर्गत, तो सवाल यहाँ हमारे पास पहुँच चुका है और पहला सवाल हमारे पास है, HPVTK का आखिर किस लिए लगाया जाता है? तो HPVTK का यानी ह्यूमन पेल्यूलोमा वायरस एक ऐसा वायरस है जो आगे चलकर कुछ गंभीर बीमारियों और खास तौर पर सर्वाइकल कैंसर जैसी बीमारियों का कारण बन सकता है। HPVTK का शरीर को इस वायरस से सुरक्षा देने में मदद करता है, इसलिए ये टीका भविष्य में होने वाले खतरे को कम करने और बेहतर स्वास्थ्य के लिए लगाया जाता है। और उम्मीद है कि आप सभी को सवाल का जवाब आपको आ गया होगा आसानी से।
10: प्रसाद क्लिनिक,
11: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
10: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंग स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज,
11: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
9: वेलकम बैक दोस्तों, रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे आपके अपने कार्यक्रम योर वॉइस योर चॉइस में, और यहाँ काफी सारे मैसेज है और सबका कहना है कि हम पे ध्यान दीजिए, और मेरा भी गाना है, बिल्कुल आप सबकी गाने की फरमाइश है। और यहाँ राजेश गौतम जी हैं, लिख रहे हैं कि नाइस सॉन्ग, एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि क्या हमें भी आदिवासी गाना सुना सकती है मैम? बिल्कुल, आदिवासी गाना हो या कोई भी गाना समझ में आना चाहिए कि गाना हो, और गाना अश्लील नहीं होना चाहिए और कोई भी जातिवाद गाना नहीं होना चाहिए या फिर ऐसे कोई गाने नहीं हो जिससे किसी को आपत्ति हो सुन के, बाकी सारे गाने हम आपकी सुनवा सकते हैं। और प्रभु निगवाले जुड़े हुए हैं MP से, बहुत बहुत स्वागत है आपका, और गाने की फरमाइश आपकी च्वाइस है, कोई भी सुन सकते हैं, बस इन सारी बातों का जो अभी बोले उसका ध्यान रख के। फरमाइश बेशक आपकी है, लेकिन आप अकेले सुनने वाले नहीं हैं, और भी हमारे लिसनर हैं जो कि सुन रहे हैं, तो उन सभी का ख्याल करके आप गाने की फरमाइश कर सकते हैं। और यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है, और नाम मेंशन नहीं है, नाम मेंशन किया करिए, एक ही बात बार बार बोल रहे हैं आप सभी, नाम पते के साथ जुड़ा करिए। और दिलीप राम जुड़ चुके हैं दिल्ली से फरमाइश के साथ, बहुत बहुत स्वागत। MD महमूद जी हैं केरला से, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका भी। एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि हम भी DJ लगा के सुन रहे हैं मैडम जी। और मैसेज करने वाले हैं शिव सागर दीवाना जी जम्मू एंड कश्मीर से। एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि हमरो गाना बा, बिल्कुल हमके सबके गाना दिखा दटे और सबको के गाना बा, जैसे जैसे हमारे पास फरमाइश पहुँचल बा। उमा शंकर मिश्रा जुड़ चुके हैं दिल्ली से, बहुत बहुत स्वागत, और लिख रहे हैं कि नाइस सॉन्ग मैडम जी। और यहाँ एक और मैसेज है, लिख रहे हैं कि उसका ओहो उसका मत बन जाना जोगन, भूल के अपनी जोगी को, और गाने की फरमाइश के साथ है जोहर आलम अंसारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और गाने की फरमाइश है प्ले करेंगे। फिलहाल यहाँ अगली फरमाइश वॉइस के माध्यम से पहुँचा हुआ है, तो चलिए सुनते हैं कौन सी गाने की फरमाइश है।
12: हेलो, अस्सलाम वालेकुम, हम सानिया से, पीछे खसना से और कैसे हैं आप सभी ज़रूर बताइएगा। और आज के समय मुझे भी सॉन्ग सुनना है तो सुना दीजिएगा। और गाने की बोल है।

0: और इस सॉन्ग को डेडिकेट है आपको और सुनने वाले सभी श्रोताओं को, थैंक यू।
1: तो सन्या जी गाना आपकी प्ले कर दिए, काफी खूबसूरत गाने के साथ जुड़ी, बहुत बहुत धन्यवाद और एंजॉय करिए अपने गाने को रेडियो 90.4 FM पे।

0: 90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहे आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और अभी गाना सुन रहे थे सानिया सैफी जी की फरमाइश थी चकशना से, और शायद ये बिजी हैं। ओहो, इनके तरफ से मैसेज पहुंच गया, लिख रहे हैं कि शुक्रिया जी, दिल से धन्यवाद। और आगे यहाँ मैसेज है, संजय यादव है दुबई से, लिख रहे हैं कि नाइस सॉन्ग। और यहाँ मैसेज है मुस्तफ़ा है सऊदी से, लिख रहे हैं कि जितना गाना आपने गाया था थोड़ा और गा लेती तो गाना ही पूरा हो जाता। जी हाँ। और एक और यहाँ मैसेज है, और लवली गुप्ता जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका। और लिख रहे हैं कि वेरी नाइस सॉन्ग, बहुत ही बढ़िया गीत, आपकी नज़रों ने समझा। और गाने की फरमाइश के हैं साथ हैं आप, थोड़ा वेट करिए, हम आपकी गाने की फरमाइश है प्ले करेंगे। और यहाँ एक और मैसेज है, लिख रहे हैं कि मुझे भी गाना सुनना है, तो बिल्कुल आपकी गाने की फरमाइश है प्ले करेंगे, नाम मेंशन करिए। और शाहजहाँ जी है मुगल बिरेचा से, तो आपकी फरमाइश है, थोड़ा वेट करिए, हम आपकी गाने की फरमाइश जो है प्ले करेंगे। और राम कुमार पांडे जी जुड़ चुके हैं लंदन से, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। और आगे बढ़ेंगे अगली फरमाइश की तरफ, और अगली फरमाइश जो हमारे पास पहुंचा हुआ है वो है कॉल के माध्यम से। तो चलिए बात करते हैं, सुनते हैं कौन है, कहां से, और गाने की फरमाइश क्या है। हेलो हेलो।
1: हाँ हेलो
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम में।
1: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम, नाम बता दीजिए। थोड़ा तेज बोलिए लाडली जी। बिल्कुल बढ़िया, आप बताइए आप कैसी हैं।
1: बढ़िया
0: है। खाना पीना हुआ।
1: हाँ, हो गया है अपना।
0: जी मेरा भी हो गया है। तो आज कौन सा गाना सुनवा दे आपको।
1: तो मैं ऐसे ही सोई थी, कल कॉल लगा दी, लग गया, उठा लिए, उसको बोले हुई थी ना गाने के बाद बोलते हैं।
0: तो गाना सोच के नहीं रखी है, बस कॉल लगा दी आप।
1: बस बजा दिए, आए रबर भी खेड़ा यार मिला दे।
0: अच्छा,
1: नहीं सोच के नहीं सो रहे थे, ऐसे ही मोबाइल स्विच ऑफ कर ख्याल आया तो लगा दिए।
0: हो चलिए, तो गाना प्ले कर दिए हैं।
1: थैंक यू,
0: वेलकम। और ऐसे ही डेली याद कर लिया करिए थोड़ा सा।
1: शादी में थोड़ा बिजी है, भाई के शादी है।
0: अच्छा अच्छा,
1: बिजी पड़ गया
0: है। अच्छा, अभी शादी बीता नहीं है।
1: नहीं अभी तो अब चल रहा है, घर का थोड़ा काम चल रहा है ना।
0: अच्छा अच्छा,
1: बिजी है ना।
0: कोई नहीं, काम भी जरूरी है। चलिए ठीक है, तो गाना प्ले कर दिया आपकी।
1: थैंक यू,
0: वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद सो मैं कॉल की। वालेकुम सलाम, एंजॉय करिए अपने गाने को।

और यहाँ राजेश गौतम जी है लिख रहे हैं, इतना प्यारा गाना सुनवाने के लिए धन्यवाद है सोनी मैडम जी। और आगे यहाँ एक और मैसेज है, और मेरा धन्यवाद नहीं करिए, लाडली जी क्या करिए कि उन्होंने इतने अच्छे गाने की फरमाइश की। मुस्तफा जी हैं, काफी इंजॉय कर रहे हैं गाने को, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, इंजॉय करिए अपने।

और यहाँ मुस्तफा जी का मैसेज है, लिख रहे हैं कि सोनी जी हम रेडियो तो बहुत सुनते हैं और बहुत सुने हैं, पर इतना ज्यादा टाइम तक चलने वाला शो हमने कभी नहीं देखा, पहली बार देख रहे हैं। चलिए पहली बार ही सही, पहली बार से ही कोई भी काम दूसरी बार होता है। और बहुत बहुत धन्यवाद आप शो से जुड़े। और यहाँ मैसेज लिख रहे हैं, वेरी नाइस सॉन्ग, संजय यादव जी है दुबई से।

0: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
2: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
2: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
2: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710309 या 9765655750।
3: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
4: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
3: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
1: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा, गोपालगंज। शाखा राजापुर बाजार, गोपालगंज। CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
2: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
1: तो देर मत कीजिए,
2: सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा, गोपालगंज। कॉल अस 9939721308।
1: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
2: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
1: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
2: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
1: या अभी कॉल कीजिए 9289922567 या 9779786164।
5: एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का रेडियो रिमझिम 90.4 FM में, आपके अपने कार्यक्रम योर वॉइस योर चॉइस में। 1:07 हो चुके स्टूडियो घड़ी में और देखते देखते घंटा बीत गया और पता भी नहीं चला। और यहाँ व्हाट्सएप मैसेज की तरफ बढ़ेंगे तो काफ़ी सारे मैसेज है। और यहाँ इरशाद जी लिख रहे हैं कि तुझे बिछड़ कर यूँ जी रहा हूँ जैसे कोई जहर पी रहा हूँ, सुपर सॉन्ग। और आगे यहाँ और भी एक मैसेज है नेपाल से, लिख रहे हैं कि सही है भाई, ये दोनों नेपाल के परदेसी में कौन गए हैं। और मैसेज करने वाले हैं, नाम है इनका लवली गुप्ता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक और यहाँ मैसेज है, संजय यादव हैं, लिख रहे हैं कि वेरी नाइस सॉन्ग मैडम जी। एक और मैसेज है, लिख रहे हैं कि नाइस सॉन्ग। और मैसेज करने वाले हैं, नाम है इनका नूर आलम जी, और फरमाइश है थोड़ा वेट करिए, अगली फरमाइश आपकी रहेगी। और यहाँ अगली फरमाइश जो हम प्ले करेंगे, हमारे पास पहुँचा हुआ है लाडली है नवादा से, और इनको सुनना है गाना और वॉइस के माध्यम से गाने की फरमाइश है। तो चलिए सुनते हैं कौन सी गाने की फरमाइश है इनकी तरफ से।
6: हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं दोस्तों? मैं हूँ शाहजहाँ विलेज लिच्चा से, और आप सब तो मुझे जानते हैं। सो आज मैं भी शो से जुड़ चुकी हूँ और बहुत दिनों बाद जुड़ चुकी हूँ, सो मेरा भी वेलकम कीजिए। और एक लाइन है कि जिंदगी यूं हमारी सितम सी हो गई, जिंदगी हमारी यूं सितम सी हो गई, खुशी ना जाने कहाँ दफन सी हो गई, खुशी ना जाने कहाँ दफन सी हो गई। लिखी खुदा ने सबके हिस्से में मोहब्बत, लिखी खुदा ने सबके हिस्से में मोहब्बत, मेरी आई बारी तो शायद खत्म सी हो गई। और ये संग नहीं, ये लाइन है, तो ये लाइन आप सबके नाम है। और मुझे भी सॉन्ग सुनना है, और संग का बोल काफी खूबसूरत है, और संग का बोल है चार महीनों गर्मी के दिन और ये संग मैं सबको सुनाना चाहती हूँ, जितने लोग रेडियो सुनकर साथ दे रहे उन सबको और कुछ रेडियो दोस्त हुसन जादवपुर काजल हीरा पकड़ रानी रजनी जातमुस्कन दानापुर कमरानी पके सुल्तान रिटर्न दिल्ली से रुबीनागंज बालापुर और कमरान पके सुल्तान और आजाद भाई सऊदी औरों का नाम याद नहीं आ रहा है क्योंकि मैं बहुत दिनों बाद इस रेडियो से जुड़ी हूँ और जितने सारे छोटे हैं सबको ओके सुना दीजिएगा। ओके ओके बाय बाय बाय।
5: बिल्कुल गाना प्ले कर दिया आपके, अपने गाने को एंजॉय करिए और सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को।

अरे हाँ, अर्जे अमन जी है लिख रहे हैं कि शाहजहाँ जी के गाना बहुत ही नीक लागल, बहुत बहुत शुक्रिया इतना नीमन गाना बजावे खातिर। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। एंजॉय करें रेडियो रिमझिम को, बाकी आगे भी सुनते रहिए, साथ देते रहिए रेडियो।

और यहाँ शाहजहाँ जी की तरफ से मैसेज पहुँच गया, लिख रहे हैं थैंक यू सो मच गाना बजाने के लिए। और यहाँ ईशा की तरफ मैसेज है, और मेहताब सिद्दीकी दुबई से जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, फरमाइश है तो इंतजार करिए।

90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहे आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और अभी शाहजहां जी की फरमाइश थी मुगल विरेचा से और यहाँ आगे बढ़ेंगे। मैसेज है लिख रहे हैं कि 4 महीनवा गर्मी के दिनवा और ये सॉन्ग आपके वॉइस में मिल जाता है, बहुत ही अच्छा गाते रहिए। और मैसेज करने वाले हैं दिनेश मिश्रा जी और यहाँ मैसेज लिख रहे हैं कि अच्छा गाना बा मैम, संजय यादव जी हैं दुबई से। एक और यहाँ मैसेज लिख रहे हैं कि नमस्ते सोनी मैम, मैं भी जुड़ गया हूँ। और बबलू जयसवाल जी है पूर्णिया बिहार से लिख रहे हैं कि आज हमें भी गाना सुनना है। और जैसन सुसले रहनी वैसन पियावा मोर बाड़े सावर नगोर बाड़े, बिल्कुल गाने की फरमाइश प्ले करेंगे, बहुत बहुत स्वागत है। और यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है, लिख रहे हैं कि कमाल के सॉन्ग। और मैसेज करने वाले हैं नाम इनका शिल्पी से जुड़ी हुई है विद भैरवा से, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका। और आगे यहाँ और भी सारे मैसेजेस लिख रहे हैं कि सुपर हिट भोजपुरी सॉन्ग, धन्यवाद मैडम जी। और मैसेज करने वाले हैं राजेश गौतम जी मुंबई से। और अगली फरमाइश की तरफ रुख करेंगे और अगली फरमाइश हमारे पास पहुँचा हुआ है इंस्टाग्राम के माध्यम से और गाने की फरमाइश करने वाले हैं मेहताब सिद्दीकी जी। और यहाँ संजय कुमार जुड़ चुके हैं कोलकाता से, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और चलिए मेहताब जी आपकी गाने की फरमाइश जो है प्ले कर दिए, इन्जॉय करिए और सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को।

बारिश को और यहाँ अहमद अली लिख रहे हैं कि मैम मेरा भी गाना है बजा दीजिए। बिल्कुल गाने की फरमाइश है, थोड़ा वेट करिए। और यहाँ मेहताब जी की तरफ से मैसेज पहुंच गया, लिख रहे हैं कि थैंक यू सो मच गाना बजाने के लिए।

0: थैंक यू सो मच, और संग में जाने के लिए, संग में सुन रही। और दोस्तों आप ये बताएं कि आपके यहाँ गर्मी है या ठंडी है? मेरे यहाँ तो शायद ठंडी है। नहीं, ठंडी है, ठंडी है जी, हमारे यहाँ ठंडी। आपके यहाँ गर्मी है कि ठंडी, आप जरूर बताएं। और आप ये भी बताएं कि आपको ज्यादा ठंडी के दिन अच्छा लगता है कि गर्मी के या बरसात का, आप लोग जरूर बताएं। लेकिन हम सच बोले तो हमारे यहाँ बहुत गर्मी है, बहुत ज्यादा गर्मी है। ओके ओके, बाय बाय।
1: अब बेटा, बहू घर आने वाली है। सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
2: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स। BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
3: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
4: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
3: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
4: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
3: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
4: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
3: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
4: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
3: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
5: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
6: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
5: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
6: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीठ की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
5: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99-554-97-644।
7: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सीरिया रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।

वेलकम बैक दोस्तों, रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे आप सभी का अपने कार्यक्रम योर वॉइस और चॉइस में 1:25 हो चुके स्टूडियो घड़ी में। और यहाँ व्हाट्सएप मैसेज की तरफ बढ़ेंगे तो काफ़ी सारे मैसेज पहुँचे हुए हैं, और बिना बकवास किए अगली फरमाइश की तरफ बढ़ेंगे। और अगली फरमाइश हमारे पास है और राजू सोनी जुड़े हुए हैं हरपुर से, और इनको सुनना है गाना दामाद जी फिल्म से। तो चलिए आपके गाने की फरमाइश जो है वाइफ से हमके मिले नहीं, तो एंजॉय करिए अपने गाने को और सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को।

0: आप पे गईल बाड़ी जौने थाली में खाए उहे में छेद करे।
1: देखी बाप मत बखानी अल्लाह तो ठीक ना पड़ी।

0: 90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहे आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और अभी गाना सुन रहे थे, गाने की फरमाइश करने वाले थे राजू सोनी जी हरपुर से। और आगे यहाँ और भी सारे मैसेज है, फरमाइश है, फिलहाल कॉल पहुँचा हुआ है तो चलिए बात करते हैं, देखते हैं कौन है कहाँ से और गाने की फरमाइश क्या है। हेलो
1: जी, नमस्कार।
0: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम में।
1: आपको भी स्वागत है
0: जी। कृष्णा प्रसाद बात कर रहे हैं
1: जी। जी, क्या हाल चाल है?
0: बिल्कुल बढ़िया, अपन समाचार बताएं।
1: बस चलता।
0: तब रहो जने गर्मी होता कि खाली हम ये न होता।
1: अरे हमने के तो बहुत मुश्किल से आधा किलोमीटर का अंतराल में से बोले ना। काम रखे हुई है रुवा कहना हुई।
0: ऐसा नहीं क्यों हो सका था? ऐसा तो बिल्कुल नहीं क्या हो सका।
1: आधा किलोमीटर का अंतराल में केकरा की है रोज या केकरा की है वो ये बताए। जितना दौड़ा ही है उतना हम रुके हैं, जितना हम के हैं उतना दौड़े।
0: तो बता दी गाना कौन सुना दी आज?
1: ए आज तो गाना हम सुन ले बानी। भगवान को क्या गाना? लैला मजनू।
0: लैला मजनू से कौन गाना?
1: कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने,
0: भले बम से उड़ा दे। भले बम से उड़ा दे हो।
1: ना ना ऐसा बात नहीं की।
0: ऐसा बात नहीं के
1: बम से उड़ा ला पास में खत्म हो जाएगी। अब पत्थर के मारला से तो खाली चोटें लगी।
0: तो चोट लगी तो ज्यादा दर्द हुई, बम से उड़ गई तो पता ना चली दर्द तकली।
1: तब क्या करा थे के बतियाई।
0: यो बात सही बा।
1: जब चलिए जाइए आदमी तो बतियाई के करा थे की। बोली
0: ये तो बात सही बात है, इतना लोग कहाँ सोचा था।
1: हाँ ये कल तो और दुनिया पर बहुत बहुत मजा रहा।
0: तो चलिए गाना प्ले कर दे ले बने।
1: अच्छा कर दी।
0: बहुत बहुत धन्यवाद समय कॉल के लिए।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार।

और यहाँ मैसेज पहुंचा हुआ है, लिख रहे हैं कि सुपर सॉन्ग रामा जी, और रामा जी ना रनिया, कृष्णा प्रसाद जी रनिया, संजय यादव हैं दुबई से। और यहाँ एक और मैसेज है, लिख रहे हैं वेरी खूबसूरत सॉन्ग मैम, और मैसेज करने वाली हैं नाम है शाहजहाँ जी मुगल बिरैचा से।

0: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
1: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
2: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
3: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
2: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9847434668 पे।
4: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलता पूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य SP त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज, जैसे
5: सभी प्रकार के नशा, जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोरायसिस तथा
4: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलता पूर्वक करते हैं।
0: वैद्य SP त्यागी जी से मिलने का पता,
4: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
0: जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
4: और 9097160602।
6: कब भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
7: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना?
6: ई बात बा, तो ऐसा करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल सीरी में।
2: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
8: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
9: ठक ठक।
7: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
6: अच्छा, मिला ही नहीं
7: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
2: जी हाँ, कमल श्री। याद रखे, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
7: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
2: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।

ब्रेक हो गया खत्म। ब्रेक के बाद फिर से हाजिर है आप सभी के बीच रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे आपके अपने कार्यक्रम योर वॉइस योर चॉइस में। और यहाँ रंजीत जी जुड़ चुके हैं, साथ में है ऋषि। ऋषि कपूर की आवाज़ में गाना सुनना चाहते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और दिलीप राम जी है दिल्ली से, लिख रहे हैं कि सोनी जी मेरा मैसेज भी शामिल करिए। तो आपका मैसेज काफ़ी पहले शामिल कर दिए, फरमाइश है, थोड़ा वेट करिए। बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। और यहाँ एक और मैसेज है, अहमद अली जी हैं जी, हाँ आपका भी मैसेज देख रहे हैं। और गाने की फरमाइश है, थोड़ा वेट करिए, हम आपकी भी गाने की फरमाइश जो है प्ले करेंगे। फिलहाल अगली फरमाइश की तरफ बढ़ेंगे। और अगली गाने की फरमाइश है, जैसन सोचले रहनी वैसन धनिया मोड़ बाड़ी। और बबलू जयसवाल जी की तरफ से गाने की फरमाइश है, जो कि है पूर्णिया बिहार से। तो अपने गाने की फरमाइश जो है एंजॉय करिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे।

0: 90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहे आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और अभी गाना सुन रहे थे, फरमाइश करने वाले थे पूर्णिया बिहार से बबलू जायसवाल जी, और इन्होंने गाना सुन लिया है। बढ़ेंगे आगे। यहाँ मैसेज लिख रहे हैं कि हमरों पर ध्यान दी और ऐसा ना हो। थावे से राम नरेश प्रसाद जुड़ल बनी, बहुत बहुत स्वागत बटे। और बिल्कुल रघुआ पे भी ध्यान बटे, थोड़ा वेट करी और अगला फरमाइश की तरफ बढ़ेंगे। और अगली फरमाइश कॉल के माध्यम से पहुँचा हुआ है, तो बात करते हैं कौन है कहाँ से। हेलो,
1: नमस्ते।
0: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत बटे रेडियो रिमझिम में।
1: हम थावे से रामाजी प्रसाद बोल रहे हैं
0: जी। क्या समाचार बा? चलिए बढ़िया बा, कम से कम भाव गया था। बिल्कुल कहीं
1: तो गाना बा के जोन करत या पतोहिया तौने कहले रहु तू। ये गाना बजाई।
0: अच्छा, और का होता अभी?
1: ततुआ में खाता नहीं है, गाना सुना तो नहीं।
0: मकई के की जौ के?
1: ना जौ ना दाना है मकई।
0: अच्छा चलिए ठीक
1: है।
0: ना हमरा घर जौ के सतुआ पिसाइल बा। ना ना हम कहत नहीं कि हमरा घर जौ के सतुआ पिसाइल बटे।
1: चलिए ठीक बा।
0: ठीक बा, तो गाना प्ले कर देले बानी।
1: नमस्ते।
0: नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद।

रामाजी प्रसाद जान रहा और गाना के फरमाइश बा गाना स्टेज शो के बाटे यही से हम गाना नहीं कि प्ले कर सकत का है कि बहुत लंबा गाना बा। फिलहाल ये गाना के एंजॉय करिए और सुनत रही रेडियो रिमझिम के।

90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहा हलवानी और कार्यक्रम बटे योर वॉइस योर चॉइस का और अभी गाना सुनत रही सर रामा जी प्रसाद के गाने के फरमाइश रहे और आगे यहाँ अगला फरमाइश है अफगान जलेबी और गाने की फरमाइश करने वाले हैं नाम है इनका नूर आलम जी जुड़े हुए हैं बदरपुर दिल्ली से। तो चलिए आपकी भी गाने की फरमाइश है प्ले कर दिए हैं और आगे लिखते हैं कि मेरे बाद वाला फरमाइश बज गया मेरा फरमाइश अभी तक नहीं बजा। तो चलिए अगली फरमाइश आपका भी प्ले कर दिए। इन्जॉय करिए अपने गाने को और सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को।

0: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
1: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
2: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
0: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
3: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
4: भरोसे वाले से लेंगे,
3: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
4: और कीमत भी।
3: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
5: SP ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
6: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन तो मेरा सर्टिफिकेशन।
7: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए SP ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
8: 22 कैरेट 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
7: आज यहाँ SP ज्वेलर्स जो है DAV गर्ल्स स्कूल के सामने स्टेशन रोड गोपालगंज,
9: और अब SP ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
7: कॉल करें 85070 32042 पे।
10: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल घोष मोड़ दरगाह रोड गोपालगंज।
11: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
12: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर पटना कलकत्ता लखनऊ बनारस चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
7: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 62042434003 62042434403।
13: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
14: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
13: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का आधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
14: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल कमला राय कॉलेज रोड इंडियन गैस एजेंसी के बगल में गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने डॉक्टर कॉलोनी गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
15: बहुत बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर से आप सभी का रेडियो टूरिज्म 90.4 FM पे आपके अपने कार्यक्रम योर वॉइस योर चॉइस में, और एक 1:57 हो चुके स्टूडियो घड़ी में, और 4 बजे तक मैं आप सभी के साथ हूँ। और फरमाइशों का सिलसिला की बात करें तो यहाँ काफ़ी सारे पहुँच रहे हैं और काफ़ी सारे मैसेज है कि मैम मेरा गाना और मेरा बारी कब आएगा। तो सबकी बारी आएगी और वही कर रहे हैं तब से, हम एक एक करके सबके गाने की फरमाइश प्ले कर रहे हैं। और यहाँ हमारे साथ RJ वंशिका जी जुड़ चुकी हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका, और इनकी तरफ से फीडबैक पहुंचा हुआ है, तो चलिए पहले सुनते हैं कि क्या कहना चाहती हैं ये।
16: हेलो नमस्ते, कैसी हैं RJ सोनी जी आप? बहुत बहुत ही प्यारा प्रोग्राम चल रहा है आपका, और मैं भी चोरी चोरी चुपके चुपके सुन रही हूँ, इतने प्यारे प्यारे गाने सुनने को मिल रहे हैं। प्रस्तुति तो बहुत क्या ही कहें, लाजवाब प्रस्तुति है, काफ़ी एनर्जेटिक शो करती हैं आप, बहुत ही प्यारा लगा। और अभी जो भोजपुरी गाना बजा ना, मुझे थोड़ा थोड़ा समझ आया और बहुत ही प्यारा लगा मुझे। ये कहूँगी सुनते रहिए रेडियो हिमचिम RJ सोनी जी के साथ, बहुत ही प्यारा प्रोग्राम, थैंक यू सो मच।
15: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमें चोरी चोरी चुपके चुपके सुन रही हैं, और चोरी चोरी सुनते रहिए, बीच में बता दिया करिए कि आप हमें सुन रही हैं, और जो भोजपुरी गाना थोड़ा थोड़ा समझ में आया, आप डेली अगर सुनिएगा तो फिर भोजपुरी गाने सारे समझ में आने लगेंगे। और मेरा हालचाल बिल्कुल बढ़िया। आप बताइए, आप कैसी हैं? और आगे यहाँ पाजी यूपी चौवन से जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। लिख रहे हैं कि क्या करे कुछ कहना नहीं चाहता। ओहो, क्या करे कुछ कहा नहीं जाता, दर्द मीठा है पर सहा नहीं जाता, मोहब्बत हो गई है इस कदर आपसे बिना याद किए रहा नहीं जाता, तो फिर रहने की क्या ज़रूरत है, याद कर लिया करिए जब भी याद आए। और बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर से। आगे यहाँ एक और मैसेज है, लिख रहे हैं कि हेलो मैम, मैं भी जुड़ गई हूँ। बिल्कुल, बहुत बहुत स्वागत आपका। और पवन सिंह के आवाज़ में गाने की फरमाइश है, और हमार जान हो गाने की फरमाइश के साथ है। बिल्कुल, बहुत बहुत स्वागत है आपका, फरमाइश है, प्ले करेंगे। नाम अपना ज़रूर बताइए कि आप कौन है और कहाँ से। और आगे एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि हाय, मेरा गाना नहीं बजेगा। बिल्कुल, आपका भी गाना बजेगा। और टोला सिपाया से जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका। आशा कुमारी जी हैं, बने रहिए हमारे साथ में और अगली फरमाइश की तरफ बढ़ेंगे। और अगली फरमाइश हमारे पास है, अहमद अली जी जुड़े हुए हैं सारे अवार्ड नंबर एक से, तो चलिए आपकी गाने की फरमाइश जो है प्ले कर दी है। इंजॉय करिए अपने गाने को रेडियो रूम से 90.4 FM पे।
17: अस्सलाम वालेकुम, मैं अहमद अली सारे अवार्ड नंबर एक से। गुड आफ्टरनून मैम, कैसी हैं? तबीयत खराब है। हम पूछे, भारती मैम के पास कॉल किए थे तो उनसे पूछे कि सोनी मैम कहाँ है, कल क्यों नहीं प्रोग्राम हुआ, तो वही बोली हैं कि तबीयत खराब है। ठीक है, नहीं तो हमें क्या पता कि आपका तबीयत खराब है। और सब बताइए मैम, कैसे हैं? कल नहीं आई थी तो थोड़ा भी अच्छा नहीं लग रहा था हम लोग को। आप लोग आती हैं, प्रोग्राम होता है तो कितने लोगों का आवाज़ सुनने को मिलता है, अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिलती है, गाने सुनने को मिलते हैं। हाँ, आप तो कल आई नहीं थी, हम लोग तो ऐसे सुन ही रहे थे, गाने बज रहे थे, सुन रहे थे। आज मेरा फरमाइश है मैम, मैं लिंक भेज देता हूँ, सुनाना है सबसे पहले आपको और अख्तरी को और दिलीप भाई, कमरान भाई, राघव भाई और जो भी रेडियो रिमझिम जहाँ से भी सुन रहे हैं सभी को। ठीक है, ओके बाय।
15: बिल्कुल, आपके गाने की फरमाइश जो है प्ले कर दिया। और रही बात भारती जी का, तो उन्हें खुद नहीं पता था कि मैं क्यों नहीं आई हूँ, क्योंकि मेरा बात सिर्फ स्वर से हुआ था कि मैं आज नहीं आ पाऊँगी। और बाकी जिसको जो लगा वैसे वो लोग जवाब दिए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और यहाँ और भी सारे मैसेज है, और रोहित जी हैं लिख रहे हैं कि मेरा गाना का फरमाइश कब प्ले होगा। बिल्कुल, अगली फरमाइश आपका है, थोड़ा और वेट करिए, इस गाने के बाद आपकी फरमाइश प्ले करेंगे। फिलहाल अहमद अली जी की फरमाइश इंजॉय करिए रेडियो 90.4 FM।

90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहे आप सभी और कार्यक्रम योर वॉइस योर चॉइस का और अभी काफी खूबसूरत गाने की फरमाइश थी, फरमाइश करने वाले थे अहमद अली जी सारे अवार्ड नंबर एक से। और आगे हाँ सन्यासी रंजन बाबा जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि मेरी भी गाने की फरमाइश है, बिल्कुल आपकी फरमाइश है, प्ले करेंगे। और आगे यहाँ अगली फरमाइश की तरफ बढ़ेंगे और अगली फरमाइश हमारे पास है देहरादून से और गाने की फरमाइश करने वाले हैं रोहित जी और गाना सुनना है इनको, जब तक रहेगा समोसे में आलू। क्या बात है, गाने की फरमाइश करके आपने आज फिर से मुझे समोसा का याद दिला दिए। इंजॉय करिए अपने गाने को, रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे है।

0: सबसे कम दाम में।
1: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
0: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
1: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी चैन पट्टी गोपालगंज,
0: या अभी कॉल कीजिए 92899-22567 या 97-714-86-164।
1: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा,
2: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
1: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
1: संपर्क 99-393-65-930।
0: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, शाखा राजापुर बाजार गोपालगंज। CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
1: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
0: तो देर मत कीजिए,
1: सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, कॉल अस 9939721308।
3: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
4: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
3: आज ही संपर्क करें 7388-89470 या 9198-88-6973।
5: आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का, 2:15 हो चुके स्टूडियो घड़ी में और अभी समय हो गया है दोपहर समाचार का, तो आप सभी कहीं मत जाइए, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम। आप सभी से मिलते हैं दोपहर समाचार के बाद, और बाकी की फरमाइश जो है वो सभी दोपहर समाचार के बाद।
6: And with that we end the midday news.

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया। पाकिस्तान पर सहअध्यक्ष के तौर पर अपनी स्थिति का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। ईरान में भारतीय दूतावास ने अपने नागरिकों के लिए संशोधित परामर्श जारी कर गैर जरूरी यात्राओं से बचने की सलाह दी। कोंकण और गोवा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में तेज बारिश और अचानक बाढ़ के बाद असम में हाई अलर्ट। हॉकी इंडिया ने अगले महीने ब्रिटेन दौरे के लिए 24 सदस्यीय जूनियर महिला टीम की घोषणा की। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कोलंबिया ने कांगो को 1-0 से हराकर नॉकआउट चरण में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के कश्मीर मुद्दा उठाने पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। पाकिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र मंच का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाते हुए भारत ने कहा कि सहअध्यक्ष के रूप में निष्पक्ष रहने के बजाय पाकिस्तान ने पद का दुरुपयोग किया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने सहअध्यक्ष के तौर पर पाकिस्तान के आचरण की आलोचना की। पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि आसिम इफ्तिखार अहमद के टिप्पणियों के जवाब में पी हरीश ने जम्मू कश्मीर पर भारत के लंबे समय से चले आ रहे रुख को दोहराया। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर पूरी तरह से भारत का आंतरिक मामला है।
1: मैं पाकिस्तानी पक्ष की टिप्पणियों का उल्लेख करता हूं। यह हैरान कर देने वाला है कि ऐसे मंच पर जहां राजनीतिक मुद्दों पर संतुलित और निष्पक्ष चर्चा की उम्मीद की जाती है, ऐसी बातें कही गईं। मैं दोहराना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर पूर्ण रूप से भारत का घरेलू मामला है।
0: ईरान के तेहरान में भारतीय दूतावास ने सुरक्षा स्थिति में सुधार को देखते हुए भारतीय नागरिकों के लिए संशोधित परामर्श जारी किया है। एक रिपोर्ट।
2: भारतीय दूतावास ने कहा कि बदलते घटनाक्रमों के बावजूद भारतीय नागरिकों को अगली सूचना तक सभी गैर जरूरी यात्राओं से बचना चाहिए। बहुत आवश्यक होने पर ईरान यात्रा करने वालों को अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने तथा स्थिति पर लगातार नजर रखने की सलाह दी गई है। विश्वसनीय स्रोतों के जरिए स्थानीय घटनाक्रमों पर बारीकी से नजर रखने और स्थानीय अधिकारियों के निर्देशों का पालन करने को भी कहा गया है। लोगों से दूतावास को अपने बारे में जानकारी देने की सलाह दी गई है। ताजा जानकारी और आगामी परामर्श के लिए दूतावास की आधिकारिक वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगातार नजर बनाए रखने को कहा गया है। किसी भी तरह की सहायता के लिए दूतावास ने आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। ये नंबर है +989128101915। दूसरा नंबर है +989128101909। तीसरा नंबर +989128101902। और चौथा नंबर है +989932179359। इसके अलावा भारतीय नागरिक cons.tehran@mea.gov.in पर ईमेल के जरिए भी दूतावास से संपर्क कर सकते हैं। समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: विदेश मंत्री डॉ. जयशंकर ने चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिवेश के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि समान मूल्यों और आपसी विश्वास वाले देशों को और अधिक निकटता से मिलकर काम करना चाहिए। सियोल में दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ बैठक के दौरान उन्होंने ये बात कही।
1: इस साझेदारी को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। इसमें सरकार के अलग अलग विभाग और देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलू शामिल हैं, जिनके बीच तालमेल बैठाना बहुत आवश्यक है। मैं कहूंगा कि हमें भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक आधुनिक साझेदारी की ओर बढ़ना चाहिए।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 3 दिन की खाड़ी क्षेत्र की यात्रा पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसका उद्देश्य ईरान के साथ हुए नए संवाद और समझौते के बाद प्रमुख अरब सहयोगियों को विश्वास दिलाना है।
1: चार महीने से जारी पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए अमेरिका ने ईरान के साथ नया समझौता किया है। श्री रूबियो कल देर रात अबू धाबी पहुंचे। उनका संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत और बहरीन में बातचीत का कार्यक्रम है। इस सप्ताह के अंत में वे गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के अधिकारियों से मिलेंगे। इस दौरान वे क्षेत्रीय सहयोगियों को अमरीका और ईरान के बीच लागू अंतरिम शांति समझौते और संभावित अंतिम समझौते के ढांचे के बारे में जानकारी देंगे। यात्रा से पहले श्री रूबियो ने कहा कि उनकी यात्रा का उद्देश्य ईरान और अमेरिका की बातचीत में खाड़ी देशों की राय को महत्व देना है। उन्होंने कहा कि किसी भी समझौते के अंतर्गत ईरान को होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों पर टोल लगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने टोल वसूली को अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ बताया। सप्ताहांत में स्विट्जरलैंड में अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत सकारात्मक रही, हालांकि दोनों पक्षों ने बैठक के बारे में अलग अलग राय व्यक्त की है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रवर्तन निदेशालय मुंद्रा बंदरगाह से 3000 किलोग्राम मादक पदार्थ आयात मामले से जुड़े धनशोधन मामले में दिल्ली के 5 स्थानों पर तलाश अभियान चला रहा है। निदेशालय के अधिकारियों ने बताया कि ये तलाशी हरप्रीत सिंह तलवार, शम शुदरुन और उनके सहयोगियों से जुड़े परिसरों पर की जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि मादक पदार्थ से प्राप्त धन का कथित तौर पर दिल्ली के नाइट क्लबों में निवेश किया गया था। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर कर्नाटक में उनके परिवार द्वारा संचालित एक ट्रस्ट को भूमि आवंटन से जुड़े कथित घोटाले में संलिप्त होने का आरोप लगाया है। पार्टी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने आज नई दिल्ली में कहा कि वर्ष 2024 में कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड ने एयरोस्पेस और रक्षा क्षेत्रों में अनुसंधान तथा विकास के लिए ट्रस्ट को लगभग 5 एकड़ औद्योगिक भूमि आवंटित की थी। श्री भंडारी ने आरोप लगाया कि इन क्षेत्रों में कोई पूर्व अनुभव न होने के बावजूद ट्रस्ट को लगभग 100 करोड़ रूपए की अनुमानित कीमत की भूमि आवंटित की गयी। भारी उद्योग मंत्री एचडी कुमार स्वामी ने इस्पात उद्योग से भविष्य के विकास के लिए डिजिटलीकरण अपनाने को कहा है। आज नई दिल्ली में इस्पात क्षेत्र में डिजिटलीकरण पर आयोजित चिंतन शिविर में उन्होंने ये बात कही। इस्पात क्षेत्र के मजबूत प्रदर्शन का उल्लेख करते हुए श्री कुमार स्वामी ने कहा कि देश वर्ष 2018 से विश्व के दूसरे सबसे बड़े इस्पात उत्पादक के रूप में अपनी मजबूत स्थिति बनाए हुए है। आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सेंट्रल विस्टा कॉरिडोर के लिए केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन पर निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने इस क्षण को ऐतिहासिक बताया और कहा कि ये परियोजना आवागमन को सुगम बनाएगी।
3: बहुत ही ऐतिहासिक मूवमेंट है, जब देश की राजधानी जहां से पूरी सरकार चलनी है, सेंट्रल विस्टा और यहां के कर्मचारी और यहां के जितने भी कार्यालयों में काम करने वाले सब लोग, उनको एक ऐसी सुविधा प्रदान करने के लिए अष्टमी पूजन अथवा ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी आज ये की गई है। और ये जब कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद दिल्ली के बहुत से छोर आपस में जहां जहां मेट्रो लाइन चलती है उनको ये जोड़ेगी। अब ये जो लाइन है ये आर के आश्रम से लेकर के और इंद्रप्रस्थ तक, जिसके अंदर 9 स्टेशन
0: है। केंद्रीय विद्यालयों के लिए 36वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2025-26 का पुरस्कार वितरण समारोह कल नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। श्री मेघवाल विजेता विद्यार्थियों और विद्यालयों को पुरस्कार प्रदान करेंगे। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के ताराताला के पास निर्माणाधीन गोदाम के छत गिरने से 5 लोगों के मारे जाने की आशंका है। मलबे में कुछ और लोग फंसे हुए हैं। अग्निशमन और आपातकालीन सेवा कर्मी तथा पुलिस बल मौके पर पहुंच चुके हैं। बचाव अभियान जारी है। आज पासपोर्ट सेवा दिवस है। ये दिन 24 जून 1967 को पासपोर्ट अधिनियम के लागू होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम के दूसरे चरण का क्रियान्वयन, चिप आधारित ई पासपोर्ट की शुरुआत, नए पासपोर्ट सुरक्षा केंद्रों और पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र की स्थापना तथा रिकॉर्ड स्तर पर पासपोर्ट जारी करने से यात्रा सुगम हो रही है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि सेवा, सुशासन और नागरिक सुविधा के संकल्प के साथ इंडिया पोस्ट द्वारा संचालित डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र के माध्यम से पासपोर्ट सेवाएं देश के सुदूर क्षेत्रों तक भी पहुंच रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज रानी दुर्गावती को श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि रानी दुर्गावती एक वीर रानी और नारी शक्ति का प्रतीक थी। रक्षा मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि रानी दुर्गावती ने अपनी मातृभूमि और संस्कृति की रक्षा में अद्वितीय साहस और वीरता का परिचय दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कोंकण और गोवा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। तटीय कर्नाटक और मध्य महाराष्ट्र में भी अगले दो दिन इसी तरह का मौसम रह सकता है। असम, मेघालय, कर्नाटक के भीतरी भाग, ओडिशा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 29 तारीख तक तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया गया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख में शनिवार तक तेज हवा के साथ वर्षा का अनुमान है। अरुणाचल प्रदेश के निचले सुबनसिरी जिले में तेज बारिश से असम के विभिन्न सीमावर्ती जिले के निचले इलाकों में बाढ़ की आशंका बढ़ गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि असम में सभी संबंधित विभाग हाई अलर्ट पर हैं।
4: अरुणाचल प्रदेश में हुई भारी बारिश के बाद असम में संभावित बाढ़ की स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने सभी संभावित एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा है। इसके परिणाम स्वरूप असम में धेमाजी, लखीमपुर, विश्वनाथ और सोनितपुर सहित निचले क्षेत्रों में नदियों के जलस्तर और प्रवाह की गति में उल्लेखनीय वृद्धि होने की संभावना है। अगले एक से दो दिनों में बाढ़ का पानी और आगे के क्षेत्रों की ओर बढ़ सकता है। SDRF, NDRF और अन्य इमरजेंसी रेस्पॉन्स दलों को तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं जिला प्रशासन को संवेदनशील क्षेत्रों पर कड़ी निगरानी रखने और आवश्यक एहतियाती उपाय सुनिश्चित करने को कहा गया है। निचले तथा बाढ़ संभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने, प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देश पालन करने, जलमग्न क्षेत्रों से दूर रहने तथा छोटी नावों से यात्रा न करने की सलाह दी गई है। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: हॉकी इंडिया ने 5 से 14 जुलाई तक ब्रिटेन दौरे के लिए 24 सदस्यीय जूनियर महिला टीम की घोषणा कर दी है। भारतीय टीम नए कोच टिम वाइट के नेतृत्व में जूनियर एशिया कप सहित आगामी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की तैयारी के सिलसिले में स्कॉटलैंड और इंग्लैंड में 7 मैच खेलेगी। खैदम शिलेमा जानू टीम की कमान संभालेंगी, जबकि निधि और एंगल हर्षारानी मिंज गोलकीपर की जिम्मेवारी संभालेंगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज मैक्सिको में खेले गए ग्रुप के मैच में कोलंबिया ने कांगो को 1-0 से हराकर नॉकआउट चरण में जगह बना ली। डैनियल मनोज के दूसरे हाफ में किए गए गोल की मदद से कोलंबिया ने लगातार दूसरी जीत हासिल करते हुए अगले दौर में प्रवेश किया। इससे पहले पुर्तगाल ने ह्यूस्टन में इसी ग्रुप के एक मैच में उज्बेकिस्तान को 5-0 से हराया। 41 वर्षीय क्रिस्टियानो रोनाल्डो के 2 शानदार गोल की बदौलत पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान पर 5-0 से जीत दर्ज की। रोनाल्डो अब 6 अलग अलग विश्व कप टूर्नामेंट में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में 1% की वृद्धि दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 908 अंक की उछाल के साथ 77,109 पर, जबकि निफ्टी 241 अंक बढ़कर 24,065 पर कारोबार कर रहा था। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लेह में स्थित ऐतिहासिक हेमिस मठ में आज उत्साह और श्रद्धा के साथ हेमिस उत्सव की शुरुआत हुई। 2 दिन के उत्सव में देश विदेश के हजारों श्रद्धालु, पर्यटक, संस्कृति प्रेमी और बौद्ध विद्वान शामिल हो रहे हैं। प्रत्येक वर्ष मनाया जाने वाला हेमिस उत्सव लद्दाख के सबसे महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजनों में से एक है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया। पाकिस्तान पर सह अध्यक्ष के तौर पर अपनी स्थिति का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। ईरान में भारतीय दूतावास ने अपने नागरिकों के लिए संशोधित परामर्श जारी कर गैर जरूरी यात्राओं से बचने की सलाह दी। कोंकण और गोवा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में तेज बारिश और अचानक बाढ़ के बाद असम में हाई अलर्ट। हॉकी इंडिया ने अगले महीने ब्रिटेन दौरे के लिए 24 सदस्यीय जूनियर महिला टीम की घोषणा की और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कोलंबिया ने कांगो को 1-0 से हराकर नॉकआउट चरण में जगह बनाई। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए श्रोताओं, चलते हैं अगले कार्यक्रम की ओर। कार्यक्रम का नाम एक ही कलाकार। नमस्कार श्रोताओं, मैं रचना अग्निहोत्री आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ, अभिवादन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ आपके पसंदीदा कार्यक्रम एक ही कलाकार में। आज हम बात करेंगे 90 के दशक की उस अभिनेत्री की जिसने अपनी चुलबुली अदाओं, शानदार डांस और दमदार अभिनय से करोड़ों दिलों में जगह बनाई। जी हाँ, करिश्मा कपूर, जिन्हें प्यार से लोलो भी कहा जाता है।

0: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमझिम 90.4 एफएम पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
1: टॉप रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
2: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके आओ तनी बाबू।
1: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
2: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
1: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक से जाके अपन पूरा सामान लिया।
2: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लिया, दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कर ले से का फायदा?
3: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
1: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
4: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के काहे चलतनी? और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
5: अरे ए बबू, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आँख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
4: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू? अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आ गइल बनी। यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीर फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करतनी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा? आँख में कोनो तरह के दर्द भी ना हुई और ऑपरेशन भी हो जाए।
1: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुपर सिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर एम ए अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने, रालसन होटल के पश्चिम, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053 69015 पे।
6: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
0: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
6: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
0: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
6: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
0: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
6: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
0: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।
7: ठक ठक।
8: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
9: अच्छा मिला ही नहीं।
8: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
1: जी हाँ, कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
8: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
1: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
10: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
11: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक, म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4
12: रेडियो रमझम,
11: सुनो दिल से।

0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
2: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
3: और दुल्हन का लहंगा, साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
4: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा।
5: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
6: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
1: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
3: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
1: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
0: कॉल करें 87894-18744।
7: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
8: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
7: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
8: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है, माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोप्राइटर सोनू जी, संपर्क करें 99399-66999।
9: क्या चाहते हो? मैं ना जाऊँ अपने दोस्त की शादी में?
10: क्यों, क्या हुआ है?
9: तुम्ही ने तो कहा था मुझे डिजाइनर लहंगा, साड़ी और गाउन दिलाओगे।
10: अरे तो कौन सी बड़ी बात है, आज ही चलते हैं गोपालगंज में लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स, वहाँ तुम्हें तुम्हारी मन पसंद के अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाएंगे।
9: फिर ये भी ठीक है, चलो चलते हैं लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स।
10: शादी विवाह या किसी भी शुभ अवसर पर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें, लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स, जो है मेन रोड गोपालगंज में।
11: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान, पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।

दोपहर समाचार के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम योर वॉइस योर चॉइस में रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम पे। और अगर आप भी शो में जुड़ना चाहते हैं, शो में जुड़ने के लिए माध्यम है व्हाट्सएप, इंस्टा, कॉल, आप जिस माध्यम से चाहे जुड़ सकते हैं। और यहाँ व्हाट्सएप मैसेज की तरफ बढ़ेंगे तो काफ़ी सारे मैसेज पहुँचे हुए हैं। दिनेश मिश्रा जी हैं दिल्ली से, लिख रहे हैं कि बारिश से पहले बादल इसलिए गरजते हैं कि बेसन प्याज मिर्ची ना हो तो ले आओ। जी हाँ बिल्कुल, और दिनेश मिश्रा जी की तरफ से है। और आगे लिखते हैं, किसी रोज़ याद ना कर पाऊँ तो खुदगर्जी ना समझ लेना, किसी रोज़ याद ना कर पाऊँ तो खुदगर्ज ना समझ लेना, दरअसल छोटी सी उम्र में परेशानियाँ बहुत है, मैं भूला नहीं हूँ किसी को, मेरे बहुत अच्छे दोस्त जमाने में, बस थोड़ी ज़िंदगी में उलझने पड़ी है दो वक्त की रोटी कमाने में। और दिनेश मिश्रा जी हैं दिल्ली से, बहुत बहुत धन्यवाद आपका शो में जुड़े। लिख रहे हैं कि फरमाइश नहीं है दूसरा बजा दीजिए हो, बिल्कुल। और यहाँ आगे बढ़ेंगे, आगे और भी सारे मैसेज पहुँचे हुए हैं। और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि हेलो मैम, और हेलो मैम के बाद मैसेज कुछ है ही नहीं, तो नाम पता ज़रूर मेंशन करिए, बहुत बहुत स्वागत आपका। और यहाँ मैसेज है, अब तो मेरा गाना बजा दीजिए, बिल्कुल अब आपके गाने की फरमाइश है, और आपकी फरमाइश है तो प्ले करेंगे। और गाने की फरमाइश करने वाले हैं मनीष रजाक जी फाजिलनगर कुशीनगर उत्तर प्रदेश से, तो चलिए आपकी गाने की फरमाइश जो है प्ले कर दिए, इन्जॉय करिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: 90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहे हैं आप सभी, और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और अभी गाना सुन रहे थे हम सभी, गाने की फरमाइश पहुंची थी फाजिल नगर कुशनगर उत्तर प्रदेश से मनीष रजाक जी की, और इनकी तरफ से मैसेज है, लिख रहे हैं गाना बजाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे बढ़ेंगे, आगे यहाँ अगली फरमाइश जो हमारे पास पहुँचा हुआ है, उससे पहले मैसेज है, लिख रहे हैं कि दुबई में अभी बहुत गर्मी है मैम, संजय यादव जी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और यहाँ मैसेज है, मैम ये गाना सुनवा दीजिए, तो बिल्कुल आपके गाने की फरमाइश जो है प्ले करेंगे। और मैसेज करने वाले हैं, नाम है इनका संजेश कुमार जी, बेंगलोर से जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है, थोड़ा वेट करिए हम आपके गाने की फरमाइश जो है प्ले करेंगे। और अगली फरमाइश जो हमारे पास पहुंचा हुआ है, कन्हैया दास जी जुड़े हुए हैं दुबई से, और उनको सुनना है गाना, वॉइस मैसेज पहुंचा हुआ है, तो चलिए सुनते हैं कौन सी गाने की फरमाइश है।
1: आधा घंटा बचल बा समय,

0: तो कन्हैया जी, ना ही आपके मैसेज में आपके गाने की फरमाइश दिख रही है मुझे, और ना ही आपने वॉइस में गाने का नाम भेजा है। तो गाने का नाम क्लियर करिए, हम आपके गाने की फरमाइश जो है प्ले करेंगे। और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि नाइस सॉन्ग, और मैसेज करने वाले हैं नईम अंसारी जी, जामतारा से बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका। और एक और यहाँ मैसेज है, सगीर आलम अंसारी जुड़ चुके हैं तेजपुर आसाम से, बहुत बहुत स्वागत है सगीर जी आपका भी। और यहाँ जहूर आलम अंसारी है, इनकी तरफ से गाने की फरमाइश है। तो चलिए आपके गाने की फरमाइश जो है प्ले कर रहे हैं, आवाज़ पहुँचिए, अपने गाने को एंजॉय करिए रेडियो रिमझिम पे।
1: नमस्कार सोनी मैम, सलाम अलैकुम, कुवैत से जहूर आलम वॉइस भेज रहा हूँ, उनको गाना सुनना है उसका मत बन जाना, जोगी भूल के अपने साजन को, ये गाना सुनवा दीजिएगा। और भी हमारे सुनने वाले दोस्त फरमाइश है,

0: रोज रोज का पेट दर्द।
1: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
2: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
3: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
2: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
0: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
4: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा, गोपालगंज। शाखा राजापुर बाजार, गोपालगंज। CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
5: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
4: तो देर मत कीजिए,
5: सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा, गोपालगंज। कॉल अस 9939721308।
6: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
7: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
6: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहाँ पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
7: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
8: अरे स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
4: अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग।
5: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
4: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
5: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
4: एक बार सेवा का मौका जरूर दें। विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27 बंजारी, गोपालगंज।
5: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।

0: ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत रेडियो रिमझिम 90.4 FM में आपके अपने कार्यक्रम योर वॉइस योर चॉइस में। 3:08 हो चुके हैं स्टूडियो घड़ी में और यहाँ आगे बढ़ेंगे तो काफ़ी सारे मैसेज है और मैसेज है लिख रहे हैं कि कितने दिनों के बाद आपके प्रोग्राम से जुड़ रहा हूँ। और राम पुकार कुमार जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका। और लिख रहे हैं कि खामोशियाँ कभी बेवजह नहीं होती, कुछ दर्द आवाज़ छीन लिया करते हैं। और आगे लिखते हैं कि सब कहते हैं कि वक्त हर जख्म भर देता है, पर सच तो ये है कि हम दर्द के साथ जीना सीख जाते हैं। वहम से भी खत्म हो जाते हैं अक्सर रिश्ते, कसूर हर बार गलतियों का नहीं होता। और मैसेज के साथ है राम पुकार कुमार जी, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आगे यहाँ मैसेज लिख रहे हैं कि राधे राधे मैम, देवराज कुमार है रेशम नगर बघेल जिला गोंडा झारखंड से, लिख रहे हैं कि आपके प्रोग्राम से लेट से जुड़ा हूँ, हाजिर लगा दीजिए। बिल्कुल लग चुकी है आपकी हाजिरी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक और यहाँ मैसेज है लिख रहे हैं कि मेरा भी गाना है बजा दीजिए। बिल्कुल आपकी गाने की फरमाइश है, प्ले करेंगे। संजेश जी जुड़े हुए हैं गोपालपुर से और थोड़ा वेट करिए, आपकी गाने की फरमाइश जो है प्ले करेंगे। फिलहाल यहाँ कॉल पहुँचा हुआ है तो बात करेंगे और देखेंगे कौन है, कहाँ से और गाने की फरमाइश क्या है। हेलो हेलो
1: जी, नमस्ते मैडम
0: जी। नमस्ते,
1: क्या हाल चाल?
0: बिल्कुल बढ़िया रहुआ, बताएं क्या हाल खबर बा?
1: सब ठीक है बाबू, तो 2 बजे कहीं नहीं आना है, खाया आके फिर लग नहीं रहा प्रोग्राम में। फिर तो सुबह 11 बजे फोन करिए तो भारती जी कहते हैं कि ना चली सो ना ही हम मैडम
0: ना, तो आज हम लेटे आई नहीं हूँ, इसे ना ही रही अभी।
1: हाँ, रिकॉर्डिंग के बारे हम सुबह फर्स्ट कॉल कर नहीं आ कुछ नहीं है, कल के समाचार क्या बात, तबियत तो क्या खराब था, कल के काम से ना आए रही।
0: अच्छा अच्छा, ना हम आई नहीं है, 12 बजे आते सीधा ऑन एयर ही नहीं है।
1: हाँ, हम 12 बजे पे चालू करने थे भाई, ऑनलाइन आ गए
0: ऐसे कोई के पता ना रहे कि कल के तो आई ना रही कि आज आए, वैसे ना बोल लो के। और सब बताएं, काम धंधा कैसे चलाता है?
1: काम धंधा ठीक है चलता है मैडम, मुहर्रम के एकदम भाई के कल तो कल परसों भाई है भाई,
0: कल सुबह न हुआ मुहर्रम जुम्मा के दिन।
1: हां, जुम्मा के लास्ट में ना
0: मेला कहिया हटे
1: जुम्मा के,
0: जुम्मा के। हां
1: हां,
0: अच्छा फिर तो बढ़िया बात।
1: हां, गाना निकाल रही है ठीक है, दिल है तुम्हारा के दिल लगा लिया है मैंने तुमसे प्यार करके, साथ में रहो गुनगुनाओ के भाई।
0: अच्छा,
1: और सब जितना रेडियो रेडियो सुनने वाला बा भाई सब कुछ की सुनावल जाए, हम ये करो सेंटर में सब कुछ सुनावल जाए।
0: चलिए तो गाना प्ले कर दे लेवानी।
1: चलिए ठीक
0: है, बहुत बहुत धन्यवाद समय कॉल करने।

94.4 रेडियो रिमझिम सुन रहा बनी रहा सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और अभी गाना सुन रहे थे, गाने की फरमाइश पहुंची थी धनाव से इशाद मास्टर जी का। और यहाँ मैसेज है लिख रहे हैं कि और अच्छा दिल व भाई के मैसेज करने वाले हैं संजय यादव जी दुबई से। एक और यहाँ मैसेज है लिख रहे हैं कि मेरा गाना नहीं बजेगा क्या मैम? बिल्कुल बजेगा आपका भी गाना। और यहाँ और एक मैसेज पहुँचा हुआ है और गाने की फरमाइश है, और गाने की फरमाइश है कन्हैया दास जी की, और इनको सुनना है गाना। और गाना है तोहरे से साथ जब छूटी। तो चलिए आपके गाने की फरमाइश जो है प्ले कर दिए हैं, इंजॉय करिए अपने गाने को रेडियो रिमझिम 94.4 FM पे।

और यहाँ कन्हैया दास जी की तरफ से मैसेज भी पहुंच गया, लिख रहे हैं थैंक यू गाना बजाने के लिए। एक और यहाँ मैसेज है गुरु नानकपुरा बठिडा पंजाब से, किशोर सबलनिया जी, सवित्री सबलनिया, सुमन सबलनिया, बेटी अंशु के साथ जुड़ चुके हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और किसी भी गीत में शामिल कर लीजिए। और मैडम जी प्रोग्राम बहुत ही अच्छा चल रहा है, प्रोग्राम सुनकर मैसेज कर दिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और इन्जॉय करिए आप भी गाने को।

0: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
2: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
2: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
2: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710-3992 या 9765-65750। नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
2: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
1: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 1,10,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
2: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
1: या अभी कॉल कीजिए 92899-22567 या 97714-86164।
3: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
4: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
3: आज ही संपर्क करें 7388-89470 या 9198-88-6973।

वेलकम बैक दोस्तों, रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे आपके अपने कार्यक्रम योर वॉइस योर चॉइस में। और यहाँ 3:23 हो चुके हैं स्टूडियो घड़ी में, और व्हाट्सएप मैसेज की तरफ बढ़ेंगे। तो मैसेज है, लिख रहे हैं कि कुछ फासला खाली आंखों से होला, कुछ फासला खाली आंखों से होला, बाकी दिल के फासला खाली बात से होला, केहू लाख भूले के कोशिश करे, बाकी कुछ रिश्ता ख़त्म खाली सांस से होला। और आगे बाकी का हाल बा मैम, हम भी जुड़ गेल बानी। संतोष कुमार जी जुड़ल बानी सिवान बिहार से, मोहम्मदपुर बाजार के रहे वाला बानी। बहुत बहुत स्वागत बटे शो में। लिखा तनी कि हमरा तरफ बारिश हो रहा बा, और हमरा तरफ काफ़ी तेज़ धूप निकलल बाटे, और बारिश होता तो इंजॉय करी बारिश के और सुनत रही रेडियो रिमझिम के। और आगे यहाँ एक और मैसेज है, और राम पुकार जी हैं, लिख रहे हैं कि बहुत ही प्यारा सॉन्ग दिल लगा लिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। और अगली फरमाइश हमारे पास पहुंचा हुआ है, उससे पहले एक और यहाँ मैसेज है। और गणेश कुमार हैं, लिख रहे हैं कि बाय बाय दी, एक और यहाँ मैसेज पहुंचा हुआ है। आयुष कुमार जी हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका, और मेरा सॉन्ग तो बिल्कुल आपकी भी गाने की फरमाइश है, प्ले करेंगे, थोड़ा वेट करिए। और वेरी वेरी गुड सोनी जी। और धनाव से हैं इरशाद मास्टर जी, तो किस बात पे वेरी वेरी गुड दे रहे हैं ज़रूर बताइए। और अगली फरमाइश की तरफ रुख करेंगे, तो अगली फरमाइश हमारे पास पहुँचा हुआ है। संजेश जी है गोपालपुर से जुड़े हुए हैं, तो चलिए आपकी गाने की फरमाइश जो है प्ले कर दिए, एंजॉय करिए अपने गाने को रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर।

0: 90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहे आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और अभी गाना सुन रहे थे हम सभी, गाने की फरमाइश करने वाले थे। नाम है इनका संजय जी, है गोपालपुर से और फीडबैक पहुंचा हुआ है, तो सुनते हैं पहले फीडबैक को।
1: बहुत बहुत धन्यवाद मैम गाना बजाने के लिए। और मेरे मनोज इलेक्ट्रिशियन भाई है, बहुत खुश हुए गाना सुनकर, बोल रहे हैं कि हम भी मैसेज करेंगे अगले दिन। ठीक है मैम
0: जी, बिल्कुल मैसेज करिए, जुड़िए शो से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और यहाँ एक और मैसेज है, बहुत जोर गाना बजाता, थैंक यू गाना बजाने के लिए। और मैसेज करने वाले हैं, नाम है इनका नूर आलम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आगे एक और यहाँ मैसेज है और फरमाइश है, तो चलिए अगली फरमाइश सुनते हैं। और अगली फरमाइश ये सुनवाना चाहते हैं अपनी पहले वाली जी आपको, तो चलिए आपके गाने की फरमाइश जो है प्ले कर दिए, वॉइस मैसेज पहुँचा हुआ, सुनते हैं कौन सी गाने की फरमाइश है।
2: हमके गाना सुनने के बाद हम अरशद लुधियाना पंजाब से रहे वाला बानी, बिहार के मोतिहारी जिला से। हमके गाना के बोल है, तू दीवानी हो तो आजा, तू दीवानी हो तो आजा, आजा दिल के प्यास बुझा जा ना, तो प्यार तो हर झूठा इकरार तो हर झूठा ना, तो प्यार तो हर झूठा इकरार तो हर झूठा। है चांद हमरा यार के चेहरा के दीदार दे दा, है चांद हमरा यार के चेहरा के दीदार दे दा, तू बेचैन दिल के करार दे दा, लूट गइल बानी हम अन्हरिया में, बेचैन दिल के करार दे दा। यही गाना सुने के है मैडम जी, बजा दें प्लीज।
0: बिल्कुल गाना के फरमाइश प्ले कर दिए हैं आपके गाने की फरमाइश जो है, और अरशद जी हैं जुड़े हुए हैं पंजाब से, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, एंजॉय करिए अपने गाने को।

0: बीके टाइल्स यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
1: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं,
0: अरार मोड़ SP कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड़ के पास कुचाय कोट,
1: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड ठावे मीरगंज, और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़ भोरे।
0: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक हकाम बाईपास सिवान,
1: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक मैरवा सिवान।
0: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी बीके टाइल्स ब्रांच पर आए और करे बेहतरीन खरीदारी।
1: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच में 9693101611,
0: कुचाय कोट ब्रांच में 9693101602, भोरे ब्रांच में 8207856404,
1: सिवान ब्रांच में 9942071405, मैरवा ब्रांच में 8207856403। अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
0: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS MS एक्स रेसिडेंट KGMU लखनऊ।
1: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS MS ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
0: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
1: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
0: पता, कमला राय कॉलेज रोड नियर रालसन होटल गोपालगंज।
1: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।

0: वेलकम बैक रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे आपके अपने कार्यक्रम योर वॉइस योर चॉइस में। और यहाँ काफ़ी सारे मैसेज है, फरमाइश है, तो बातों को ज़्यादा नहीं करेंगे, बातों को रोकेंगे। उससे पहले यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि आज तो भोजपुरी में कमेंट कर रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि भोजपुरी या एक्सप्रेस चल रहा है। और भोजपुरी ना बोली मैडम जी, अच्छा लग रहा है। ओहो, और जब अच्छा लग रहा है तो फिर भोजपुरी काहे ना बोली, और जो चीज़ अच्छा लगेगा वो तो कल जलानो। और मैसेज करे वाला बानी धनेश मिश्रा जी दिल्ली से, बहुत बहुत धन्यवाद बटे। और अगला फरमाइश की तरफ रुक करेंगे, उससे पहले एक और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है, अभी अभी दस्तक दिए हैं और नाम मेंशन नहीं है, तो नाम के साथ दस्तक दीजिए। फिलहाल सोच से जुड़े बहुत बहुत धन्यवाद। और अगली फरमाइश हमारे पास वॉइस के माध्यम से पहुँचा हुआ है, तो चलिए सुनते हैं कौन सी गाने की फरमाइश है।
1: हाय सोनी जी, कैसे हैं? मैं वीरेंद्र गुप्ता और खेकरिया रक्सौल नेपाल बॉर्डर से हूं, और अभी मैं आपसे जुड़ गया और मुझे एक गाना सुनना है। फिल्म है ओ सात दिन, कंगना ओ कंगना, शबीर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में है। और इस गाने को सबसे पहले मैं आपको और आरजे सोनू बाबू हैं और ऐसे हमारे लोकप्रिय जो अफसर भाई थे वो हैं, और जितने भी हमारे जानने पहचानने वाले हैं में से हैं, जैसे शफाक जी हैं, रोशनी जी हैं, हीना जी हैं, शाहजहाँ जी हैं, आशा चौहान हैं, खुशी हैं, और जितने भी हमारे जानने पहचानने वाले मित्र हैं, सभी को मैं ये गाना सुनाना चाहता हूँ। शुक्रिया।

0: 90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहे आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और अभी गाना सुन रहे थे लवली गुप्ता जी थे, गाने की फरमाइश किए थे और इनकी तरफ से मैसेज है, लिख रहे हैं कि सुन रहे हैं सोनी जी और 4 घंटा लगा दिए गाना बजाने में, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। और आगे यहाँ मैसेज है, आरजे अमन जी हैं लिख रहे हैं कि यह है शानदार गाना। और आगे एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि सुपर सॉन्ग, नाम मेंशन नहीं है, नाम ज़रूर बताइए आप कौन है कहाँ से। और आगे यहाँ कॉल पहुँच रहा है तो अगली फरमाइश हम कॉल के माध्यम से लेंगे, बात करते हैं कौन है कहाँ से जानते हैं। हेलो
1: नमस्कार
0: जी, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमके एक बात समझ में नहीं क्या होती, सबको यही सही कहे बोला था कि हम खिसिया गल बनी, यहाँ भी जेकर गाना नहीं बजावत कहता लोग कि हमरा से खिसियाल बने का, मैंने हम काहे ला खिसिया हम लोगों ने सही बताई
1: ना हो सी मजाक करते
0: हैं। हां
1: पहली कौन पहली होता,
0: अच्छा पहली होता लाल बहादुर बात करता नहीं।
1: हां सर
0: सबका तबीयत पानी बढ़िया है, मेरा भी, टीम का भी, सब कोई अपने अपने ड्यूटी में लगा है।
1: अच्छी बात है, होना भी चाहिए, कभी तो विकसित भारत अपना बनेगा
0: जी बिल्कुल।
1: 2020 देख रहे हैं खेला हो रहा
0: है,
1: अच्छा का मरना पड़ता है सब,
0: सब उसी में है।
1: हेलो
0: जी,
1: और सब ठीक है?
0: जी सब बढ़िया है, बता दीजिए गाना कौन सा सुना दे आपको।
1: हेलो यार गाना सुना देंगे, जितने भी हैं सफाई मित्र और हमारे ग्रामीण को लगे
0: स्वच्छता अभियान का गाना सुना दें। तो गाना प्ले कर दिया आपका।
1: नमस्कार
0: नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुमे कॉल किया।

0: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
2: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
2: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलो फेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
2: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710-3992 या 9765-65750।
3: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोडवा पर लड़खड़ा के कहे चलतनी, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
4: अरे ए बबुओ, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आँख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
3: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू। अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आगल बनी, यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़ फाड़ कैले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करतनी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आँख में कोनो तरह के दर्द भी ना हुई और ऑपरेशन भी हो जाए।
5: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुपर सी डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से, साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर MA अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड, यमहा शोरूम के सामने, राजसन होटल के पश्चिम, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053-69015 पे।

0: 90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहे हैं आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का 3:55 हो चुके हैं स्टूडियो घड़ी में और 5 मिनट है हम सभी के पास और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है। हाजरा जुड़ चुकी हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका और लिख रहे हैं कि बहुत दिन बाद शो में जुड़े हैं मैम, प्लीज़ टाइमली मेरा गाना बजा दीजिए। और टाइमली की बात करें तो अभी टाइमली कैसे बजाएं, टाइम तो है ही नहीं। और लास्ट में आप शो के समाप्ति के समय जुड़ी हैं, माफ़ करिएगा हमें, हम आपके गाने की फरमाइश जो है नहीं प्ले कर पाएंगे आज। और कल जुड़िएगा, पूरी कोशिश रहेगी कि कल हम आपके गाने की फरमाइश जो है प्ले करें। और यहाँ मैसेज है, पाजी हैं यूपी चौवन से लिख रहे हैं कि मेरा भी एक सप्ताह हो गया है क्या, तो सुबह से आप सुन रहे हैं और अभी आप पूछ रहे हैं एक सप्ताह तो हो गया है, गाने की फरमाइश है तो भेज दीजिए, समय तो है नहीं, कल आपकी गाने की फरमाइश जो है प्ले कर देंगे। फिलहाल यहाँ अगली फरमाइश जो हमारे पास पहुँचा हुआ है, राम कुमार जी हैं बालाघाट एमपी से और श्लोक राइस इंडस्ट्रीज में बलवंत ठेकेदार में काम करते हैं, लिख रहे हैं कि काम करता हूं मैं, मुझे जुदाई फिल्म का गाना सुनना है, सुनवा दीजिए। बिल्कुल आपके गाने की फरमाइश जो है प्ले कर रहे हैं, वॉइस पहुंचा हुआ है, पहले सुनते हैं कि क्या कहना चाहते हैं ये।
1: और जय बोलिए मैं नाग, यही गाना बजा दीजिएगा मैं नाग, यही गाना। और जय बोलिए मैं नाग, यही गाना बजा दीजिएगा

0: 90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहे हैं और राम कुमार जी आपके गाने की फरमाइश जो है मैसेज में आप दूसरा गाना बोल रहे हैं और वॉइस में दूसरा गाना है, तो गाना कंफर्म करिए, हम आपके गाने की फरमाइश प्ले करेंगे। फिलहाल यहाँ आगे अगली फरमाइश जो हमारे पास पहुँचा हुआ है, तो चलिए हजरा जी आप तो काफ़ी लकी हैं और आपकी गाने की फरमाइश जो है प्ले कर रहे हैं, इंजॉय करिए अपने गाने को। वॉइस पहुँचा हुआ है, सुनते हैं कि क्या कह रही हैं ये।
1: हेलो, हाय, अस्सलाम वालेकुम मैम, मैं हाजरा सदानुमार से, मुझे भी एक सॉन्ग सुनना है। सॉन्ग का नेम है दिल फिर भी तुम्हें देते हैं क्या याद करोगे, आप सुनाना चाहती हूँ। कुछ रेडियो दोस्त हैं हीना सताक सलेहान शाहजहाँ रुखसार ड्यूटी पर भी रुबीना नाज सताक जी है, शाहजहाँ जी है और सलेहा जी हैं और इरफान जी, कमरान जी, गुलाम हुसैन, वीरेंद्र गुप्ता, साहिल राजा, समीर जी और जितने भी जाने पहचानने वाले हैं उन सभी लिसनर को

0: 90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहे हैं आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और अभी गाना सुन रहे थे हजरा जी की फरमाइश से और इनकी तरफ से वॉइस मैसेज पहुंचा हुआ है, तो चलिए सुनते हैं क्या कह रही है ये।
1: फिल्म में गाना ले मैडम जी
2: थैंक यू मैम गाना बजाने के लिए, दिल से शुक्रिया। मैं हजरा सदौवा से।
0: और अब दीजिए आप सभी जाने की इजाज़त मुझे भी, क्योंकि 4:01 हो चुके हैं, शुरू घड़ी में 1 मिनट अधिक हो चुका है। और जिनकी भी फरमाइशें आज नहीं प्ले हो पाई है वो लोग माफ़ करिएगा मुझे, और कल पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपके गाने की जो फरमाइश है वो प्ले कर दें। और जिन जिनकी भी फरमाइशें छूट चुकी है उन सभी के लिए आखिरी एक गाना ये छोड़ के जा रही हूँ। आप सभी इंजॉय करिए रेडियो रिमझिम को और साथ में स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, रखिए अपना ख्याल, अपनों का ख्याल, और सुनते रहिए रेडियो रिमझिम, गुनगुनाते रहिए। फिर मिलेंगे आप सभी से अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए नमस्कार।

0: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है। लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
1: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
0: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
1: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
2: तब भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
3: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
2: ई बात बा, तो ऐसा करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में।
4: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
5: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
6: अरे मुन्नी, तुम आ गई, चल मेरे कान का झुमका ला।
7: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
6: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
7: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
4: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
7: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
4: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
7: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
4: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
8: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
9: भरोसे वाले से लेंगे,
8: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
9: और कीमत भी।
8: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
10: एसपी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
11: प्योरिटी यानी मामी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन्स तो मेरा सर्टिफिकेशन।
4: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसपी ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
7: 22 कैरेट, 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर की करें खरीदारी।
4: आज यहाँ एसपी ज्वेलर्स, जो है डीएवी गर्ल्स स्कूल के सामने, स्टेशन रोड, गोपालगंज।
12: और अब एसपी ज्वेलर्स का नया ब्रांच, मेन रोड, गोपालगंज, इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
4: कॉल करें 85070-32042 पे।
13: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक, म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4
14: रेडियो रिमझिम,
13: सुनो दिल से।

0: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
1: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
0: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
0: संपर्क 99-393-65-930।
3: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य SP त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज, जैसे
4: सभी प्रकार के नशा, जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
3: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
0: वैद्य SP त्यागी जी से मिलने का पता,
3: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड, थावे रोड, भी मार्केट के बगल में, कृष्णा जी के मकान में।
0: जानकारी के लिए कॉल करें 99-55-94-94-53
3: और 90-97-61-60-02।
5: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के काहे चलतनी, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
6: अरे ए बबू, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आँख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
5: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू। अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आ गइल बनी। यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीर फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करतनी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आँख में कोनो तरह के दर्द भी ना हुई और ऑपरेशन भी हो जाए।
7: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुपरसिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर MA अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड, यमहा शोरूम के सामने, रालसन होटल के पश्चिम, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99-53-69-015 पे।
8: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।

0: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
1: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
0: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
0: संपर्क 99-393-65-930।
3: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
0: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
3: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर X सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
0: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
3: या अभी कॉल कीजिए 92-899-22567 या 97-714-86-164।
4: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
5: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
4: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
5: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
6: आप सुन रहे हैं जिले की आवाज़, रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो

0: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
1: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
2: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
1: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगढ़ पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82 101 87 952। नियम और शर्तें लागू।
3: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
4: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
3: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
4: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
3: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
4: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
3: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
4: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57 902।
5: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल, घोष मोड़, दरगाह रोड, गोपालगंज।
6: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
7: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
8: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले, गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 62042434003 62042434003।
9: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
1: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
0: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
2: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
3: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
2: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
3: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399-66999।
4: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा गोपालगंज। शाखा राजापुर बाजार गोपालगंज। CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
5: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
4: तो देर मत कीजिए,
5: सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा गोपालगंज। कॉल अस 9939721308।
6: ध्वनि के तरंग 90.4 पर आप जिले की आवाज रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं।

0: मान जा।
1: अरे स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
2: अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग।
3: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
2: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
3: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
2: एक बार सेवा का मौका जरूर दें। विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27 बंजारी गोपालगंज।
3: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।
2: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
3: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
2: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
3: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
2: या अभी कॉल कीजिए 92899-22567 या 97-714-86164।
4: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो।

0: कोशिश बा कि ना हो खूब, बट आगे के पता नहीं।
1: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
2: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
3: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
4: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94-3945-651 या 97-0-97-06-575।
3: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
4: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
3: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
4: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
3: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
4: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
3: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
5: उत्तर बिहार का गौरव,
6: सारण प्रमंडल की शान,
5: गोपालगंज की धड़कन
6: और अपने भाषा की पहचान,
5: रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
6: सुनो दिल से।

0: ठक ठक।
1: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा मिला ही नहीं।
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमलश्री में।
3: जी हाँ कमलश्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमलश्री, कमलश्री, कमलश्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
3: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
4: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
5: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
4: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
5: पता जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
6: सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता, रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है, सुनो दिल से।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण एमडी फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
2: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
3: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 7545 67666।
4: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 9857788291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 9857788291 या 9522874088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
5: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4
6: रेडियो रिमझिम।
5: सुनो दिल से।

0: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
1: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है बीके टाइल्स। बीके टाइल्स, यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
2: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं,
1: अरार मोड़ SP कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड़ के पास कुचायकोट,
2: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड ठावे मीरगंज, और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़ भोरे।
1: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक हकाम बाईपास सिवान,
2: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक मैरवा सिवान।
1: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी बीके टाइल्स ब्रांच पर आए और करे बेहतरीन खरीदारी।
2: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करे गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच में 9693101611,
1: कुचायकोट ब्रांच में 9693101602, भोरे ब्रांच में 8207856404,
2: सिवान ब्रांच में 9942071405, मैरवा ब्रांच में 8207856403।
3: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलता पूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य SP त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज, जैसे
4: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
3: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलता पूर्वक करते हैं।
5: वैद्य SP त्यागी जी से मिलने का पता
3: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
5: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554493
3: और 9097160602।
6: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के कहे चलता नहीं, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
7: अरे ए बबुओ, परेशानी तो बा लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लगेला, सुनले बानी की आँख में सुई लगेला, काफी दर्द होत होइनु।
6: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू, अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आगल बनी, यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़ फाड़ कैले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करतनी। तो तू इनके लगे काहे ने कुचल जा, आँख में कोनो तरह के दर्द भी ना हुई और ऑपरेशन भी हो जाए।
8: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुपरसिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से, साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर MA अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने रालसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9903569015 पे।
9: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
10: Now pick it up, pick it up. Hello. Now pick your phone up. Hello. Pick it up, pick it up. Now pick your phone up.

0: हेलो, नमस्ते, नमस्कार, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूं आप सबकी दोस्त भारती और आप सुन रहे हैं रेडियो रंजन 90.4 FM। और समय हो चुका है हेलो माय चॉइस कार्यक्रम का, तो बिल्कुल समय के साथ हाजिर हूँ। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो नंबर है 8029-94911। जी हाँ, 8029-94911 पर कॉल करके जुड़ सकते हैं और अपनी फरमाइश सुन सकते हैं। और बढ़ते हैं आगे और लेते हैं पहला कॉल और सुनते हैं इनकी फरमाइश।
1: हेलो।
2: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
2: जी नमस्कार, भारती जी बोल रहे हैं।
1: नमस्कार। हाँ,
2: कैसे हैं आप?
1: मैं अच्छी हूँ, आप बताइए कैसे हैं?
2: हम भी ठीक है, जकास बिंदास, एकदम ठीक, एकदम अच्छे से। देखा बारिश बढ़िया है।
1: और बताइए क्या हो रहा है?
2: अभी तो नींद आ गया था सुबह से, पंखे के नीचे, फिर 11 बजे से टूटा है थोड़ा बहुत। फिर पंचायत अभियान से जुड़े हैं ना?
1: जी जी
2: जी, वहीं थे तो फिर आए, तो थोड़ा लेट से खाना खाए थे 9 बजे, और अभी काम खाली है। और खाने के बाद थोड़ा नींद आने लगा।
1: कोई नहीं, खाने के बाद थोड़ा आराम कर ही लेना चाहिए,
2: शरीर को तो ध्यान चाहिए, नॉर्मल है कि नहीं?
1: जी।
2: अभी तो बनता है।
1: कौन सा गाना सुनेंगे आज?
2: जी गाना था, पैर में बूट हो गया, कपड़े हो गए, नौकरी हो गई, छुकड़ी हो गई, क्या बात हो गया, जमाना सीख करेगा, सलाम करेगा, गाना।
1: ओके
2: जी, और सब सुनाइए।
1: और सब तो बस चल रहा है, ठीक है। तो गाना प्ले करती हूँ, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 में।
0: नमस्कार मैम।
1: नमस्कार,
0: मैं सुधीर खोल बोल रहा हूँ, झारखंड से।
1: कैसे हैं आप?
0: आप कैसे हैं मैम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मैम।
1: मैं भी ठीक हूँ
0: जी।
1: बता दीजिए, कौन सा गाना सुनना है आपको?
0: सुना दीजिए मैम, कोई भी सुना दीजिए। खेसारी लाल यादव और शिल्पी राज का डुएट सॉन्ग सुना दीजिएगा भोजपुरी में।
1: ओके, सॉन्ग किसी को डेडिकेट भी है?
0: जी मैम, सबसे पहले मैम आपको, आपके रेडियो रंजन की पूरे टीम को और जितने भी रेडियो रंजन के प्यारा प्यारे श्रोता गाने सबको सुनाना चाहता हूँ।
1: ओके ओके, चलिए फिर गाना प्ले करते हैं। सुनते रहिए रेडियो रंजन 90.4 FM।
0: थैंक यू मैम।

0: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
1: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
2: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
1: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
2: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
3: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
4: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
3: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
4: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
3: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
4: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
3: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
5: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
3: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
4: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से।
3: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें, आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
4: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
6: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
7: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
8: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह, MBBS, MS, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
9: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
8: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
10: Now pick it up,
11: hello.
10: Now pick your phone up,
11: hello.
10: Pick it up,
11: hello.
10: Now pick your phone up,
11: hello.
12: Jab phone gindi bajti hai to kehte hain hello.
13: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94911। जी हाँ, 8029-94911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
14: हेलो
15: हेलो
14: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रेंज 90.4 FM में।
15: नमस्ते मैडम जी।
14: नमस्ते,
15: नेहा बोल रहे हैं भोदर से।
14: कैसी हैं आप?
15: अच्छा, यहाँ बताइए कैसे हैं?
14: हम भी बढ़िया हैं।
15: अच्छा ठीक है, बढ़िया है, तभी तो अच्छा रहेगा। तब नाश्ता हो गया?
14: मेरा हो गया है, आपका हो गया क्या?
15: आपका इंतजार कर रहा हूँ।
14: अच्छा चलिए, कोई नहीं, इंतजार खत्म हुआ, कॉल लग गया। और बताइए कौन सा गाना सुनेंगी?
15: गाना सुना दीजिए, भाई भाई नक्सल भी।
14: अच्छा, और सॉन्ग किसी को डेडिकेट भी है?
15: आपको जितना रेडियो जिम दोस्त है, सुनते हैं सबके साथ।
14: चलिए फिर गाना प्ले करती हूँ, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
15: जी मैडम जी, नमस्ते।

0: हेलो
1: हेलो, नमस्कार मैडम जी।
0: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजीत 90.4 एफएम में।
1: सुनील साहू, मधुसूदनगढ़ जिला गुना से।
0: कैसे हैं आप?
1: बढ़िया है बहन जी, आपकी फरमाइश सुन रहे हैं।
0: तो बताइए आज क्या फरमाइश है आपकी?
1: जी मैडम जी, पिक्चर का नाम तो याद नहीं मुझे, लेकिन गाना है भोजपुरी में।
0: जी जी, बता दीजिए।
1: पवन सिंह की आवाज में गाना है।
0: कौन सा सॉन्ग?
1: ये तुम्मा ले जा गाल में संग दिलवा ले जा निकाल के।
0: अच्छा जी, हाँ है,
1: पवन सिंह का है ये भोजपुरी में। जी, और ये गाना डेडिकेट है अपने गजराज सिंह लोधी है, मांगीलाल साकड़ है, गोपाल ओझा है, कगवासा से, और आपको भी।
0: ओके ओके, फिर गाना प्ले करती हूँ, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रंजन 90.4।
1: धन्यवाद मैडम जी।

0: में दर्द के मारे जान ही निकल रही है। कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
1: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
2: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुँचिए इस्मत ENT केयर सेंटर, सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
3: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
4: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर X और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
3: ग्लैमर X दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
4: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
3: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
4: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
3: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
4: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।
5: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
6: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
4: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल।
6: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
4: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
6: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
4: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
6: संपर्क करें 84710309 या 9765665750।
7: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
8: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
9: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
10: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
9: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
7: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
11: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 80-29-94-911। जी हाँ, 80-29-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
12: जी नमस्कार।
13: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रेंज 91.4 FM में।
12: भारती जी, मेरे साथ मास्टर बोल रहे हैं धना से। बोलिए, क्या हाल चाल है?
13: मेरा तो बढ़िया है, आप अपना बताइए।
12: हम लोग का भी ठीक है, गर्मी ज्यादा लग रहा है।
13: गर्मी तो है ही थोड़ा बहुत।
12: आज तो हम लोग का मौसम बहुत सुहाना हुआ है, एकदम बादल है, धूप नहीं है।
13: इधर भी मतलब थोड़ा रात को हवा चला था तो अभी फिलहाल थोड़ा ठीक है।
12: 190 बार कॉल लगाए हैं।
13: अच्छा जी, आज इतना कॉल लगाना पड़ा?
12: हम कॉल लगाते हैं लास्ट में या तो फर्स्ट में। फर्स्ट लगाए एक बार बंद था, फिर दूसरी बार लगाए तो अभी ही बिजली तो सब लगेगा, नहीं लगेगा। आज में लगता है सुन लगता है, बस एक दो बार कॉल में लग जाता
13: है। सब बताइए और सब ठीक है ना?
12: सब बढ़िया है, अल्लाह का करम है, हम लोग काम कर रहे हैं, आपका प्रोग्राम भी सुन रहे हैं।
13: चलिए बता दीजिए कौन सा गाना सुनना है आपको?
12: आज तो गाना सुनना है, मुहर्रम का महीना चल रहा है, मोहम्मद अजीज का एक गाना है, दुनिया हुसैन की है जमाना हुसैन का, करबल में लुट गया है घराना हुसैन का, दुनिया हुसैन की है जमाना हुसैन का। यही वाला गाना सुनवा दीजिएगा मैडम जी। और सबसे पहले आपको सुनवाएंगे और जितने रेडियो रेंजिंग सुनने वाले हैं सभी श्रोताओं को।
13: ओके चलिए फिर गाना प्ले करती हूँ, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रेंजिंग 90.4।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 एफएम में।
0: नमस्ते मैम।
1: नमस्ते,
0: क्या हाल है?
1: मेरा बढ़िया, आप अपना बताइए।
0: मेरा भी ठीक है, खाना खा ली।
1: खाना हो गया है आपका?
0: मेरा भी हो गया है।
1: तो और सब बताइए, और क्या हो रहा है?
0: कुछ नहीं, धूप में बैठा है। लोग
1: धूप में
0: नहीं, यहाँ में मतलब धूप बहुत ज्यादा है तो इसलिए।
1: अच्छा, हमको लगा धूप में बैठी है आप, वो भी गर्मी में।
0: नहीं।
1: अच्छा बता दीजिए, कौन सा गाना सुनना है आपको?
0: दिल में प्यार तेरा उठो मीठा हवा, यही गाना सुना दीजिएगा।
1: ओके, और सॉन्ग किसी को डेडिकेट भी रहेगा?
0: आपको, रेडियो रेंज सुनने वाली सब नेशनल।
1: ओके, तो चलिए फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रेंज 90.4 FM।

0: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
1: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
2: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
3: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
4: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में, आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98-527-88-291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं, नंबर है 98-527-88-291 या 95-238-74-088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
5: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य SP त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज, जैसे
6: सभी प्रकार के नशा, जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
5: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
0: वैद्य SP त्यागी जी से मिलने का पता,
5: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड, थावे रोड, भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
0: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99-55-94-94-53
5: और 90-97-61-60-02।
7: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के कहे चलतनी, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
8: अरे ए बबुओ, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आँख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
7: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू। अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आगल बनी, यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़ फाड़ कैले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करतनी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आँख में कोनो तरह के भी ना हुई और ऑपरेशन भी हो जाए।
9: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुपर सिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर MA अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड, यमहा शोरूम के सामने, रालसन होटल के पश्चिम, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99-53-69-015 पे।
10: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान, पूर्वांचल की सबसे

0: और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: Now pick it up, pick it up.
2: Hello.
1: Now pick your phone up.
2: Hello.
1: Pick it up, pick it up.
2: Hello.
1: Now pick your phone up.
2: Hello.
3: जब फोन घंटी बजती है तो कहते हैं हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो।
4: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो
6: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रेंजिंग 90.4 एफएम में।
5: प्रणाम मैम।
6: प्रणाम।
5: क्या हाल बा?
6: ठीक बाप नहीं बताई।
5: हमरो ठीक है बा, आपन बताई हमने सके क्या पूछ लो। हमने ठीक बनी सर, और लो बस ठीक रही लोगी ने ये बा भगवान से दुआ। कैसे रहोगे लोग के जरिए इतना आदमी के मनोरंजन होता है। आज के मौसम कैसन बा गोपालगंज के?
6: मौसम तो हल्का गर्मी बा, गर्मी तो बढ़ रही बा, क्या कहे, धूप निकल बा, गर्मी बा। वे
5: भारती जी ना, हमने तो एक बार 42 आदमी के पहचान जान से आज मन कर भोजपुरी में बात करल जाए।
6: कोनो बात नहीं है,
5: भोजपुरी में निमन लगे ला। अब आदमी बाहर रह जाला तो तनी भोजपुरी बोले में दिक्कत हो जाला।
6: कोनो बात ना, हमने के बानी चल भोजपुरी बोले
5: है। और तो मान के चले कि हिंदी गाना तो सब जगह सुने के मिल जाला, लेकिन गोपालगंज के सुनल जाये तो काहे हिंदी सुनल जाये, भोजपुरी सुनल जाये? भोजपुरी में ही बढ़िया गीत होला, ऐसा बात थोड़े भाई सब खराब होला।
6: ना ना, भोजपुरी में भी अच्छा अच्छा गीत होला।
5: तो एगो आज हमारा गाना सुना दी,
6: बता दी।
5: बबीता सागर के ही रही आज की। ना जी अब तुम्हारा दुनिया आज बुझाई बा।
6: अच्छा।
5: धनेश कुमार मिश्रा दिल्ली
6: गाना सुना। रेडियो रेंज 90.4
5: सुना दो।

0: हेलो
1: हेलो।
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रेंज 90.4 FM
1: हम फरोज अंसारी बोल रहे हैं जी। हम गाना सुनना चाहते हैं।
0: ओके, और कहाँ से हैं आप?
1: हम बिहार से, बेतिया जिला से।
0: ओके, बता दीजिए गाना सुनना है आपको।
1: हिंदी गाना सुना दीजिए कोई सा, अच्छा आपको जो अच्छा लगेगा।
0: आपको अपना पसंद बताना होगा। आप अपनी पसंद बता रहे थे तो अच्छा होता, क्योंकि कॉल आपने किया है तो पसंद तो आपकी भी होनी चाहिए ना।
1: डाक दी पार का गाना चाहिए हम।
0: उसमें का कौन सा सॉन्ग, मतलब डाक दी फायर का कौन सा सॉन्ग?
1: उसमें से कोई भी गाना होगा अच्छा सुना दीजिएगा हमको। जी जी
0: ओके। और सॉन्ग किसी को सुनाना भी चाहेंगे?
1: जी, मेरा रियाज भाई है। आज हम लोग ड्यूटी पे जाने वाले थे, हम नहीं गए। हाँ, छुट्टी में हम गाना सुनना चाहते हैं। जी
0: चलिए फिर गाना प्ले करते हैं। सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है। लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
1: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
0: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
1: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001। गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
0: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
1: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
0: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
1: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
0: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
1: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
0: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
2: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
3: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
2: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
3: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
0: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
4: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
0: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
1: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
0: संपर्क 99-393-65-930।
5: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
6: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
5: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
6: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
7: Now pick it up, pick it up.
8: Hello.
7: Now pick your phone up.
8: Hello.
7: Pick it up, pick it up.
8: Hello.
7: Now pick your phone up.
8: Hello.
9: Jab phone din de bajti hai to kehte hain hello.
10: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
11: हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4। वालेकुम अस्सलाम,
12: क्या हाल है?
11: मेरा बढ़िया, आप बताइए, आप कैसे हैं? नाम बता दीजिए।
8: मैं मोहम्मद अली सरिया वार्ड नंबर 1 से।
11: तो बताइए और सब क्या हो रहा है अभी?
8: ड्यूटी हो रहा है मैम, इतना गर्मी लग रहा है, पंखा चलाने को बाद में क्या बताएं।
11: गर्मी तो है,
8: बहुत गर्मी पड़ रही है
11: जी।
8: लगता है गांव छोड़ के भागना पड़ेगा मेरे को पुणे, गर्मी की वजह से। पुणे में अच्छा रहता है मौसम, में हमेशा गर्मी बिल्कुल नहीं लगती,
11: वहाँ पे तो मौसम थोड़ा अच्छा रहता है।
8: पुणे में एकदम जिंदा गर्मी रहता है, शरीर से पसीना नहीं निकलता है। आप नाश्ता पानी करके आए हैं, आज मेरे को सॉन्ग सुना दीजिए, डर मूवी से।
11: डर मूवी,
8: हाँ डर मूवी से गाना सुनाइए। तू मेरे सामने, मैं तेरे सामने, तुझको देख के तैयार करूँ।
11: ओके, और सॉन्ग किसी को सुनाना भी चाहेंगे?
8: सबसे पहले तो आपको और अंतरी को और कमरान भाई को, राघव जी को और दिलीप भाई को और जो भी रेडियो जहाँ से भी तुम रहे सभी। चलिए ठीक है, सब गाना सुनाइए मेरे को।
11: ओके ओके, फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.5।

0: हेलो
1: मैम, नमस्कार।
0: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 एफएम में।
1: शैलेश कुमार, बाराबंकी से।
0: कैसे हैं आप?
1: बढ़िया है मैम, आप बताइए।
0: हम भी ठीक।
1: मौसम
0: तो अभी इधर गर्मी है।
1: मौसम गर्मी तो इधर भी है। आज गाना सुनवा दीजिएगा मुझे कि कल तू कल चला जाएगा तो मैं क्या करूँगा, या तेरी आएगी तो मैं क्या करूँगा।
0: चलिए, और सॉन्ग किसी को डेडिकेट भी है?
1: अपनी वाइफ को, आपको, पूरे परिवार को, तमाम रेडियो रेंजन सुनने वाले श्रोताओं को।
0: ओके ओके, फिर गाना प्ले करते हैं। सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रेंजन 90.4 FM।

0: गोला एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
1: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
0: आज ही संपर्क करें 7388889470 या 9198886973।
2: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
3: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ, इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
4: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
5: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
6: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
4: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा साड़ी सूट पीस, हर डिजाइन हर रंग हर बजट में।
3: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
4: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
6: कॉल करे 87894 18744।
7: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
8: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
6: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ, विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
4: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94395461 या 97076675।
9: ठक ठक।
10: काजी आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
11: अच्छा मिला ही नहीं।
10: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
12: जी हाँ कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
10: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
12: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है, जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
13: नन्ना मुन्ना लाही देश का सिपाही हूँ।
14: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
13: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
14: अच्छा तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
13: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
15: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
16: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है, इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
15: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
16: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
15: हमारा जूनियर ब्रांच सरियावार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
16: जानकारी है तो कॉल करे 6205-62112 पे।
17: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94911। जी हाँ 8029-94911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
18: हेलो, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 FM में।
19: नमस्ते मैम।
18: नमस्ते,
19: मेरा नाम प्रिया है। मेरा नाम प्रिया है
18: जी। आप प्रिया जी कहाँ से हैं?
19: दिल्ली से।
18: अच्छा जी,
19: दिल्ली से। तो मुझे गाना सुनना है।
18: बता दीजिए कौन सा सॉन्ग सुनना है आपको।
19: देख के बताई थी कैसा लगा थी, राजा राम फिल्म गुंडिया है।
18: अच्छा, और सॉन्ग किसी को डेडिकेट भी है?
19: हाँ।
18: बता दीजिए।
19: मेरी मम्मी, चाचा, मामा, पापा और आपको।
18: ओके ओके, चलिए फिर बढ़िया है, गाना प्ले करती हूँ, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रंजन 90.4 FM।

0: हेलो
1: नमस्कार
0: नमस्कार
1: कौन बोल रहे हैं? भारती जी सोनी जी
0: भारती
1: मैं धर्मेंद्र तिवारी बोल रहा हूँ चंडीगढ़ से।
0: जी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रेंज 90.4 FM में।
1: बीच बजा दिया तुमने बड़ी बढ़िया खिड़की खोल दूंगी एक गाना सुनवा दूंगी।
0: तो हम किसी को डेडिकेट भी है?
1: हाँ अपना रंजीत तिवारी है वरुण पांडे है शुभम तिवारी है।
0: ओके गाना प्ले करते हैं सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रेंज 90.4 FM नमस्कार।

0: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
1: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
0: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 1,10,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
1: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी चैन पट्टी गोपालगंज,
0: या अभी कॉल कीजिए 92899227567 या 97,714,86,164।
2: प्रसाद क्लिनिक,
3: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
2: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंज स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज,
3: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
4: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
5: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 86,034,48,652 पे।
6: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
7: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं, कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं, अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
6: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
7: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीठ की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
6: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99,554,97,644।
8: जानते हो दोस्तों, जिसे हम सिर्फ चिलचिलाती धूप कहते थे, आज उसी धूप से हम अपनी छतों पर ऊर्जा बना लेते हैं। तभी तो आज लगभग 37 लाख घर PM सूर्य घर बने हैं, जिससे देश का बिजली बिल घटा है और आत्मविश्वास बढ़ा है।
9: एक दशक पहले भारत सोलर पावर के मामले में बहुत पीछे था, लेकिन आज सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप 5 देशों में आ गया।
8: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
10: Now pick it up,
11: hello.
10: Now pick your phone up,
11: hello.
10: Pick it up,
11: hello.
10: Now pick your phone up,
11: hello.
12: Jab phone ki ghanti bajti hai to kehte hain hello.
13: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 80029994911। जी हाँ, 80029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
14: हेलो
15: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 FM में।
14: नमस्कार मैम।
15: नमस्कार,
14: आप कैसी हैं मैम?
15: मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं?
14: जी मैम, हम भी अच्छे हैं। और सब आगे लोग कैसे हैं?
15: सब पे ठीक है।
14: और मौसम उधर कैसा हो रहा है?
15: इधर का तो मौसम अभी गर्मी पड़ रहा है, धूप निकला हुआ है थोड़ा, तो आज मौसम मतलब हवा चल रहा है तो उतना धूप समझ में नहीं आ रहा है।
14: हवा थोड़ा चल रहा है। तो गाना सुना दीजिए, आपसे तो मेरी पहली बार बात हो रही है। गाना सुना दीजिए, सनम का हर लबो पे सनम तेरा नाम आए।
15: एक बार और बोल दीजिए।
14: हर लबो पे सनम तेरा नाम आए, सनम फिल्म का गाना है।
15: ओके, सॉन्ग किसी को डेडिकेट भी है?
14: अब रेडियो रिमझिम जितने सुन रहे हैं सभी श्रोता, कुछ श्रोताओं से, और मैंने एक अनुरोध है
15: जी, बता
14: सभी श्रोताओं से कि श्रोता जितने भी सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम, वो अपने छत पर थोड़ा पानी रखे, चिड़िया को, पक्षी को थोड़ा खिलाए पिलाए, गर्मी बहुत है, घड़ा में या कोई बर्तन में भी पानी रखते ताकि पक्षी को पानी पीने में सहूलियत हो।
15: जी जी मैम, और सब ठीक है?
14: जी जी जी मैम, सब बढ़िया है। आपका नाम सर? मैम
15: मेरा नाम भारती है, आपका नाम क्या है?
14: जी मैं पप्पू कुमार बोल रहा हूँ, पड़ारौना से, बढ़ारिया बढ़ारिया से।
15: चलिए फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो।
14: थैंक यू मैम।

0: हेलो नमस्कार।
1: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रेंज 90.4 एफएम में।
0: भारती जी बोल रहे हैं? चलिए ठीक है, नमस्ते जी। घंटा से नको लगा रहे
1: हैं। अच्छा जी,
0: अभी नहीं रहा था, खाली दिया था, खाली दिया।
1: आज कॉल आए आ रहे हैं बहुत ज्यादा इसीलिए।
0: तो कैसे हैं आप?
1: हम भी ठीक हैं, आप बताइए आप कैसे हैं?
0: अरे हम लोग क्या बताएं, धूप में बहुत हालत बिगड़ जाता है।
1: धूप तो है ही,
0: इतना धूप है कि लाजवाब है। बिल्कुल धूप लाजवाब होता है आजकल।
1: धूप तो बहुत तेज निकल रहा है, ये धूप से बहुत सारे लोगों का तबीयत खराब हो रहा है।
0: कल तो सोनू जी से बात हुआ था, जानना भी सुनाई थी सोनू जी।
1: आज क्या फरमाइश है आपकी?
0: आज तो हमारा फरमाइश है, नाम ही भूल जाते हैं, सोचते हैं कि बताएंगे बोर पर जाते।
1: कोई नहीं, आराम से याद करके बताइए।
0: उनका नाम क्या बोलते हैं? दाता। दाता फिल्म का जो नहीं होता है गाना, वो विदाई वाला गाना है।
1: हाँ हाँ,
0: उसी का
1: वही सॉन्ग सुनना है ना?
0: हाँ हाँ, वही सॉन्ग सुनना
1: है। ओके, और सॉन्ग किसी को डेडिकेट भी है?
0: पहले तो आपको, सोनू जी को और खागे रामा जी भाई जी को। ठीक है, तो वही सुना दीजिएगा।
1: ओके, फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो रंजन 90.4 FM।

0: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, शाखा राजापुर बाजार गोपालगंज। CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
1: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
0: तो देर मत कीजिए,
1: सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, कॉल अस 9939721308।
2: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
3: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
4: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज यहाँ सम्राट हॉस्पिटल जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
5: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
4: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9847434068 पे।
6: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
7: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ, इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
0: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
1: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
8: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
0: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा साड़ी सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
7: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
0: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
1: कॉल करे 87894 18744।
9: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
1: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं, उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
0: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है, चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से।
1: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें, आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय 10:00 बजे से

0: दोपहर 2 बजे तक।
1: पता जंगलिया मोहल्ला नूर मेडिकल के पास गोपालगंज। कॉल करे 94512-11001।
2: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
1: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है बीके टाइल्स। बीके टाइल्स, यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
0: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं।
1: अरार मोड़ SP कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड़ के पास कुचायकोट,
0: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड ठावे मीरगंज और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़ भोरे।
1: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक हकाम बाईपास सिवान
0: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक मैरवा सिवान।
1: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी बीके टाइल्स ब्रांच पर आए और करे बेहतरीन खरीदारी।
0: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करे गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच 9693101611,
1: कुचाय कोट ब्रांच में 9693101602, भोरे ब्रांच में 8207856404,
0: सिवान ब्रांच में 9942071405, मेरवा ब्रांच में 8207856403।
3: Now pick it up,
4: hello.
3: Now pick your phone up. Pick it up,
4: hello.
3: Now pick your phone up.
5: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
6: हेलो
7: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
6: हाँ, मैं मोहम्मद यूसुफ सिपाया डाला अपना मेडिकल हॉल पे।
7: कैसे हैं आप?
6: बहुत है। सोनी मैडम बोल रहे हैं?
7: नहीं।
6: अच्छा, आप बोल रहे हैं। हाँ तो सुनिए ना, हमको गाना सुनाइए। नदिया के पार फिल्म से कौन दिशा में लेकर चला रे बटैया।
7: ओके, सॉन्ग किसी को सुनाना भी चाहेंगे?
6: हाँ चाहेंगे। अपना मेडिकल हॉल के सभी स्टाफ और गुमनिया के फौजी भाई रिटायर हैं, 1962 का लड़ाई लड़ चुके हैं, उनको भी सुनवाना, कन्हैया प्रसाद को सुनवाना चाहता हूँ।
7: तो और सब बढ़िया है ना?
6: हाँ, अपना सुनाइए ना।
7: हमारा भी ठीक है।
6: हाँ हमारा ठीक है। मौसम बहुत गर्म है, बहुत मौसम खराब हो रहा है।
7: हाँ।
6: अब देखिए बरसात कब से शुरू होता है, मानसून अभी नहीं आया। बहुत मेहनत करने पर लगता है आपके यहाँ फोन।
7: अच्छा।
6: बहुत व्यस्त बिजी बता रहा था।
7: आज कॉल आए हैं बहुत सारे।
6: हाँ ठीक है, सुनवा दीजिएगा।
7: ठीक है, फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो 90.4 FM।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजीत 90.4 एफएम में।
0: जी मैम नमस्कार, सुनील कुशवाहा बात कर रहा हूँ मैं, IRMP से।
1: नमस्कार
0: जी मैम, बस बैठे थे मैम, फोन लगा रहे थे, फोन बहुत मुश्किल से लगा मैम, एक घंटा हो गया फोन लगाते हुए, बहुत नंबर बिजी जा रहा
1: है।
0: जी जी जी,
1: कॉल आ रहे हैं ना, इसलिए नंबर बिजी जा रहा है, लगातार कॉल आ रहा है।
0: मैम चाइना आपका हो गया मैम?
1: हाँ हाँ हमारा हो गया, आपका हो गया?
0: जी अभी तो नाश्ता हुआ मैम, हम सोचे अभी तो 12 बजे गए, थोड़ा फोन आउट ट्राई करते, फिर 12:30 खाना खाने चले जाएंगे मैम। तो अभी बैठे थे, सिर्फ फोन कौन भी लगा रहे थे, फोन लग गया मैम, बहुत अच्छा लग रहा है।
1: अच्छा चलिए तो बढ़िया है, तो बता दीजिए कौन सा गाना सुनेंगे आप?
0: जी आज हमको सुनवा दीजिएगा फिल्म जान, और गाने के बोल है बेईमान किया रे बारा जून में किया रे, यही गाना सुनना चाहते हैं और सुनवाएंगे कितने रेडियो रिमझिम दोस्त लोग सुनते, सभी दोस्तों के साथ सुनना चाहते हैं।
1: ओके तो फिर गाना प्ले करती हूँ, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: तो श्रोताओं, अभी आप हेलो माय चॉइस सुन रहे थे और अब समय हो चुका है शो को समाप्त करने का। तो यदि आप चाहते हैं इस कार्यक्रम से जुड़ना तो आप भी जुड़ सकते हैं 8029994911 पर कॉल करके। तो फिलहाल हमें आज इस शो से दीजिए जाने की इजाज़त। मिलते हैं अगले दिन, सुनते रहें 90.4 FM। नमस्कार।
1: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
2: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
3: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
2: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
3: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
2: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
4: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
5: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
4: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
5: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
4: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
5: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
4: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
6: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
7: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
8: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज यहाँ सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह, MBBS, MS, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
9: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
8: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9470434468 पे।
10: एपिसोड 31, 3-1।

पिता दक्ष प्रजापति के यज्ञ के अवसर पर अपने पति शिव के अपमान के कारण सती ने योगाग्नि में अपने को भस्म कर डाला था। आत्मदाह के समय उन्होंने भगवान से ये वर भी मांगा था कि जन्म जन्मांतर शिव के चरणों में उनका अनुराग बना रहे तथा अगले जन्म में पति रूप में उन्हें शिव की ही प्राप्ति हो। इसी इच्छा के फलवती होने के लिए उन्होंने हिमाचल के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया। माता मैना के संशय के बावजूद पार्वती ने हजारों वर्ष तक कठोर तपस्या की। स्वामी के चरणों में नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लगा। तपस्या में ऐसा मन लगा कि शरीर की सुधि बिसर गई। 1000 वर्ष तक उन्होंने कंद मूल खाए, फिर 100 वर्ष साग खाकर बिता दिए। कुछ दिन मात्र जल और वायु का भोजन किया, फिर कुछ दिन कठोर उपवास किया।

0: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
1: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
2: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुँचिए इस्मत ENT केयर सेंटर, सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
3: ठक ठक।
4: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
5: अच्छा मिला ही नहीं।
4: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
6: जी हाँ, कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
4: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
6: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है। सुनिए सुनिए सुनिए,
7: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
6: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
7: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
6: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
5: टॉप रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
8: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लेके आओ तनी बाबू।
5: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
8: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
5: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
8: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लिए, दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैले से का फायदा।
9: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
5: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।

शिव जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए हिमाचल कन्या उमा की हजारों वर्ष की तपस्या पूरी हुई। उधर जब से सती ने शरीर त्याग किया था, तब से ही शिव के मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया था। पृथ्वी पर विचरण करते हुए कहीं वे मुनियों को ज्ञान का उपदेश देते, कहीं श्री राम के गुणों का वर्णन करते। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। तब स्वयं भगवान राम ने उन्हें पार्वती के जन्म की कथा सुनाई और उनसे आग्रह किया कि वे जाकर शैल कुमारी से विवाह करें। माता पिता गुरु और स्वामी की बात बिना विचारे ही शुभ समझकर माननी चाहिए, ऐसा मानकर शिवजी ने भगवान राम की आज्ञा मान ली और सप्तर्षियों को उमा के निर्णय की परीक्षा लेने हेतु भेजा। ऋषिगण ने कई प्रकार से नारद जी की दूसरों का घर उजाड़ने वाली आदत का वर्णन करके उमा को शिवजी से विमुख करने की चेष्टा की, किंतु वो अपने निश्चय पर अडिग थीं।

0: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
1: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
2: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
0: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
3: नन्ना मुन्ना लाही हूँ देश का सिपाही हूँ।
4: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
3: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
4: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
3: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
5: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
6: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
5: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
6: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
5: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
6: जानकारी है तो कॉल करे 6052 62112 पे।
7: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
8: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
9: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
8: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर चिराईगढ़ पेट्रोल पंप के सामने कॉलेज रोड गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82 101 87 952। नियम और शर्तें लागू।
10: दिल बोले म्यूजिक म्यूजिक म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4
11: रेडियो रिमझिम
10: सुनो दिल से।

0: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल घोष मोड़ दरगाह रोड गोपालगंज।
1: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
2: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
3: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 6200424403 6200424403।
4: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
5: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी।
6: विकास दिवस मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी 28 जून को करेंगे कार्यक्रम का शुभारंभ। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच राज्य भर में केंद्रीय चयन परिषद की सिपाही भर्ती परीक्षा शांतिपूर्वक संपन्न। प्रशासन विभाग ने पटना, भभुआ, रोहतास समेत राज्य के दक्षिण पश्चिम भागों के कई जिलों में लू का अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार ने उच्च शिक्षा के विस्तार के लिए 5 जिलों में 5 नए निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना एवं संचालन को स्वीकृति दी है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट की बैठक में इस आशय का प्रस्ताव पारित किया गया। मधुबनी में शांजा विश्वविद्यालय, नवादा में SA विश्वविद्यालय, पटना में हिमालय विश्वविद्यालय, औरंगाबाद में शीत योग विश्वविद्यालय और सिवान में एक विश्वविद्यालय की स्थापना और संचालन को मंजूरी दी गई है। राज्य मंत्रिमंडल ने एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले में भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव में हुई कथित पुलिस मुठभेड़ मामले की न्यायिक जांच के लिए पटना उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश विनोद कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में आयोग के गठन को भी स्वीकृति दी है। कैबिनेट में राज्य में विकसित भारत जी राम जी योजना की निगरानी के लिए बिहार राज्य ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद के पुनर्गठन और गन्ना उद्योग निवेश प्रोत्साहन नीति 2026 को भी मंजूरी दी है। कैबिनेट की बैठक में कुल 45 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। राज्य सरकार ने हर महीने के अंतिम रविवार को पंचायत विकास दिवस मनाने का निर्णय किया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मुंगेर जिले की एक चयनित पंचायत से 28 जून को इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य ग्रामीण विकास योजनाओं की समीक्षा और जन भागीदारी के माध्यम से पंचायतों के सतत और समग्र विकास को बढ़ावा देना है। कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए सभी जिलों को आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा है कि राज्य में भूमि सुधार का कार्य जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि सरकारी भूमि को हर हाल में अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा। श्री जायसवाल ने आज पटना में पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि पीरपैंती पावर प्लांट, CNLU, निफ्ट और सुपौल व्यवहार न्यायालय समेत विभिन्न स्थानों पर निर्माण कार्य के लिए जमीन उपलब्ध कराई गई है। उन्होंने कहा कि भूमि प्रबंधन को और अधिक पारदर्शी बनाते हुए इसका लाभ जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है।
7: राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग पटना ने माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी के कुशल नेतृत्व में भूमि प्रबंधन एवं राजस्व प्रशासन को अधिक पारदर्शी, डिजिटल और जनोन्मुख बनाने के दिशा में विभिन्न सेवाओं, योजनाओं एवं प्रक्रियाओं को व्यापक एवं क्रांतिकारी बदलाव किए हैं। इन सुधारों के परिणाम स्वरूप भूमि अभिलेख के डिजिटलीकरण, ऑनलाइन सेवा का विस्तार, विशेष सर्वेक्षण, भूमि विवाद के त्वरित निपटारे और भूमिहीन परिवार को पुनर्वास जैसे क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की गई है।
3: शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा है कि राज्य में कानून का शासन है। श्री तिवारी ने कहा कि भोजपुर मुठभेड़ मामले में न्यायिक जांच के आदेश दे दिए गए हैं और प्रारंभिक जांच में लापरवाही सामने आने पर पुलिस कर्मियों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। श्री तिवारी ने कहा कि विपक्ष को इस मुद्दे पर राजनीति छोड़कर जांच रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए।
8: बिहार के माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने जिन जिन चीजों का डिमांड जहाँ जहाँ से आया वो सब चीजों को उन्होंने देखते हुए न्यायिक जांच की भी घोषणा की। पहले पुलिस कर्मियों को भी सस्पेंड किया, अब DSP को भी हटा दिया। और दूसरी बात कि जब न्यायिक जांच की घोषणा हो गई तो इंतजार सबको करने हैं कि न्यायिक जांच की रिपोर्ट क्या आ रही, और एक बार जब रिपोर्ट आएगी तो दोषी पे कार्रवाई होगी।
3: इधर विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी ने कहा है कि हाल में हुए सभी मुठभेड़ के मामलों की जांच होनी चाहिए।
9: जब से सम्राट जी के नेतृत्व में सरकार बना है तो खास करके इनकाउंटर का मामला कुछ ज्यादा ही तूल पकड़ रहा है और सब जगह ढूंढ ढूंढ के इनकाउंटर किया जा रहा है। सरासर गलत है, इस पे विशेष इंक्वायरी होना चाहिए, जांच होना चाहिए।
3: आपदा प्रबंधन मंत्री रत्नेश सदा ने कहा है कि राज्य सरकार बाढ़ और सुखाड़ की संभावित स्थिति को लेकर सतर्क है। पटना स्थित जदयू कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री सदा ने कहा कि विभागीय अधिकारी निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आपदा की स्थिति से निपटने के लिए विभाग पूरी तरह तैयार है। श्रम संसाधन और प्रवासी श्रमिक कल्याण मंत्री अरुण शंकर प्रसाद ने कहा है कि अगले 3 महीने में राज्य के प्रत्येक प्रखंड में 3 पंचायतों को बाल श्रम मुक्त बनाया जाएगा। श्री प्रसाद आज पटना स्थित नियोजन भवन में बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग के नए कार्यालय का उद्घाटन कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बाल श्रमिकों के पुनर्वास के लिए प्रतिबद्ध है।
10: आज हम सब लोग मिलकर एक और निर्णय ले रहे हैं कि आगामी 3 महीने के अंदर प्रत्येक प्रखंड के 3-3 पंचायत को हम बाल श्रम मुक्त करेंगे पूरी तरह से, और वहां शपथ कराएंगे कि अब इस पंचायत में कोई बाल श्रमिक नहीं है। और ऐसे जब हम धीरे धीरे करेंगे तो पूरा राज्य बाल श्रम मुक्त हो जाएगा।
3: केंद्रीय चयन परिषद की बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा आज प्रदेश भर में विभिन्न केंद्रों पर शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गई। परीक्षा का आयोजन 2 पालियों में किया गया, इसे लेकर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए थे। इधर रेलवे अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए आज भी कई स्पेशल ट्रेनों का परिचालन कर रहा है। पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चंद्र ने बताया कि आज 18 विशेष परीक्षा ट्रेनें चलाई जा रही हैं। ये ट्रेन बख्तियारपुर, राजगीर, नवादा, मुजफ्फरपुर, कटिहार, सुपौल, बेतिया और मधुबनी समेत विभिन्न स्टेशनों के बीच चलाई जा रही हैं। रेलवे ने अभ्यर्थियों से इन ट्रेनों की परिचालन समय की सटीक जानकारी लेकर इस सुविधा का उपयोग करने की अपील की है। अररिया जिले के सभी 16 परीक्षा केंद्रों पर सिपाही भर्ती लिखित परीक्षा कदाचार मुक्त वातावरण में संपन्न हो गई। जिलाधिकारी विनोद दुहन ने दोनों पालियों के दौरान विभिन्न केंद्रों का निरीक्षण किया। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। मौसम विभाग ने आज पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, बेगूसराय, खगड़िया समेत राज्य के उत्तर पश्चिम और उत्तर मध्य भागों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान कई स्थानों पर वज्रपात की भी आशंका है। इधर राज्य के दक्षिण पश्चिम भागों में भीषण गर्मी पड़ रही है। मौसम विभाग ने कहा है कि बक्सर, भोजपुर, पटना और नालंदा समेत राज्य के दक्षिणी भागों में अनेक स्थानों पर लू की स्थिति बनी रहेगी।
1: दिनांक 25 जून राज्य के दक्षिण भाग के जिलों में कुछ स्थानों पर मेज गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा, हवा की गति 50 से 60 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के उत्तर भाग के जिलों में कुछ स्थानों पर मेज गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 40 से 50 किमी प्रति

स्थानों पर सुरक्षा बलों ने आज फ्लैग मार्च किया है। पटना के फुलवारी शरीफ, पत्थर की मस्जिद समेत विभिन्न स्थानों पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। साथ ही जुलूस मार्ग और पहलाम स्थल के आसपास अस्थायी पुलिस चौकी बनाई जा रही है। हमारे रोहतास संवाददाता ने बताया कि जिला मुख्यालय सासाराम में जिलाधिकारी दीपक कुमार मिश्रा और पुलिस अधीक्षक रोशन कुमार के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाला गया। इधर शेखपुरा के जिलाधिकारी शेखर आनंद और पुलिस अधीक्षक हिमांशु ने आज मुहर्रम के दौरान विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस कर्मियों और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक कर आवश्यक निर्देश दिए हैं। कटिहार जिले के कोलासी ओपी थाना क्षेत्र के मधुरा गांव में एक दुकान के सामने कोल्ड ड्रिंक के कैरेट से 5 देसी बम बरामद किए गए हैं। बम मिलने की सूचना के बाद इलाके में सतर्कता बढ़ा दी गई है। बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मुंगेर जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत श्यामपुर बकचपरा गंगा घाट पर गंगा नदी में स्नान के दौरान 5 युवतियां डूब गईं। इनमें से 3 युवतियों का शव बरामद कर लिया गया है, वहीं अन्य 2 की तलाश जारी है। इधर मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत टीकारामपुर गंगा घाट पर डूबने से एक युवक की मौत हो गई। विशेष निगरानी इकाई ने चर्चित टेंडर घोटाला मामले में मास्टरमाइंड ऋषु श्री समेत 7 आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया है। एडीजी निगरानी पंकज दराद ने पटना में पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि निगरानी इकाई के पास इन सभी के खिलाफ ठोस और वैज्ञानिक साक्ष्य मौजूद हैं, जो समय आने पर न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए जाएंगे। कटिहार के जिलाधिकारी आशुतोष द्विवेदी ने आजमनगर अंचल कार्यालय के राजस्व कर्मचारी सुनील कुमार ठाकुर को रिश्वत लेने के आरोप में निलंबित कर दिया है। आरोपी का रिश्वत लेते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद यह कार्रवाई की गई है। कॉमनवेल्थ पैरा गेम्स 2026 के लिए बिहार के 2 पैरा एथलीटों का भारतीय टीम में चयन हुआ है। नालंदा के झंडू कुमार और गया के सोमन राणा 23 जुलाई से 3 अगस्त तक स्कॉटलैंड के ग्लासगो में आयोजित हो रहे कॉमनवेल्थ पैरा गेम्स में देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। दोनों खिलाड़ियों के चयन से राज्य में खुशी और गर्व का माहौल है। राज्य में खेल संस्कृति को मजबूत करने के लिए इस वर्ष 2 अक्टूबर से दिसंबर तक राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। पटना में खेल विभाग के निदेशक आरिफ अहसन ने जिला खेल पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक के बाद उन्होंने यह जानकारी दी। रोहतास जिले के डेहरी स्थित बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस बीसैप परिसर में आज 1355 महिला सिपाहियों ने पासिंग आउट परेड में भाग लिया और नए जिम्मेदारी की शपथ ली। बीसैप 2 की समादेष्टा और वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी लिपि सिंह ने परेड का निरीक्षण किया। नालंदा, पटना और गोपालगंज जिला बल से संबद्ध इन महिला सिपाहियों ने सफलतापूर्वक प्रशिक्षण कार्य पूरा कर जिम्मेदारी संभाल ली है। रोहतास जिला मुख्यालय सासाराम स्थित समाहरणालय में उद्योग वार्ता का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी दीपक कुमार मिश्रा ने उद्यमियों और स्टार्टअप से जुड़े युवाओं की समस्याओं, रोजगार सृजन और उद्योग स्थापना को लेकर चर्चा की। सुपौल के जिलाधिकारी सावन कुमार ने आज निर्मली अंचल कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान विभिन्न राजस्व और लोकहित से जुड़े लंबित मामलों के जल्द निपटारे के निर्देश दिए हैं। किशनगंज जिले के टेढ़ागांच स्थित बालिका विद्यालय में बालिकाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण विषय पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अरवल की जिलाधिकारी अमृषा बैंस ने खनन विभाग से संबंधित समीक्षा बैठक में जिले में चल रही खनन गतिविधियों, बालू घाटों की स्थिति और खनिज परिवहन पर जानकारी प्राप्त की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को सतत निगरानी और प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। अररिया के जिलाधिकारी विनोद दुहन की अध्यक्षता में आज नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर एनकॉट की जिला स्तरीय समीक्षा बैठक की गई। बैठक में मादक पदार्थों की तस्करी और इसके अवैध कारोबार पर नियंत्रण के साथ ही नशे के विरुद्ध जागरूकता को लेकर चर्चा की गई। सुपौल जिले के सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत सहरसा सुपौल मुख्य मार्ग पर पुलिस लाइन के पास मोटरसाइकिल की टक्कर से एक किसान गंभीर रूप से घायल हो गया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में 5 नए निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाएगी। मंत्रिमंडल की बैठक में प्रस्ताव को मिली स्वीकृति। प्रदेश के सभी पंचायतों में प्रत्येक माह के अंतिम रविवार को मनाया जाएगा पंचायत विकास दिवस। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी 28 जून को करेंगे कार्यक्रम का शुभारंभ। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच

देश भर में केंद्रीय चयन परिषद की सिपाही भर्ती परीक्षा शांतिपूर्वक संपन्न। और मौसम विभाग ने पटना, भभुआ, रोहतास समेत राज्य के दक्षिण पश्चिम भागों के कई जिलों में लू का अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है नालंदा जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे संवाददाता निरंजन कुमार।
1: नालंदा जिले की सदियों पुरानी और विश्व विख्यात हस्तकरघा कला बामन बूटी साड़ी और फैब्रिक को भौगोलिक संकेतक अर्थात GI टैग मिल गया है। नाबार्ड और बिहार सरकार के संयुक्त प्रयास से मिली यह उपलब्धि न केवल नालंदा बल्कि पूरे बिहार की सांस्कृतिक विरासत के लिए गौरव का विषय मानी जा रही है। चेन्नई स्थित GI रजिस्ट्री द्वारा प्रदान की गयी इस मान्यता से बामन बूटी की मौलिकता और विशिष्ट पहचान को कानूनी संरक्षण मिलेगा। GI टैग मिलने के बाद अब इन उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में नई पहचान मिलेगी तथा स्थानीय बुनकरों को बेहतर मूल्य प्राप्त होने की संभावना बढ़ेगी। इस उपलब्धि पर ग्रामीण विकास एवं सूचना जनसंपर्क मंत्री श्रवण कुमार ने बुनकरों को बधाई दी और कहा कि जीविका सहित विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों से बामन बूटी उत्पादों के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। इधर खरीफ 2026 सीजन को लेकर जिले में कृषि गतिविधियां तेज हो गई है। कृषि विभाग ने इस वर्ष 1,53,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में विभिन्न फसलों की खेती का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसमें धान उत्पादन को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए लगभग 1,47,000 हेक्टेयर भूमि में धान की खेती का लक्ष्य रखा गया है। विभाग को उम्मीद है कि सामान्य मानसून और समय पर कृषि इनपुट उपलब्ध होने पर जिले में खाद्यान्न उत्पादन का नया रिकॉर्ड बन सकता है। इधर किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों, मिट्टी जांच, जैविक खेती और सरकारी योजनाओं की जानकारी देने के लिए सभी प्रखंडों में शारदीय खरीफ महाअभियान के तहत प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। वहीं कृषि विभाग ने इस वर्ष किसानों की आय बढ़ाने के लिए बेबी कॉर्न और स्वीट कॉर्न की खेती को भी बढ़ावा देने का निर्णय लिया है। राजगीर प्रखंड के चयनित किसानों को अनुदानित दर पर बीज उपलब्ध कराए जाएंगे। अधिकारियों के अनुसार इस नकदी फसलों की बाजार में अच्छी मांग है और कम समय में बेहतर आय प्राप्त की जा सकती है। बिहार शरीफ शहर की।
2: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
3: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
4: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
3: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
4: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
3: पता: शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
4: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
3: संपर्क करें 84710-3992 या 90765-6750।
5: अरे, स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
3: अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग।
4: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
3: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
4: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
3: एक बार सेवा का मौका जरूर दें। विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27 बंजारी, गोपालगंज।
4: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।
6: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।

0: चाहते हो मैं ना जाऊँ अपने दोस्त की शादी में?
1: क्यों, क्या हुआ है?
0: तुम्ही ने तो कहा था मुझे डिजाइनर लहंगा, साड़ी और गाउन दिलाओगे।
1: अरे तो कौन सी बड़ी बात है, आज ही चलते हैं गोपालगंज में लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स। वहाँ तुम्हें तुम्हारी मन पसंद के अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाएंगे।
0: फिर ये भी ठीक है, चलो चलते हैं लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स।
1: शादी विवाह या किसी भी शुभ अवसर पर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स जो है मेन रोड गोपालगंज में। तो भौजी आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
0: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है पर कोनो जचल है ना।
1: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में। महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आएं और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
2: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आएं, बारी मार्केट फर्स्ट फ्लोर।
3: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
4: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
3: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
4: पता जंगलिया मोहल्ला नूर मेडिकल के पास गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
5: आप सुन रहे हैं जिले की आवाज़ रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो

0: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के कहे चलतनी, और तहार मोतियाबिंद के ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
1: अरे ए बबुओ, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आँख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
0: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू? अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आ गइल बनी। यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़ फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करतनी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आँख में कोनो तरह के दर्द भी ना होई और ऑपरेशन भी हो जाए।
2: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुप्रसिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से, साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर एम ए अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने रालसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053 69 015 पे।
3: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527 88 291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527 88 291 या 95238 74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
4: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
5: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है बीके टाइल्स। बीके टाइल्स, यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
6: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं,
5: अरार मोड़ एसपी कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड़ के पास कुचाय,
6: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड ठावे मीरगंज और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़ भोरे।
5: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक हकाम बाईपास सिवान
6: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक मैरवा सिवान।
5: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी बीके टाइल्स ब्रांच पर आए और करें बेहतरीन खरीदारी।
6: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच में 9693101611,
5: कुचाय कोट ब्रांच में 9693101602, भोरे ब्रांच में 8207856404,
6: सिवान ब्रांच में 9942071405, मैरवा ब्रांच में 8207856403।
7: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: सुनिए सुनिए,
1: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
2: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
1: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
2: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
3: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
4: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
3: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
4: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399-66999।
5: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
6: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
2: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
7: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
2: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
8: ध्वनि के तरंग 90.4 पर आप जिले की आवाज रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं।

0: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है। लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
1: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
2: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
1: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
2: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
3: अरे मुन्नी, तुम आ गई, चल मेरे कान का झुमका ला।
4: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
3: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
4: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
5: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
4: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
5: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
4: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
5: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
6: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
7: भरोसे वाले से लेंगे,
6: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
7: और कीमत भी।
6: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
8: एसपी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
9: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन तो मेरा सर्टिफिकेशन।
10: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसपी ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
4: 22 कैरेट, 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर की करें खरीदारी।
10: आज यहाँ एसपी ज्वेलर्स, जो है डीएवी गर्ल्स स्कूल के सामने, स्टेशन रोड, गोपालगंज।
11: और अब एसपी ज्वेलर्स का नया ब्रांच, मेन रोड, गोपालगंज, इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
10: कॉल करें 85070-32042 पे।
12: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपने भाषा की पहचान, रेडियो रिद्म 90.4 FM। सुनो दिल से।

0: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
1: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
0: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
1: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
0: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
2: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
3: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
2: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
3: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम इकडेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
2: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
3: जानकारी है तो कॉल करे 6205-62112 पे।
4: प्रसाद क्लिनिक।
5: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
4: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंज स्टेडियम LIC ऑफिस के पास गोपालगंज,
6: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
7: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, शाखा राजापुर बाजार गोपालगंज। CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
8: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
7: तो देर मत कीजिए,
8: सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज। कॉल अस 9939721308।
9: सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता, रेडियो रिमझिम 90.4 FM जो हर पल कहे सुनो दिल से।

0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM सुन रहे हैं आप। समय हो चुका है आज के रोजगार समाचार का, आइए सुनते हैं आज का अंक।
1: आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है रोजगार समाचार। नमस्कार, रोजगार समाचार के आज के अंक में मैं हूं मुनीश शर्मा। आइए जानकारी लेते हैं किन रिक्तियों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। सीमा सुरक्षा बल महानिदेशालय आमंत्रित कर रहा है इन पदों के लिए आवेदन। सीनियर फ्लाइट इंजीनियर इंस्पेक्टर रिक्तियां 2 हैं, सीनियर फ्लाइट गनर इंस्पेक्टर रिक्तियां 4, जूनियर फ्लाइट इंजीनियर सब इंस्पेक्टर रिक्तियां 2, जूनियर फ्लाइट गनर सब इंस्पेक्टर रिक्तियां 8, सहायक एयरक्राफ्ट मैकेनिक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर रिक्तियां 8 और सहायक रेडियो मैकेनिक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर रिक्तियां 3, सीटी मेंटेनेंस रिक्ति है 1। कुल 28 रिक्तियों के लिए ये आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। आवेदन प्रपत्र, पात्रता शर्तों, भर्ती के तरीके और अन्य विस्तृत जानकारियों के लिए देखिए सीमा सुरक्षा बल महानिदेशालय की वेबसाइट www.bsf.gov.in। असम विश्वविद्यालय सिलचर, जो कि एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है, एसोसिएट प्रोफेसर, सहायक प्रोफेसर तथा मुख्यालय में प्रोफेसर क वर्ग के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। विषयों, विभागों, नियम, शर्तों, आयु, वेतनमान आदि की विस्तृत जानकारी आपको मिल जाएगी इस वेबसाइट पर www.aus.ac.in। इसके अलावा इस वेबसाइट पर भी आपको ये जानकारियां मिलेंगी curec.samarth.ac.in। ऑनलाइन आवेदन 10 जुलाई 2026 तक किए जा सकते हैं और ये सभी जानकारियां विस्तार से यदि आप देखना चाहें तो 20 जून 2026 से 26 जून 2026 का रोजगार समाचार पत्र भी आप देख सकते हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड सहायक प्रबंधक टेलीकॉम के एक पद के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। योग्यता प्राप्ति के बाद उम्मीदवार को 5 वर्ष का अनुभव अवश्य हासिल होना चाहिए। पात्रता मानदंड, आवेदन पत्र आदि की विस्तृत जानकारी के लिए देखिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम की वेबसाइट www.ncrtc.in। इस वेबसाइट पर जाकर करियर अनुभाग में रिक्ति सूचना संख्या 23/2026 को देख सकते हैं। नॉर्थ ईस्टर्न इंदिरा गांधी रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल साइंसेज शिलोंग मेघालय प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के विभिन्न पदों के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। जिन विभागों में रिक्तियां उपलब्ध हैं उनके नाम हैं एनेस्थीसियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, कार्डियोलॉजी, सीटीवीएस, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, मेडिकल ऑन्कोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, न्यूरोलॉजी, न्यूक्लियर मेडिसिन, ऑब्स्टेट्रिक्स और गायनोकोलॉजी, ऑप्थेल्मोलॉजी, पीडियाट्रिक्स, पैथोलॉजी, पेन पैलिएटिव, फार्माकोलॉजी, रेडियो डायग्नोसिस और इमेजिंग, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, टीबी और रेस्पिरेटरी डिजीज, ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन और ब्लड सेंटर तथा यूरोलॉजी। आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं इस ईमेल पर arestttii@neigrihms.gov.in। विस्तृत जानकारी के लिए देखिए वेबसाइट edu.easbuzz.in। किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरण के लिए आप चाहें तो फोन कर सकते हैं। फोन नंबर है 0364, इसके बाद डायल कीजिए 253-8020 या 253-2915। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
2: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमझिम 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
3: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
4: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
3: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
4: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
3: संपर्क 99 393

0: 800-600-6144 या 7870-33-144।
1: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
2: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
3: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
4: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
3: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
1: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
0: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
4: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
5: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस्मत ENT केयर सेंटर, सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
6: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलता पूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य SP त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज, जैसे
7: सभी प्रकार के नशा, जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
6: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलता पूर्वक करते हैं।
0: वैद्य SP त्यागी जी से मिलने का पता
6: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड, थावे रोड, भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
0: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99-55-94-94-53
6: और 90-97-61-60-02।
3: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो, रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

0: लीजिए। नमस्कार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अमरीका के व्यापार प्रतिनिधि दूत जेमिसन ग्रीर के साथ व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून से सोल में मुलाकात की। वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को मजबूत करने का आह्वान किया। ओमान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से एक अस्थायी समुद्री गलियारा खोलने की घोषणा की। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में निर्माणाधीन गोदाम गिरने से 3 लोगों की मौत, बचाव अभियान जारी। अरुणाचल प्रदेश में मूसलाधार वर्षा से अचानक बाढ़ आई, असम में चेतावनी जारी की गई। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कनाडा आज रात स्विट्जरलैंड से खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि दूत जेमिसन ग्रीर और उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ नई दिल्ली में बैठकें की। श्री गोयल ने भारत अमरीकी व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के अवसरों की खोज की। उन्होंने राजदूत ग्रीर के नेतृत्व और दोनों पक्षों के रचनात्मक तथा प्रगतिशील तरीके से वार्ता को आगे बढ़ाने के निरंतर प्रयासों की भी सराहना की। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने आज नई दिल्ली में सामरिक रक्षा साझेदारी ढांचे के अंतर्गत रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए एक बैठक आयोजित की। बैठक की सह अध्यक्षता अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के संयुक्त सचिव अमिताभ प्रसाद और संयुक्त अरब अमीरात के ब्रिगेडियर स्टाफ जमाल इब्राहिम मोहम्मद इब्राहिम अलमारजूकी ने की। चर्चा का मुख्य विषय रक्षा उद्योग सहयोग का विस्तार करना, नवाचार को बढ़ावा देना, विशिष्ट तकनीकों का लाभ उठाना और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना था। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिदृश्य के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। सोल में दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ बैठक में डॉ जयशंकर ने कहा कि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में विश्वसनीय साझेदारों के बीच सहयोग पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है।
2: It is clearly our responsibility.
3: इस साझेदारी को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। इसमें सरकार के अलग अलग विभाग और देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलू शामिल हैं, जिनके बीच तालमेल बिठाना बहुत आवश्यक है। मैं कहूंगा कि हमें भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक आधुनिक साझेदारी की ओर बढ़ना चाहिए।
2: रिलेशनशिप इन अ मोर डिफिकल्ट वर्ल्ड।
1: ईरान में मौजूद भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों के लिए यात्रा परामर्श जारी किया है। दूतावास ने कहा है कि अगली सूचना तक भारतीय नागरिक जब तक आवश्यक न हो ईरान की यात्रा न करें। एक रिपोर्ट।
4: जो भारतीय नागरिक वर्तमान में ईरान में रह रहे हैं या किसी आवश्यक कारण से वहां यात्रा करने जा रहे हैं, उन्हें विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। दूतावास ने भारतीय नागरिकों से कहा है कि वे अपने आसपास की स्थिति पर लगातार नजर रखें और स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें। दूतावास ने ईरान में मौजूद सभी भारतीय नागरिकों और वहां पहुंचने वाले लोगों से जल्द अपना विवरण भारतीय दूतावास में पंजीकृत कराने की अपील की है। भारतीय नागरिकों को दूतावास की आधिकारिक वेबसाइट और सोशल मीडिया मंचों पर जारी होने वाले अपडेट तथा सलाह पर नियमित रूप से नजर रखने की भी सलाह दी गई है। विष्णु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: इस बीच ओमान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से एक अस्थायी समुद्री गलियारा खोलने की घोषणा की है। ये वाणिज्यिक जलमार्ग को बहाल करने और खाड़ी में फंसे हजारों नाविकों के संकट को कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ओमान सरकार ने कहा है कि ये पहल संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के समन्वय से की गई है। इससे क्षेत्रीय संघर्ष से जुड़ी महीनों के व्यवधान के बाद जलमार्ग से जहाजों की सुरक्षित आवाजाही को सुगम बनाया जा सकेगा। संगठन के अनुसार क्षेत्र में 11,000 से अधिक नाविक फंसे हुए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज नई दिल्ली में वीआईपी कल्चर इन इंडिया पावर प्रिविलेज एंड डिस्टेंस फ्रॉम डेमोक्रेसी नामक पुस्तक का विमोचन किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये पुस्तक सत्ता संस्थानों और लोगों के बीच मौजूद दूरी को जन केंद्रित शासन के माध्यम से इस दूरी को कम करने की आवश्यकता पर बल देती है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये पुस्तक दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत की पहचान का उल्लेख करती है।
0: That Bharat is the world's largest democracy and is also called the mother of democracy. Our constitution envisions a society based on justice, equality, liberty and fraternity.
1: उपराष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उदाहरण देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने नीट परीक्षा देने वाले छात्रों को यातायात असुविधा से बचाने के लिए हवाई अड्डे से अपनी उड़ान लगभग 45 मिनट तक विलंबित की थी। रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह ने आज पंजाब के जालंधर में दो महत्वपूर्ण रोड ओवरब्रिज आरओबी परियोजनाओं की आधारशिला रखी। उन्होंने बताया कि जालंधर शहर जालंधर कैंट खंड पर गुरु नानकपुरा आरओबी का निर्माण 48 करोड़ 95 लाख रुपए की लागत से किया जाएगा, जबकि दूसरा बस स्टैंड गढ़ा रोड आरओबी 63 करोड़ 98 लाख रुपए की लागत से बनेगा। दोनों परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता रेलवे देगी। गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो द्वारा आयोजित इस बैठक में केंद्रीय मंत्रालय, राज्य सरकारें और मादक पदार्थों से संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधि मादक पदार्थों की तस्करी और दुरूपयोग से निपटने के प्रयासों की समीक्षा करेंगे। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स अंतरिक्ष एजेंसियों के प्रमुखों की 2026 की बैठक आज बेंगलुरु में संपन्न हुई। विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह समापन सत्र में शामिल हुए। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा कि दो दिन की बैठक में आपदा प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन निगरानी सहित कई विषयों पर चर्चा हुई।
5: इस बैठक में 10 देशों के 26 प्रतिनिधियों के साथ साथ इसरो, इन स्पेस और अंतरिक्ष विभाग के लोग भी शामिल हुए। इसमें ब्रिक्स देशों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए रिमोट सेंसिंग उपग्रह समूहों के इस्तेमाल पर काफी चर्चा हुई, जिसमें आपदा प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन और दूसरे पहलू शामिल थे। हमने मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन प्रबंधन तथा अंतरिक्ष अभियानों के सतत संचालन पर भी विचार विमर्श किया।
1: विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने 14वें पासपोर्ट सेवा दिवस के अवसर पर सभी पासपोर्ट अधिकारियों की उनकी समर्पित सेवा और नागरिकों के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के लिए सराहना की। श्री सिंह ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में भारत की पासपोर्ट सेवाओं में उल्लेखनीय परिवर्तन आया है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि वर्ष 2025 में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों, पासपोर्ट सेवा केंद्रों और विदेशों में भारतीय दूतावासों के माध्यम से भारतीय नागरिकों को लगभग 1.5 करोड़ पासपोर्ट और संबंधित सेवाएं प्रदान की गई हैं। देशभर में पासपोर्ट सेवा केंद्रों और डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्रों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हुई है। वर्तमान में देश में ऐसे 545 केंद्र कार्यरत हैं। पिछले वर्ष 10 नए डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र खोले गए थे और इस वर्ष भी 10 नए केंद्र खोले जाने की योजना है। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी योजना ग्रामीण के मसौदा समन्वय ढांचे पर आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय अंतर मंत्रालय बैठक का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता ग्रामीण विकास विभाग के सचिव रोहित कंसल ने की। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने बताया है कि ये बैठक अगले महीने की पहली तारीख से लागू होने वाले विकसित भारत जी राम जी योजना की तैयारियों के अंतर्गत आयोजित की गई। स्वच्छ गंगा राष्ट्रीय मिशन ने राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान के सहयोग से गंगा नदी के तट पर शहरी नदी प्रबंधन योजनाओं का विस्तार किया है। ये प्रबंधन योजनाएं नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत हैं। अब तक 13 शहरों के लिए शहरी नदी प्रबंधन योजनाएं पूरी हो चुकी हैं। इस योजना के प्रथम चरण में 27 शहरों और दूसरे चरण में 33 शहरों के लिए योजनाएं तैयार की जा रही हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के तारातला इलाके में निर्माणाधीन गोदाम की छत गिरने की घटना के बाद राहत और बचाव अभियान जारी है। हादसे में अब तक 3 लोगों की मौत की खबर है। एक रिपोर्ट।
6: बचाव काम युद्धकालीन तत्परता से जारी है। अब तक 18 श्रमिकों को मलबे की ढेर से जिंदा निकाला गया है। करीब 15 और घायल लोग वहां फंसे रहने का संभावना है। घायलों की इलाज SSKM अस्पताल में हो रहा है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है उससे भी ज्यादा लोग फंसे हो सकते हैं। सेना, NDRF, सिविल डिफेंस, फायर ब्रिगेड और कोलकाता पुलिस मिलकर बचाव अभियान चला रहे हैं। दुर्घटना के कारण पर उन्होंने कहा कि प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक निर्माण के नक्शे में त्रुटि थी, लेकिन जिम्मेदारी किसकी है ये अभी स्पष्ट नहीं है। कल विधानसभा में इसी विषय पर बयान दिया जाएगा। आकाशवाणी समाचार के लिए कलकत्ता से अभिरूप भट्टाचार्य।
1: अरुणाचल प्रदेश के की पन्योर जिले के याजागी स्थित पोसा में मूसाधार बारिश और अचानक आई बाढ़ से काफी नुकसान हुआ है। ताजा खबरों के अनुसार 4 लोग लापता हैं, 17 लोग घायल हुए हैं, जिनमें 3 की हालत गंभीर है। प्रशासन नुकसान का आकलन कर रहा है। भूस्खलन के कारण प्रभावित क्षेत्र याजाली और होजपोटिन दोनों तरफ से अब भी संपर्क से बाहर हैं। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि वे स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। केंद्रीय मंत्री किरेन जो ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। उन्होंने लोगों से सभी सुरक्षा निर्देशों का पालन करने को कहा है। इस बीच अरुणाचल प्रदेश में तेज वर्षा के बाद असम में निचले इलाकों में बाढ़ की आशंका को देखते हुए राज्य सरकार ने सभी एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा है। SDRF, NDRF और अन्य आपातकालीन बचाव दलों को तैयार रखा गया है। मौसम विभाग ने कल देश के कई हिस्सों में मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। पूर्वोत्तर क्षेत्र, झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, तटीय कर्नाटक, कोंकण और गोवा में तेज वर्षा हो सकती है। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कल तक तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान की स्थिति बनी रह सकती है। बिहार में भी अगले 2 दिनों तक ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। दिल्ली में कल बारिश की संभावना है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान द्वारा कश्मीर मुद्दा उठाने पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। पाकिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र मंच का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाते हुए भारत ने कहा कि सह अध्यक्ष के रूप में निष्पक्ष रहने के बजाय पाकिस्तान ने पद का दुरुपयोग किया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि आसिम इफ्तिखार अहमद की टिप्पणियों के जवाब में जम्मू कश्मीर पर भारत का रुख दोहराया।
7: मैं पाकिस्तानी पक्ष की टिप्पणियों का उल्लेख करता हूं। यह हैरान कर देने वाला है कि ऐसे मंच पर जहां राजनीतिक मुद्दों पर संतुलित और निष्पक्ष चर्चा की उम्मीद की जाती है ऐसी बातें कही गईं। मैं दोहराना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर पूर्ण रूप से भारत का घरेलू मामला है।
1: भारतीय नौसेना के जहाज उदयगिरी और कवरत्ती दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में अपनी परिचालन तैनाती के अंतर्गत वियतनाम के हो चिन मिन शहर से दौरा पूरा करने के बाद रवाना हो गए हैं। इस दौरे पर पूर्वी बेड़े के फ्लैग ऑफिसर रियर एडमिरल आलोक आनंद ने हो चिन मिन शहर की पीपल्स कमेटी और वियतनाम पीपल्स नेवी के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समुद्री सहयोग, आपसी समन्वय और क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा पर चर्चा की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में INS कवरत्ती पर एक संयुक्त योग सत्र भी आयोजित किया गया। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ है अम्बरीश सक्सेना।
8: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 791 अंक बढ़कर 76,991 अंकों पर बंद हुआ। निफ्टी भी 198 अंक बढ़कर 24,022 अंकों पर जा पहुंचा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के व्यापक बाजार में मिड कैप 100 सूचकांक 0.1% और स्मॉल कैप सूचकांक 0.4% तक बढ़ा। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 की तुलना में 8 पैसे मजबूत होकर 94.66 पर बंद हुआ।
1: फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप बी मुकाबले में देर रात स्विट्जरलैंड का मुकाबला कनाडा से होगा। इसी ग्रुप में कतर और बोस्निया एंड हर्जोगोविना आमने सामने होंगे। दोनों मुकाबले रात 12:30 बजे से खेले जाएंगे। US ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला डबल्स में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। भारतीय जोड़ी ने स्पेन की पाउला लोपेस और लूसिया रॉड्रिक्स को हराया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि दूत जेमिसन ग्रीर के साथ व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून से सोल में मुलाकात की। वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को मजबूत करने का आह्वान किया। ओमान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से एक अस्थायी समुद्री गलियारा खोलने की घोषणा की। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में निर्माणाधीन गोदाम गिरने से 5 लोगों की मौत, बचाव अभियान जारी। अरुणाचल प्रदेश में मूसाधार वर्षा से अचानक बाढ़ आई, असम में चेतावनी जारी की गई। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कनाडा आज रात स्विट्जरलैंड से खेलेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
9: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजिम 90.4 एफएम पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
10: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
11: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
12: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
13: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
12: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
10: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
14: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
15: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
14: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
15: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
14: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
15: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
14: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
15: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
16: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
17: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
14: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
15: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड, गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
14: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
15: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेष शग्यो द्वारा।
14: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता, MBBS, MS, सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा, MBBS, MD, DNB, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
15: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD, IPD, ICU, मॉड्यूलर OT, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
14: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा, भोजपुरवा, NH 27, गोपालगंज।
15: कॉल करें 70-70-75-6300 या 70-70-75-4200 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
18: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
19: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
18: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
19: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ 1 रुपए प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है, माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी, संपर्क करें 99-399-66-999।
20: क्या चाहते हो? मैं ना जाऊँ अपने दोस्त की शादी में।
21: क्यों, क्या हुआ है?
20: तुम्ही ने तो कहा था मुझे डिजाइनर लहंगा, साड़ी और गाउन दिलाओगे।
21: अरे तो कौन सी बड़ी बात है, आज ही चलते हैं गोपालगंज में लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स। वहाँ तुम्हें तुम्हारी मन पसंद के अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाएंगे।
20: फिर ये भी ठीक है, चलो चलते हैं लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स।
21: शादी विवाह या किसी भी शुभ अवसर पर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स जो है मेन रोड गोपालगंज में।
22: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं श्रृंगार वाटिका।
23: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 8604348652 पे।
24: नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल, पहले मुखिया हालचाल। जिला विधिज्ञ संघ चुनाव को लेकर मतदान हुआ संपन्न, सिपाही भर्ती परीक्षा केंद्रों का जिला पदाधिकारी ने किया निरीक्षण, 12 साल का एक युवक संदिग्ध परिस्थितियों में लापता, सब इलेक्शन ऑफिसर बनेगी कुचायकोट की अनीता, अलग अलग मामलों में गिरफ्तार किए गए आरोपियों को आज भेजा गया जेल। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र, अब हालचाल विस्तार से। जिला विधिज्ञ संघ के कुल 28 पदों के लिए आज मतदान की प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गई। इसके लिए व्यापक सुरक्षा के भी इंतजाम किए गए थे। बताया जा रहा है कि अब 25 जून को मतगणना के बाद चुनाव परिणामों की आधिकारिक घोषणा की जाएगी। जिला विधिज्ञ संघ के चुनाव को लेकर बुधवार को वकालतखाना परिसर में कड़ी सुरक्षा के बीच सुबह 7:30 से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी, जो शाम 4 तक चली। मतदान के दौरान दोपहर 12:30 से 2 तक भोजनावकाश के लिए मतदान की प्रक्रिया को विराम दिया गया था। चुनाव को लेकर वहां पुलिस बल और दंडाधिकारी की तैनाती की गई थी। निर्वाचन पदाधिकारी हरेंद्र मिश्रा ने बताया कि जिला विधिज्ञ संघ के कुल 28 पदों के लिए मतदान किया गया है। मतदान में 64 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इनके भाग्य का फैसला करने के लिए 1189 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मतदान की व्यवस्था वकालतखाना भवन के ग्राउंड फ्लोर पर की गई थी। मतदाताओं की सुविधा के लिए 2 मतदान काउंटर बनाए गए थे। पहले काउंटर पर क्रमांक 1 से 591 तक और दूसरे काउंटर पर 592 से आगे के मतदाताओं ने मतदान की प्रक्रिया को पूर्ण किया। जिला पदाधिकारी समीर सौरभ ने जिले में आयोजित सिपाही भर्ती परीक्षा के विभिन्न परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने डीएवी उच्च माध्यमिक विद्यालय गोपालगंज एवं एसएस बालिका उच्च विद्यालय गोपालगंज स्थित परीक्षा केंद्रों का जायजा लिया। निरीक्षण के क्रम में जिला पदाधिकारी ने परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध सुविधाओं, सुरक्षा व्यवस्था, प्रवेश प्रक्रिया, सीसीटीवी निगरानी कक्ष सहित अन्य व्यवस्थाओं का बारीकी से निरीक्षण किया। उन्होंने परीक्षा को स्वच्छ, निष्पक्ष एवं कदाचार मुक्त वातावरण में संपन्न कराने के लिए प्रतिनियुक्त अधिकारियों और कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। इसको लेकर शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा को संपन्न कराया जा सका। जिला पदाधिकारी ने कहा कि परीक्षा के संचालन में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जा रही है। सभी केंद्रों पर सरकार द्वारा निर्धारित मानकों का अक्षरशः पालन किया गया है। कुचायकोट थाना क्षेत्र के महुआ गांव से एक 12 साल का बालक संदिग्ध स्थितियों में लापता हो गया है। बताया जा रहा है कि इस घटना के बाद परिजन काफी चिंतित और बेचैन हैं। परिजनों ने बच्चे की सकुशल बरामदगी के लिए पुलिस से भी गुहार लगाई है। बताया जा रहा है कि यह लड़का महुआ गांव के अजय शाह का 12 वर्षीय पुत्र पवन कुमार है, जो मंगलवार को घर के दरवाजे पर खेल रहा था। इसी दौरान अचानक लापता हो गया। काफी देर तक जब घर नहीं लौटा तो परिजनों ने खोजबीन शुरू की। रिश्तेदारों और आसपास के गांवों में भी तलाश की गई, लेकिन उसका कहीं कोई सुराग नहीं मिल सका। जिसके बाद बुधवार को पवन कुमार के दादा पन्ना लाल शाह कुचायकोट थाना पहुंचे और लिखित आवेदन देकर पुलिस को घटना की जानकारी दी। आवेदन में उन्होंने अपने पोते की सकुशल बरामदगी की मांग की है। इस संदर्भ में कुचायकोट के थाना अध्यक्ष दर्पण सुमन ने बताया कि पीड़ित परिवार की ओर से लिखित आवेदन प्राप्त हुआ है। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। बालक की तलाश के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। बालक के लापता होने की घटना से गांव में भी चिंता का माहौल बना हुआ है। परिजन बच्चे के सकुशल वापसी की उम्मीद लगाए हुए है। इधर कुचायकोट प्रखंड क्षेत्र के मोतिया खास पंचायत के मोतिया खास गांव की बेटी अनीता कुमारी ने बिहार लोक सेवा आयोग परीक्षा में 437वीं रैंक प्राप्त कर सब इलेक्शन ऑफिसर पद के लिए चयनित हुई हैं। इसके बाद उन्होंने अपने गांव क्षेत्र का नाम रोशन किया है, जिसको लेकर पूरे इलाके के लोग उन्हें सम्मानित कर रहे हैं। अनीता कुमारी धुरेंद्र पटेल एवं पूनम देवी की पुत्री है। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा राम रतन शाही उच्च विद्यालय जादवपुर से प्राप्त की। आगे की पढ़ाई महेंद्र महिला कॉलेज से पूरी की। वर्तमान में बिहार पुलिस में कार्यरत रहते हुए उन्होंने अपनी पढ़ाई और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी जारी रखी। दूसरी कोशिश में उन्हें यह सफलता मिली है। सब इलेक्शन ऑफिसर बनने के बाद अनीता पहली बार गाँव पहुँची। ग्रामीणों और परिजनों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। गाँव की महिलाओं ने उनकी आरती उतार कर उनका सम्मान किया। इस दौरान मोतिया खास पंचायत के वर्तमान मुखिया रामेश्वर यादव और पंचायत राज बनतैल के भावी मुखिया प्रत्याशी डॉक्टर राजा हुसैन अपने समर्थकों के साथ पहुंचे और अंग वस्त्र तथा पुष्प गुच्छ भेंट कर उसका अभिनंदन किया। अनीता ने कहा कि उनकी सफलता का श्रेय माता पिता गुरुजनों परिवार और समाज के आशीर्वाद को जाता है। उन्होंने कहा कि निरंतर मेहनत आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच से किसी भी लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। उन्होंने युवाओं से भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी पूरी लगन और ईमानदारी से करने की अपील की। मुखिया ने कहा कि अनीता की सफलता गांव के लिए गौरव का विषय है। उन्होंने विश्वास जताया कि अनीता आगे भी अपने कार्यों से क्षेत्र और राज्य का नाम रोशन करेंगी। पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी के निर्देश पर जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों से गिरफ्तार किए गए 21 लोगों को आज न्यायिक हिरासत भेज दिया गया। इसमें हत्या के प्रयास, एनडीपीएस एक्ट और पॉक्सो एक्ट के साथ ही शराब की तस्करी और अन्य आपराधिक गतिविधियों में शामिल आरोपी हैं, जिन्हें पुलिस ने अलग अलग थाना क्षेत्रों से पकड़ा है। बताया जा रहा है कि तीनों युवक ई रिक्शा से मुहर्रम का सामान खरीदने के लिए कररिया मोड़ के तरफ जा रहे थे। इसी दौरान कोटवा मोड़ के पास तेज रफ्तार होने के कारण ड्राइवर ने ई रिक्शा से अपना नियंत्रण खो दिया और रिक्शा पलट गई। इसके बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने मदद किया, सभी को ई रिक्शा से बाहर निकालकर हॉस्पिटल पहुंचाया, जिसमें एक युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान सोहराब राय उम्र 45 वर्ष के रूप में की गई है। मृतक छपरा जिले के भगवान बाजार थाना क्षेत्र के मुस्तकीम राय का पुत्र सोहराब राय है। बताया जा रहा है कि वह अपने बहन के घर रह रहा था और इस हादसे में जादवपुर थाना क्षेत्र के हीरा पाकड़ निवासी अजीज राय के पुत्र मुन्ना राय उम्र 30 वर्ष और हिमान राय का पुत्र शहजाद राय उम्र 21 वर्ष घायल है। इनका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। दोनों की स्थिति भी गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने घटना स्थल पर पहुंचकर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है और मृतक के शव को पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंपा है। प्रारंभिक जांच में हादसे का कारण ई रिक्शा का अनियंत्रित होकर पलटना बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस सभी पहलुओं पर बारीकी से जांच कर रही है। इधर मुहर्रम पर्व को लेकर पटाखा बजाने के विवाद में दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसमें एक युवक पर चाकू से हमला किया गया है। घायल का इलाज मॉडल सदर अस्पताल में चल रहा है। यह मामला थामे थाना क्षेत्र के मिरलीपुर का बताया जा रहा है। खबर मिलने तक इस घटना को लेकर प्रशासन की तरफ से कोई जानकारी साझा नहीं की गई थी। जिले के 10 थानों को अब अपग्रेड किया गया है और यहाँ इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी थाना अध्यक्ष के रूप में अपनी सेवा देंगे। बताया जा रहा है कि पुलिस मुख्यालय के आदेश पर गोपालगंज जिले के कटिया, भोरे, मीरगंज, कुचायकोट, बैकुंठपुर, उचका गांव, माझागढ़, बरौली, विजयपुर और गोपालपुर थाने को अपग्रेड किया गया है और यहां के थानाध्यक्ष इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी होंगे। बताते चले कि इसके पहले भी जिले के गोपालगंज का नगर थाना और हथुआ थाना, ये दो थाने इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी ही संचालित करते थे। इसके बाद अब जिले में 10 थानों को इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी संचालित करेंगे। पुलिस का कहना है कि इसके वजह से अपराध के अनुसंधान में तेजी आएगी और जल्द से जल्द मामलों का निष्पादन किया जाएगा। साथ ही अपर थानाध्यक्ष की भी तैनाती होगी और बेहतर पुलिसिंग सेवा को उपलब्ध कराने के लिए पदाधिकारियों की जिम्मेदारियां तय की जाएंगी। पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी ने आज अपने कार्यालय में जनता दरबार के माध्यम से लोगों की समस्याओं को सुना। पुलिस अधीक्षक ने कई मामलों का निष्पादन किया और कुछ मामलों का समयबद्धता के साथ निष्पादन के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिया। नगर थाना की पुलिस ने हत्या के प्रयास में फरार चल रहे प्राथमिकी अभियुक्त मुन्ना अली पिता दाम अली साकिन पुरानी चौक थाना नगर जिला गोपालगंज को विधिवत इसके घर के पास से ही गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि इस आरोपी पर 613/26 हत्या के प्रयास का मामला दर्ज था जिसमें पुलिस इसे ढूंढ रही थी। तभी गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी की और आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इधर माधोपुर थाना की पुलिस ने एक मामले में फरार चल रहे प्राथमिकी आरोपी दीन बंधु ओझा को गिरफ्तार कर लिया। यह माधोपुर के बेलसण गांव के सत्यदेव ओझा के पुत्र बताए जा रहे हैं। इन पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज है और यह फरार चल रहे थे। अब पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। 3 टेम्पू गाड़ी से 155 लीटर से अधिक देसी विदेशी शराब पकड़ी गई है। 3 टेम्पू अलग अलग जगहों से पकड़ी गई है और इनमें 3 आरोपियों की गिरफ्तारी भी हुई है। यह कार्रवाई उत्पाद पुलिस के द्वारा की गई है। बताया जा रहा है कि उत्पाद पुलिस ने पहली कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर कुचायकोट थाना क्षेत्र के खजूरी पूरब टोला में की। यहाँ पवन कुमार को एक टेम्पू के साथ शराब लाते हुए गिरफ्तार किया गया। इसकी गाड़ी से 51 लीटर से अधिक विदेशी शराब मिली। यह आरोपी सारण जिला का रहने वाला बताया जा रहा है। दूसरी कार्रवाई नगर थाना क्षेत्र के चैन पट्टी दुर्गा मंदिर के पास NH 27 पर हुई। यहाँ भी एक टेम्पू गाड़ी पकड़ी गई और इस गाड़ी से सुरेंद्र कुमार को गिरफ्तार किया गया। यह भी सारण के ही सुदर्शन माझी का पुत्र है और इसकी गाड़ी से भी 51 लीटर से अधिक विदेशी शराब मिली। तीसरी कार्रवाई थामे बाईपास रोड पर हुई। यहाँ राजा कुमार नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। यह भी सारण जिला का रहने वाला है। इसकी गाड़ी से भी 51 लीटर से अधिक शराब मिली। ये तीनों आरोपी एक ही क्षेत्र के रहने वाले हैं और अलग अलग टेम्पू में शराब लेकर आ रहे थे। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर तीनों को पकड़ने के लिए जाल बिछाया और अलग अलग क्षेत्रों से तीनों को गिरफ्तार कर लिया। इनके शराब और टेम्पू को जब्त करते हुए पुलिस ने इन्हें उत्पाद अधिनियम के तहत न्यायिक हिरासत में भेज दिया। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 39 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। जिला विधिज्ञ संघ चुनाव को लेकर मतदान हुआ संपन्न। सिपाही भर्ती परीक्षा केंद्रों का जिला पदाधिकारी ने किया निरीक्षण। 12 साल का एक युवक संदिग्ध परिस्थितियों में लापता। सब इलेक्शन ऑफिसर बनेगी कुचायकोट की अनीता। अलग अलग मामलों में गिरफ्तार किए गए आरोपियों को आज भेजा गया जेल। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
0: ठक ठक।
2: काजी आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
3: अच्छा मिला ही नहीं
2: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें। अब चलिए सीधे कमल श्री में।
3: जी हाँ कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
2: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
3: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
4: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
5: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
4: आज ही संपर्क करें 7388-89470 या 9198-88-6973।
25: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
26: माँ
0: अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली जुलने की गारंटी।
1: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
6: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94395461 या 97-0976-575।
7: सुनिए सुनिए सुनिए,
8: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
7: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
8: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
7: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
9: जानते हो दोस्तों, जिसे हम सिर्फ चिलचिलाती धूप कहते थे, आज उसी धूप से हम अपनी छतों पर ऊर्जा बना लेते हैं। तभी तो आज लगभग 37 लाख घर PM सूर्य घर बने हैं, जिससे देश का बिजली बिल घटा है और आत्मविश्वास बढ़ा है।
26: एक दशक पहले भारत सोलर पावर के मामले में बहुत पीछे था, लेकिन आज सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप 5 देशों में आ गया।
9: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
27: Excuse me, boss. You have a text message.

0: हेलो हाय नमस्ते नमस्कार प्रणाम सलाम, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग मस्त एंड स्वस्थ होंगे और मैं भी मस्त एंड स्वस्थ आप सभी के बीच उपस्थित हो चुका हूं। मैं सोनू शो SMS फरमाइश के साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे समय 9:27 हो रहे हैं। हमारे स्टूडियो घड़ी में थोड़े से लेट हो गए हैं और चलिए कार्यक्रम को शुरू कर दिए हैं। यदि आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल जुड़ सकते हैं। इसके लिए आप सभी को टेक्स्ट मैसेज करना है। मैसेज का नंबर है 7277165696। ध्यान रखना है कि जब भी गाने का फरमाइश या आप लोगों से हर रोज़ निवेदन की जाती है कि पुराने गाने के साथ इस कार्यक्रम में अपना हाजिरी देंगे और पुराने गाने के साथ इंजॉय करेंगे। यहाँ पे कुछ मैसेज पहुँचे हुए तो मैसेज को शामिल करते हुए इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो अभी टेक्स्ट मैसेज करें। मैसेज का नंबर है 7277165696। यहाँ पे पहला मैसेज पहुँचा हुआ है और लिखा गया है कि हेलो नमस्ते सर जी, हम दिलीप कुमार ठाकुर मिर्ज़ापुर टू मोहाली पंजाब से, और मुझे आज मेरा फरमाइश है सुना दीजिए। जीना यहाँ मरना यहाँ मूवी, मेरा नाम जोकर से। तो चलिए आपकी फरमाइश के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, लिखा गया है कि
1: स्त्री रोग यूपोरिया यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी तने।
0: आगे मैसेज पहुंचा और लिखा गया है कि मेरा नाम है योगी शर्मा, घर एक डेढ़वा से, और मुझे सॉन्ग सुनना है नथिया ले आइला उधार राजा जी। तो इस गाने के फरमाइश तो हम इस कार्यक्रम में पूरी नहीं कर पाएंगे। आप पुराने गाने के फरमाइश करें, हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि अस्सलाम वालेकुम, आप कैसे हैं, और आज मुझे एक सॉन्ग सुनना है, और सॉन्ग की फरमाइश हमें तुमसे हुआ है प्यार हम क्या करें। तो बिल्कुल आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे। फिलहाल स्वागत है आपका, और इस मैसेज को करती हैं शबीना खातो फ्रॉम दिल्लियाँ से। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, गुड इवनिंग सर, मैं अनीश यादव विलेज डुमरा से, और डुमरा यदुवंशी टोला सिवान बिहार से, और स्टूडेंट ऑफ खान ग्लोबल स्टडीज पटना। तो बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में, और गाने के फरमाइश तो पूरा करने की कोशिश है और बने रहे हमारे साथ। आगे मैसेज अभी पहुंचा हुआ, लिखा गया है कि न्यू गाना नहीं है सर। तो बिल्कुल हमें तो लगता है कि आप नए गाने की फरमाइश किए हुए हैं। और रही बात नई गाने नहीं है तो आपके गाने हम जब ढूँढेंगे तो पता चल ही जाएगा। यदि नए होंगे तो पूरा नहीं करेंगे और पुराने होंगे तो बिल्कुल पूरा करेंगे। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और गाने के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत कर देते हैं। और पहले गाने के फरमाइश यहाँ पे पहुँचा हुआ है दिलीप जी के तरफ से, और गाने का बोल देते हैं, जीना यहाँ मरना यहाँ मूवी, मेरा नाम जोकर से।

0: रोकिए महेंद्र साहब, उसको रोक लीजिए। डॉक्टर कहते हैं अगर ये इस तरह छुपकूद करेगा तो मर जाएगा। क्या आप अपने तमाशे के लिए एक आदमी की जान लेंगे?
1: शेर सिंह, राजू आदमी नहीं, जोकर है। ये जिएगा भी यहीं, मरेगा भी यहीं, मरेगा भी यहीं, जिएगा भी यहीं।
2: जी

रेडियो एमसीएम 94 एफएम सुन रहे हैं आप सब, और कार्यक्रम चल रहा है इसमें फरमाइश का। और यदि आप भी सुनना चाहते हैं अपने पसंद के गाने तो बिल्कुल सुन सकते हैं। इसके लिए आप सभी को टेक्स्ट मैसेज करना है। मैसेज का नंबर है 72 77 16 65 96, और यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा। धन्यवाद सुनो सर गाना बजाने के लिए। चलिए आपको भी धन्यवाद है रेडियो एमसीएम सुनने के लिए, और सुनते रहे बन रहे हमारे साथ। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि प्लीज़ प्ले दिस सॉन्ग। बिल्कुल कोशिश है, एक एक करके सबकी फरमाइश पूरी करेंगे, वैसे आपकी फरमाइश हम पूरी कर ही देंगे। और यहाँ पे आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, हाय सर मेरा नाम है उमेश पटेल और मुझे गाना सुनना है। तो बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में, गाने के फरमाइशें तो पूरा करने की कोशिश है। और यहाँ पे 541 से अंत में श्रोतागण आप फ़ोन न करें, फ़ोन करने के बजाय उसी नंबर पे आप टेक्स्ट मैसेज करें, बिल्कुल आपकी फरमाइश पूरी की जाएगी। फ़िलहाल बढ़ते हैं आगे, और आगे बढ़ते हुए अगले गाने के फरमाइश प्ले करते हैं शबीना खातून की। और इनके तरफ से गाने के फरमाइश पहुँचा हुआ है, हमें तुमसे हुआ है प्यार हम क्या करें। डेडिकेट अफसाना अपी, रोशनी अपी, सब्बा अपी, साजिदा अपी, गुड़िया जी, हाजरा सिस्टर, खुशी जी, निशा जी, सोनी जी, शिल्पी जी, समीर भाई, कमरान भाई, और इरफान भैया, साहिल भाई, दीपक भाई, दिलीप भैया, वीरेंद्र भैया, लवली भाभी, और थोड़ा बहुत आपको भी। तो चलिए हम थोड़ा बहुत ही सुनेंगे, लेकिन सुनेंगे तो ज़रूर। फिलहाल गाने को प्ले करते हैं और सुनते हैं।

0: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
2: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
2: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
2: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710-3992 या 9765-65750।
3: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
4: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है BK टाइल्स।
1: BK टाइल्स यहां

0: मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
1: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं,
0: अरार मोड़ SP कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड़ के पास कुचाई कोट,
1: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड ठावे मीरगंज और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़ भोरे।
0: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक हकाम बाईपास सिवान
1: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक मैरवा सिवान।
0: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी BK टाइल्स ब्रांच पर आए और करें बेहतरीन खरीदारी।
1: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच में 9693101611,
0: कुचाई कोट ब्रांच में 9693101602, भोरे ब्रांच में 8207856404,
1: सिवान ब्रांच में 9942071405, मैरवा ब्रांच में 8207856403।
2: छोटा सा ब्रेक हो गया खत्म और ब्रेक बाद पुनः आप सभी का स्वागत है रेडियो रमझिम 90.4 FM पे। और यहाँ पे मिसेस किए हुए हैं योगी शर्मा जी और आपकी फरमाइश हम इस गाने को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, आप दूसरे गाने का फरमाइश करें, बिल्कुल पूरा करने की कोशिश रहेगा। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ लिखा गया है कि तेरे चेहरे की वो खूबसूरत तस्वीर कहाँ से लाऊं, हर लम्हा तेरे साथ गुजारे ऐसी तकदीर कहाँ से लाऊं, मैं मांगता हूँ हर जन्म में साथ तेरा, तू ही बता मेरे हाथों में वो लकीर कहाँ से लाऊं। और इस मैसेज को करते हैं हेलो हाय क्या हाल है सोनम भैया गुलाम हुसैन वेस्ट मुंबई से, और कहते हैं कि मुझे गाना सुनना है, बिल्कुल सुनाने की कोशिश रहेगा, फिलहाल स्वागत है इस कार्यक्रम में। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है हाय नमस्ते आम बीटू शर्मा फ्रॉम पिपराही से, तो बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और लिखा गया है कि हेलो नमस्ते भैया आप कैसे हैं, मेरे तरफ से सभी प्यारे प्यारे दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार एंड सलाम बोलिएगा, और मैं भी आपके शो से जुड़ गई हूं और मेरी भी हाजिरी लगा दीजिए, और मैं रोशनी कुमारी मानिकपुर से, और कहती हैं कि नाइस सॉन्ग थैंक्स सिस्टर मुझे सॉन्ग सुनाने के लिए। और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है लिखा गया है कि हाय सोनू भैया हम भी हैं, तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। और रोहित जी क्या हाल चाल है, आगे मैसेज पहुंचा हुआ है आगे गाने के फरमाइश प्ले करते हैं अनीस जी की, और इनके तरफ से गाने का फरमाइश पहुंचा हुआ है जीना है तो हंस के जियो एक पल भी रोना ना, डेडिकेट टू मनीष यादव सतीश यादव नीतीश यादव रौनक यादव अंकित यादव अंजलि यादव नंदनी यादव मिष्टी यादव मिल्की यादव एंड आपको थैंक यू। चलिए आपकी फरमाइश हम प्ले करते हैं और सुनते हैं आपके पसंद के गाने हम सभी रेडियो रमझिम 90.4 FM पे।

डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।

0: तब रामू काका हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
1: ई सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लेके आओ तनी बाबू।
0: अरे ई सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
1: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
0: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
1: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक से ले आया, दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैले से का फायदा।
2: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
0: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में प्रगति की 52वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में लगभग 30,000 करोड़ रुपए की 4 प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने परियोजनाओं को समय पर पूरा करने और लंबित मुद्दों के शीघ्र समाधान पर बल दिया। बैठक में टीबी मुक्त भारत अभियान की भी समीक्षा की गई। श्री मोदी ने टीबी उन्मूलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग और जागरूकता अभियानों में एनसीसी कैडेटों तथा माय भारत स्वयं सेवकों की भागीदारी बढ़ाने का सुझाव दिया। प्रधानमंत्री ने साइबर अपराध और डिजिटल धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों पर चिंता व्यक्त करते हुए सभी एजेंसियों, बैंकों और डिजिटल प्लेटफार्मों के बीच बेहतर समन्वय तथा जन जागरूकता बढ़ाने के निर्देश दिये। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज अमरीका

0: व्यापार प्रतिनिधि दूत जैमिसन ग्रीर और उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ नई दिल्ली में बैठकें की। श्री गोयल ने भारत अमरीकी व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के अवसरों की खोज की। उन्होंने राजदूत ग्रीर के नेतृत्व और दोनों पक्षों के रचनात्मक और प्रगतिशील तरीके से वार्ता को आगे बढ़ाने के निरंतर प्रयासों की भी सराहना की। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने आज नई दिल्ली में सामरिक रक्षा साझेदारी ढांचे के अंतर्गत रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए एक बैठक आयोजित की। बैठक की सह अध्यक्षता अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के संयुक्त सचिव अमिताभ प्रसाद और संयुक्त अरब अमीरात के ब्रिगेडियर स्टाफ जमाल इब्राहिम मोहम्मद इब्राहिम अलमार जुकी ने की। चर्चा का मुख्य विषय रक्षा उद्योग सहयोग का विस्तार करना, नवाचार को बढ़ावा देना, विशिष्ट तकनीकों का लाभ उठाना और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना था। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिदृश्य के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। सोल में दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ बैठक में डॉ जयशंकर ने कहा कि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में विश्वसनीय साझेदारों के बीच सहयोग पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है।
1: It is clearly our responsibility.
2: इस साझेदारी को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। इसमें सरकार के अलग अलग विभाग और देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलू शामिल हैं, जिनके बीच तालमेल बिठाना बहुत आवश्यक है। मैं कहूंगा कि हमें भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक आधुनिक साझेदारी की ओर बढ़ना चाहिए।
0: नागर विमानन मंत्रालय ने कहा है कि 22 जून को दिल्ली से अमृतसर जा रही एयर इंडिया की एक उड़ान को रनवे निरीक्षण के दौरान के कारण अमृतसर हवाई अड्डे पर कुछ समय तक प्रतीक्षा करने के निर्देश दिए गए थे। मंत्रालय के अनुसार इस दौरान विमान रडार के मार्गदर्शन के तहत कुछ समय के लिए पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र में प्रवेश कर गया था। ये प्रक्रिया पाकिस्तान के हवाई यातायात नियंत्रण अधिकारियों के समन्वय से की गई। बाद में विमान को दिल्ली वापस भेजा गया, जहां वे सुरक्षित रूप से उतरा। मंत्रालय ने बताया कि घटना की सूचना न देने के मामले में संबंधित एयर ट्रैफिक कंट्रोलर और विमान चालक दल के खिलाफ अंतरिम कार्रवाई की गई है। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के तारातला इलाके में निर्माणाधीन गोदाम की छत गिरने की घटना के बाद राहत और बचाव अभियान जारी है। हादसे में अब तक 5 लोगों की मौत की खबर है। घायलों का इलाज सरकारी SSKM मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में चल रहा है। इस बीच मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घटनास्थल का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि कोलकाता नगर निगम घटना की रिपोर्ट तैयार कर रही है। उन्होंने कहा कि हादसे की विस्तृत जानकारी कल विधानसभा में दी जाएगी। गुजरात के भुज क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में आज AI आधारित स्वचालित ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक का उद्घाटन किया गया। नई व्यवस्था के अंतर्गत ड्राइविंग टेस्ट से पहले वाहन का पंजीकरण, प्रशिक्षण वीडियो देखना, फोटो स्कैनिंग और RFID सेंसर लगाना अनिवार्य किया गया है। अधिकारियों के अनुसार इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और पूरी प्रक्रिया अधिक निष्पक्ष बनेगी। ईरान में मौजूद भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों के लिए यात्रा परामर्श जारी किया है। दूतावास ने कहा है कि अगली सूचना तक भारतीय नागरिक जब तक आवश्यक न हो ईरान की यात्रा न करें। दूतावास ने भारतीय नागरिकों से कहा है कि वे अपने आसपास की स्थिति पर लगातार नजर रखें और स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

रात्रि न्यूज के बाद रेडियो रिमझिम परिवार को दीजिए इजाजत केवल रेडियो से। आप हमें ऐप पर पूरी रात सुन सकते हैं। सो अगर आपने ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है तो अभी गूगल के प्ले स्टोर में जाएं, रेडियो रिमझिम लिख के सर्च करें और हमारे ऐप को डाउनलोड कर लें। उसके बाद पूरी रात आप रेडियो रिमझिम का आनंद ले सकते हैं सिर्फ और सिर्फ ऐप पर।

0: आप सुन रहे हैं जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
1: हाँ माई,
2: कहाँ बड़े बेटा, कब से फोन लगा हुआ था?
1: अरे अभी दिल्ली में बानी, लाल किला के पास।
2: नौकरी उकड़ी मिलल की ना?
1: अरे मिल जाये नौकरी, बस तुम्हारा आशीर्वाद हमारा साथे रहे के चाहिए।
2: अरे हमर लाल दिया।
3: अरे यार फिर अगले
1: ठीक बा माई, हम बाद में करता नहीं फोन।
2: काहे बेटा, का
1: अरे दिल्ली में एगो बिल्ली पीछे पड़ल बा।

0: अल्लाह के नाम पे दे दे रे बाबा।
1: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
2: आए, उठाओ भगवान क्या बने रे
3: उन्हें से कैसे क्या कहने लगा
2: पर का व्यागमण

0: ले साला काम कर यार, चुपचाप काम कर, नहीं तो तू जो यहाँ से अमरीका को ले हम
1: तू साला
0: जब दम रहो तो लेके कहना भाग के ले।
2: अब कुछ हो के वाला नहीं के लड़की के कलबरिया था होता
1: ये साला खुद कटा ये सब के कटवाई
2: जो बल्ले।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM
1: सुनो दिल से।

0: नजर मत लगा देना।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।

0: अरे पूरा इंडिया हिली बाबू, खाली तू देखत जा।
1: ध्वनि के तरंग 90.4 पर आप जिले की आवाज रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं।

0: का भाई ते इतना खुश बड़े, तोरा कुछ पता नहीं है का?
1: काहे परेशान बड़े भाई?
0: अरे आज खुशी के शादी हो रहल बा
1: भक।
0: हाँ
1: इका बोला तारे?
0: आ दुख के बात दी बा कि आज वे बारात आवता।
1: अच्छा
0: चल जाई तोरा के छोड़ के।
2: उ तोरा भाई के मोहब्बत दिया, इतना आसानी से ना जाए दे।
3: देखते रहना, मैं आता हूँ। चाचा जी नमस्ते।
4: रास्ते में जाना,
3: सबको देखते रहना, मैं आता हूँ।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

0: कुबेर के खजाने खोल दे।
1: सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: हाँ तो हमऊ किस्मत का धनी है।
1: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
2: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
1: सुनो दिल से।
3: लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।

0: Now pick it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
1: Hello.
0: Pick it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
1: Hello.
2: जब फोन घंटी बजती है तो कहते हैं हेलो
3: हेलो
4: हेलो नमस्ते नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूं आप सबकी दोस्त आरजे भारती और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। और हमारे स्टूडियो की घड़ी में 5 बज चुके हैं और बिल्कुल समय के साथ हाजिर हो चुकी हूं। आप सभी के बीच आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम हेलो माई चॉइस के साथ। यदि आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो नंबर है 8029-94-11 पर कॉल करके जुड़ सकते हैं और अपने फरमाइश सुन सकते हैं। और अब बढ़ते हैं आगे और लेते हैं पहला कॉल और सुनते हैं इनकी फरमाइश।
5: हेलो
6: हेलो
5: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 FM में। नाम बता दीजिए अपना।
6: अनवी।
5: और कहाँ से हैं आप?
6: दुबई से।
5: क्या हाल है आपका?
6: ठीक है।
5: क्या हो रहा है अभी?
6: बेबी को खिला रहे हैं, मेरे बेबी को एक प्यारा सा सॉन्ग सुना दीजिए।
5: नाम है आपकी बेबी का?
6: अनवी।
5: ओके, और कौन सा सॉन्ग सुनना है?
6: जो आपका इच्छा हो।
5: ओके, और ये सॉन्ग किसे सुनाना है?
6: मेरी बेबी को।
5: और सब बढ़िया है ना?
6: बढ़िया है।
5: चलिए फिर गाना प्ले करती हूँ, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रंजन 90.4 FM।
6: ओके।

0: हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रेंजर 90.4 FM में।
1: नमस्ते जी। नमस्कार।
0: आज
1: तो बहुत परेशान हो गया, मैं सोचा कि अब लगेगा ही नहीं। मैं सोचा एक बार और ट्राई करता हूँ, बारे तो बजी गया। और तो
0: बढ़िया है, आप बताइए।
1: बस ठीक है, आप लोगों के आशीर्वाद है, आप लोगों के सहारे चलते हैं, आप लोगों के आवाज के सहारे चलते हैं। इतनी काम छोड़ के आप लोगों के पास कॉल किया जाता है। और तो ठीक है,
0: मेरा बढ़िया, आप अपना बताइए। खाना हो गया आपका?
1: नाश्ता हुआ है, अब दोपहर में होगा ना, लंच में।
0: अच्छा जी।
1: आज अपने फरमाइश से एक गाना सुना देना कोई सा।
0: अपनी फरमाइश से?
1: हाँ।
0: अच्छा जी, आप नहीं बताइएगा?
1: नहीं, आज हम नहीं बताएंगे, आज पहली बार बोल रहे हैं आपसे।
0: अच्छा जी, चलिए बढ़िया।
1: भोजपुरी चलाना, बढ़िया चलाना अपने पसंद से। मैं भी ये भी देखूं कि आपका पसंद कैसा है, तो सुना दीजिए। ठीक है
0: ठीक है, फिर गाना प्ले करती हूँ, सुनते रहे सबके साथ।
1: थैंक यू।
0: करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।
2: Now pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
2: Pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
4: जब फोन घंटे बजते हैं तो कहते हैं hello,
5: hello, hello, hello, hello, hello.
6: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
7: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ
8: सब बताइए, ठीक है?
7: मेरा बढ़िया, आप अपना बताइए।
8: बस चल रहा है, भगवान के दया दृष्टि है। मुझे गाना सुनना है तो राजा फिल्म।
7: और इसका कौन सा सॉन्ग?
8: सॉन्ग का नाम है चोट लगे तुझको तो दर्द मुझे होता है, भाई भाई में असर ये होता है।
7: और ये सॉन्ग किसको डेडिकेटेड भी है?
8: सबसे पहले तो आपका है और जितना श्रोता बंधु है सुनने वाले फिल्म का, सबसे अक्सर ज्यादा रामा जी हावे भाई को सुनाना है क्योंकि वो भी बहुत पुराने पुराने गाने का फरमाइश कर।
7: जी जी
8: ठीक है, बजा दीजिएगा
7: फिर गाना प्ले करते हैं। सुनते रहे सबके साथ रेडियो रंजन में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
8: आपका

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 एफएम में।
0: नमस्ते।
1: नमस्ते,
0: हम बोल रहे हैं गोपालगंज डीसी से, रामपुर खरिया पंचायत से।
1: जी जी,
0: जयनाथ भगत।
1: क्या हाल है आपका?
0: ठीक है जी, आपको आप बताइए।
1: मेरा भी बढ़िया है।
0: हमको गाना सुनना है हाथी साथी को।
1: मेरा कौन सा सॉन्ग सुनना है आपको?
0: कोई भी सॉन्ग सुना दीजिए हाथी साथी।
1: अच्छा, और ये सॉन्ग किसी को डेडिकेटेड भी है?
0: आपको सुनाया गया, जितना रेडियो रंजन सुनने वाले हैं सबको सुनाएंगे।
1: चलिए फिर गाना प्ले करती हूँ, सुनते रहें सबके साथ रेडियो रंजन 94.4 एफएम।
0: नमस्ते। नमस्ते
1: नमस्ते।
2: आठ

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: Now pick it up, hello. Now pick your phone up, hello. Pick it up, hello. Now pick your phone up, hello.
2: जब फोन की घंटी बजती है तो कहते हैं हेलो, हेलो, हेलो, हेलो, हेलो,
3: हेलो। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94911। जी हाँ, 8029-94911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
4: हेलो मैम, नमस्ते।
5: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रेंजिम 90.4 FM में।
4: सुनील कुशवाहा बात कर रहा हूँ मैम, मैयर एमपी से।
5: जी जी, कैसे हैं आप?
4: बस ठीक है मैम, बस बैठे थे, आज बहुत जल्दी फोन लग गया मैम।
5: तो और सब बताइए, क्या हो रहा है अभी?
4: कुछ नहीं मैम, बस वो का इंतजार कर रहे थे और फोन लगाते हुए मैम।
5: अच्छा, तो बता दीजिए कौन सा गाना सुनना है आज आपको।
4: जी आज हमको सुनवा दीजिएगा गाने से बोल है, अक्सर इस दुनिया में अनजाने मिलते हैं, मिलते खो जाते हैं, फिल्म अंदाज से होएगा मैम।
5: ओके, और ये सॉन्ग किसी को डेडिकेटेड भी है?
4: कितने रेडियो रेडियो रिमझिम दोस्त लोग सुनते हैं, सभी दोस्तों के साथ सुनना चाहते हैं।
5: ओके, तो गाना प्ले करें।
4: ओके मैम, धन्यवाद।
5: रेडियो रिमझिम में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो,
1: प्रणाम मैडम।
0: प्रणाम। बहुत बहुत स्वागत है रेडियो रंजन 90.4 एफएम पे।
1: कॉल करते करते थक गए, नहीं एकदम बिजी बिजी बतावत रहा है। का समाचार बा? ठीक बा ना?
0: हमार ठीक बा, अपन बताए रोवा रोवा कैसन बानी?
1: हम सब ठीक बा, पहाड़ में ठीक बा। वर्षा हो बिहार में ना होला?
0: अभी तो नहीं खेत, अभी तो बारिश होते नहीं, गर्मी पड़ता।
1: यहाँ तो पूरा बारिश हो रहा है, रात में पूरा बारिश, सुबह पूरा बारिश पहाड़ में। यो गाना सुना भी?
0: बताई कौन सा गाना सुने?
1: राम लखन, हिंदी मूवी के मैं राम लखन ऐसे गाना बा ना।
0: हाँ हाँ,
1: इसे सुना दे ना।
0: ठीक बा, गाना के नाम सुना के बा?
1: रावत तो पहले सुना, उसके बाद में हम सुना, कोई सुनी।
0: हाँ
1: हाँ, हमारा नाम महेश शर्मा, कालीपुर से बोले था जी। मैडम का प्रणाम सुना दे।
0: ठीक बा, प्रणाम। रेडियो रिमझिम में कॉल करे खातिर बहुत बहुत धन्यवाद।

0: ध्वनि के तरंग 90.4 पर आप जिले की आवाज रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं।
1: Now pick it up, pick it up.
2: Hello.
1: Now pick your phone up.
2: Hello.
1: Pick it up, pick it up.
2: Hello.
1: Now pick your phone up.
2: Hello.
3: जब फोन की घंटी बजती है तो कहते हैं हेलो
4: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हाँ नमस्ते मैडम।
6: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 92.4 FM में।
5: मैडम गाना सुनना है।
6: क्या नाम है आपका?
5: रानी
6: जी।
5: रानी,
6: और कहाँ से हैं आप रानी जी?
5: कररिया से बोल रही हूँ।
6: ओके, क्या हो रहा है अभी?
5: अभी कुछ नहीं हो रहा है, बैठे हैं अभी।
6: अच्छा जी, क्या करती हैं वैसे आप?
5: ऐसे घर पर रहते हो।
6: अच्छा चलिए मैं, और हाल चाल कैसा है आपका?
5: ठीक है, आपने सुनाइए मैडम।
6: मेरा भी बढ़िया है। तो बता दीजिए आपको कौन सा गाना सुनना है?
5: शारदा के आवाज में गाना कोई भी सुना दीजिए भोजपुरी में।
6: आप अपनी पसंद बता देती तो बहुत अच्छा होता।
5: अपने पसंद से सुना दीजिएगा खेसारी लाल के आवाज में।
6: जी हम तो रोज ही सुनाते अपनी पसंद का। अभी इसको फायदा आपको उठाना चाहिए ना। हाँ
5: आज भी सुना दीजिएगा अपनी पसंद से।
6: अच्छा चलिए, और सॉन्ग किसी को डेडिकेट भी करेंगे?
5: आपको और जितना रेडियो रंजू सुनने वाला है उन सबको।
6: तो फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सब।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, नमस्ते
1: नमस्ते। बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 FM में।
0: जी पचकड़ा से बोलते हैं भोला जी।
1: हाँ हाँ, क्या हाल है आपका?
0: ठीक है, अपना बताएं।
1: मेरा भी बढ़िया है।
0: धूप तो बहुत तेज निकला है।
1: धूप तो है
0: आज, तो कार्यक्रम बहुत भीड़ चल रहा है जी। 11:25 से कॉल कर रहे हैं लेकिन लगता ही नहीं है, बिजी बिजी बिजी अब जा रहा है। बहुत मेहनत की है आज कॉल करने के लिए।
1: ये भोजन हो गया आपका?
0: हाँ हाँ, भोजन हो गया। आराम से घर में पंखा चल रहा है, सो कर कॉल कर रहे हैं आपके पास।
1: चलिए, गर्मी का मौसम है तो कोई कहाँ ही जाएगा। तो बता दीजिए कौन सा गाना सुनेंगे आप?
0: आज गाना एक सोहर सुनवा दीजिए, धनी धनी भारत लिया जनामवा हो।
1: अच्छा,
0: वही अलग गाना सुना है, सोहर सुना दीजिए।
1: ओके, और ये किसी को सुनाना भी चाहते हैं?
0: रेडियो इनका पूरे टीम को, जितना आदमी सुनते हैं। आप सुनेगा, हम सुनेते हैं जी। भारती जी बोलते हैं लोग।
1: हाँ
0: हाँ हाँ, आवाज वे से कह रहे हैं कि जी।
1: चलिए फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए
0: जी। जी
1: रेडियो रेंज 90.4 FM
0: जी। नमस्ते
1: नमस्ते।

0: करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94911। जी हाँ, 8029-94911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
1: हेलो
2: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 FM।
1: नमस्कार मैम।
2: नमस्कार,
1: मैं पप्पू ठाकुर बघई से।
2: क्या हाल है आपका?
1: बढ़िया जी, अपना बताइए।
2: मेरा भी बढ़िया है।
1: अभी तो बहुत गर्मी है।
2: जी गर्मी तो है।
1: जी जी, हमारे यहाँ 2-3 दिन पहले बहुत तेज आंधी आई थी। बहुत सारे बिजली के खम्भे और पेड़ उखड़ गए थे। दो तीन दिन तक लाइट नहीं थी। बहुत कड़ी मशक्कत करने के बाद से कुछ प्रशासन वाले ने मिलकर और बिजली विभाग ने मिलकर अभी लाइन बहाल किया है। लाइट मोबाइल वाली चार हुआ है जी। हाँ बोल रहे हैं मैडम, गाना एक सुनवा दीजिए।
2: क्या दीजिए, कौन सा गाना सुनना है?
1: गाना है पुराना फिल्म है लैला मजनू, उसमें का एक सॉन्ग है ऋषि कपूर पर फरमाया गया फिल्म है और आवाज है मोहम्मद रफी का। बर्बाद मोहब्बत की दुआ साथ लिए जा,
2: गाने के बोल रहे हैं।
1: सॉन्ग है।
2: अच्छा
1: जी जी, गाने की बोल
2: रहे। ठीक है, फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो। थैंक यू।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका 90.4 एफएम में।
0: हाँ जी, हम परमात्मा महतो बोल रहे हैं जी।
1: कैसे हैं आप?
0: कॉल लगा के तो थक गया मैं तो लगा अभी।
1: अच्छा जी, आज बता दीजिए आपको कौन सा सॉन्ग सुनना है।
0: कोई भी सॉन्ग अपनी मर्जी से सुना दीजिए बस।
1: आप नहीं बताइएगा कॉल किए।
0: पंकजपुरी का गाना जो नहीं है उसमें का कोई, पंकजपुरी का गाना जो है थी उसका भी है। ठीक है जी,
1: सतपुर गाना प्ले कर रहे हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रूम से कॉल करने के।
0: हाँ जी, ओके।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: Now pick it up, pick it up.
2: Hello.
1: Now pick your phone up.
2: Hello.
1: Pick it up, pick it up.
2: Hello.
1: Now pick your phone up.
2: Hello.
3: The phone ring, de bajti hai to kehte hain hello.
4: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 FM में। नाम बता दीजिए अपना।
6: रजिया खातून।
5: कहाँ से हैं आप रजिया जी?
6: पेट्रोलिया।
5: ओके, कैसी हैं आप?
6: बढ़िया है, अपने सुनाइए।
5: मेरा भी बढ़िया है। तो और बताइए क्या हो रहा है अभी?
6: क्या हो रही है? नहा रही
5: हूं,
6: बैठा है।
5: अच्छा जी, तो बताइए आपको कौन सा सॉन्ग सुनना है?
6: मैं गाना नहीं, अपने दिल में पापू का तू दिल ना दुखा ये गाना सुना दीजिए।
5: ओके, और ये सॉन्ग किसी को डेडिकेटेड भी है?
6: हसमुल है, सब्बू है।
5: ओके, तो चलिए फिर गाना प्ले करती हूँ, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रंजन में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
1: नमस्ते मैम।
0: नमस्ते
1: नीतीश कुमार।
0: और कैसे हैं आप?
1: हम मॉडर्न से।
0: अच्छा, क्या हो रहा है अभी?
1: हम लोग ने फोन लगा रहे थे।
0: क्या करते हैं वैसे आप?
1: पढ़ते हैं।
0: चलिए बढ़िया है, तो बता दीजिए कौन सा गाना सुनना है आपको?
1: मधुर की अंजनी हम वाला सुन सकते।
0: ओके, और ये सॉन्ग किसी को सुनाना भी चाहते हैं?
1: पहले आपको और मेहमान को और रेडियो रंजन वाले को।
0: ओके, तो फिर चलिए गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रंजन में। कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: जब फोन की घंटी बजती है तो कहते हैं हेलो।
4: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो।
6: हेलो जी, नमस्ते।
5: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
6: धन्यवाद।
5: हाँ जी, नाम बता दीजिए अपना।
6: जी मैं धर्मेंद्र यादव, अलीराजपुर चंपारण बिहार से।
5: अच्छा, कैसे हैं आप?
6: जी बढ़िया, आप बताइए।
5: मेरा भी बढ़िया है
6: जी। तो एक सॉन्ग सुना दीजिए, तुम्हें देखे मेरी आँखें, इसमें क्या मेरी खता है।
5: और ये सॉन्ग किसी को डेडिकेटेड भी है?
6: जी ये सॉन्ग तो मैं सबसे पहले आपको सुनाना चाहूंगा और अभी रेडियो से जुड़े संपूर्ण श्रोता मित्रों को सुनाना चाहूंगा।
5: ओके,
6: थैंक यू।
5: चलिए गाना प्ले कर रहे हैं।

0: नमस्ते मैडम जी।
1: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 FM में।
0: कैसी है मैडम जी?
1: मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं?
0: मैं भी अच्छा हूँ।
1: तो क्या हो रहा है अभी?
0: अभी तो आपको इंतजार आ रहा है।
1: और सब बताइए कैसी हैं?
0: और सब ठीक है। आपका इंतजार हो रहा है मैडम जी को अपन उठाएंगे, गाना बताएंगे।
1: बताइए कौन सा गाना सुनना है आपको?
0: गाना सुनना है? गाना बोल देते हैं।
1: हाँ हाँ बता दीजिए।
0: दूसरा गाना है ये तो साई बाबू का।
1: कौन सा?
0: ओ साई बाबू साई बा।
1: ओके, और ये सॉन्ग किसी को डेडिकेटेड भी है?
0: आपको जितना रेडियो सब है दो सब सुनते हैं आपके साथ।
1: ओके, तो चलिए फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ। रेडियो रंजन में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद
0: जी मैडम जी। नमस्ते
1: नमस्ते।

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM,
1: सुनो दिल से।
2: Pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
2: Pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
4: Jab phone ki hindi bajti hai to kehte hain hello, hello, hello.
5: तो दोस्तों, छोटा सा ब्रेक था और अब ब्रेक हो चुका है खत्म। एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं को दिल से बहुत बहुत स्वागत आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम हेलो माई चॉइस में, सिर्फ रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे अपने जिले की आवाज पर। अगर आप भी अपने पसंद के गीत को इस महफिल का हिस्सा बनाना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए हमारा नंबर 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। और इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं सोमवार, बुधवार, शुक्रवार सुबह 11 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक। तो चलिए दोस्तों, अब वक्त है इस संगीत भरी महफिल को आगे बढ़ाने का। जानते हैं कौन है हमारे अगले श्रोता, कहां से जुड़ रहे हैं और कौन सा गीत बन रहा है उनकी यादों और एहसासों की आवाज़। तो आइए बढ़ते हैं आज की अगली फरमाइश की ओर, सुनते हैं उनकी पसंद का एक शानदार नगमा सिर्फ रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर।

0: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
1: आपको नमस्कार सुनिए
0: जी, लाल बहादुर बात कर रहे हैं।
1: जी जी कैसे हैं आप?
0: बिल्कुल बढ़िया, आप बताइए आप कैसे हैं?
1: हम भी ठीक है, बहुत प्रयास किए तब लगा है।
0: क्लियर फाइनली लग गया?
1: हाँ फाइनली तो लग ही गया। और सब ठीक है? और सब ठीक ठाक न?
0: जी जी सब बढ़िया है। तो गाना कौन सा सुना दे आज आपको?
1: ना फिल्म का
0: कौन
1: सा? तो देर ना हो जाए, आज आ रही मैं तेरा रास्ता देख लिया।
0: और सुनाना भी है?
1: हाँ ऋषि कपूर, सुरेश सुरेश राठौर का उसमें आवाज भी है। यही गाना सुना दीजिएगा हमारे स्वच्छता कर्मी में लगे हैं ग्रामीण से उनको और हमारे इंजीनियर सरस्वती बाबा और इनके प्रसाद।
0: तो प्ले करे गाना आपकी?
1: ठीक है,
0: ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हेलो माई चॉइस में कॉल किया।

0: आप सुन रहे हैं जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: Jab phone ding ding bajte hai to kehte hain hello, hello, hello, hello, hello.
4: Break ke baad aap sabhi ka ek baar fir se swagat hai Hello My Choice ke show mein. आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो
6: हेलो
5: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
6: भारती जी बोल रही हैं?
5: हाँ हाँ।
6: अच्छा तो बहन जी, मैं बोल रहा हूँ सुनील साहू मधुसूदनगर जिला गुना से।
5: जी जी, क्या हाल है आपका?
6: बस बैठे हैं और आपको ही फोन लगा रहे थे यार, तो बहुत परेशान हुए दीदी। आज जाके फोन लगा है, 11 बजे से लगा रहे हैं।
5: अच्छा जी।
6: जी आज बहुत परेशान हुए हैं फोन लगाने में।
5: आज तो कॉल ज्यादा ही आया है।
6: जी जी जी।
5: और
6: तो बस पानी गिर रहा है हमारे यहाँ पर, आपके यहाँ?
5: नहीं, हमारे यहाँ तो बहुत गर्मी है, धूप निकला हुआ है।
6: तो पानी भेज दें क्या आपके उधर?
5: हाँ हाँ भेजिए, बिल्कुल भेजिए।
6: भेज रहे हैं हम, गाने के साथ भेज रहे हैं।
5: जी बिल्कुल।
6: तो आज की फरमाइश रहेगी बहन जी हमारी, तो भोजपुरी सुना देंगे ना आप?
5: जी बिल्कुल सुनाएंगे।
6: पिक्चर का नाम है ससुरा बड़ा पैसे वाला।
5: ओके।
6: और गाने के बोल है सैया जी दिलवा मांगे ले गमछा बिछाई के।
5: ओके। और ये सॉन्ग किसी को डेडिकेटेड भी है?
6: जी आपको है सबसे पहले, और हमारे दोस्त है मांगीलाल जी और गोपाल ओझा ककबासा से और गजराज सिंह लोधी है। जी और आपको भी है गाना डेडिकेट।
5: ओके चलिए फिर गाना प्ले करते हैं।
6: धन्यवाद जी,
5: सुनते रहिए रेडियो 90.4 FM।

0: हेलो
1: हेलो नमस्ते जी।
0: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 एफएम में।
1: हाँ जी, हमें संतोष महतो बोल रहा है, दिवा दिगौली बैकुलपुर से।
0: कैसे हैं आप?
1: बढ़िया है, आप सुनाइए।
0: मैं भी बढ़िया हूँ। क्या हो रहा है अभी?
1: अभी तो पंजाब में है, काम हो रहा है।
0: अच्छा, क्या काम करते हैं वैसे आप?
1: हम लोग मजदूरी करते हैं।
0: अच्छा जी, और बताइए, और सब बढ़िया है ना?
1: हाँ जी बढ़िया है।
0: तबीयत ठीक है ना?
1: हाँ जी बढ़िया है।
0: चलिए, बढ़िया ही होना चाहिए। तो बता दीजिए, आपको कौन सा गाना सुनना है?
1: गाना सुना दीजिए। गाना तो बहुत किस्म के सुनने का मन करता है, बाकी अब एक कौन कौन सुनेंगे?
0: कोई नहीं, सब रोजाना दिन आता ही है, रोज रोज एक एक को बताइएगा, रोज रोज सुनिएगा।
1: हाँ जी,
0: आज बता दीजिए, आज कौन सा सुनना है?
1: गाना सुना दीजिए, गर्मी गर्मी बेना डुलाने वाला।
0: भोजपुरी सॉन्ग है?
1: हाँ जी।
0: गाने का थोड़ा सा लाइन याद है?
1: गाने गर्मी में बेना डुला दो।
0: और ये सॉन्ग किसी को सुनाना भी चाहते हैं आप?
1: ये परमात्मा बिजली बिजली के धनंजय को, हरकृष्ण को, बादल को, सबसे पहले आपको।
0: ओके ओके, तो फिर गाना प्ले करती हूँ, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रंजन में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: Now pick it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
1: Hello.
0: Pick it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
1: Hello.
2: जब फोन घंटी बजती है तो कहते हैं हेलो
3: हेलो हेलो हेलो हेलो
4: तो श्रोताओं अभी आप हेलो माई चॉइस सुन रहे थे मेरे साथ यानी आरजे भारती के साथ। और अब हमारे स्टूडियो की घड़ी के कांटे इशारा कर रहे हैं समय हो गया है शो की समाप्ति का। यदि आप भी चाहते हैं इस कार्यक्रम से जुड़ना तो सोमवार बुधवार शुक्रवार को सुबह 11 बजे से 12:30 के बीच हमारे नंबर 8029994911 पर कॉल करके जुड़ सकते हैं। तो फिलहाल हमें आज इस शो से दीजिए जाने की इजाज़त, मिलते हैं अगले दिन, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल और अपनों का भी। सुनते रहें रेडियो रिमझिम 90.4 FM। नमस्कार।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM,
1: सुनो दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

0: बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: बस बस बहुत हो गया, माफ कर दिया तुम लोगों।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

श्रीमन नित्य निकुंज विहार ने नमः। श्री बिहारी बिहारिणी जो जयति, श्री स्वामी हरिदासो विजयते तराम। ब्रजमंडल की जो अधिष्ठात्री देवी हैं वो हमारी श्यामा जो श्री राधा रानी है। जो ब्रजमंडल 84 कोस में फैला हुआ है, जिसमें कि श्री राधा रानी का हृदय स्वरूप हमारा श्रीधाम वृंदावन है। तो आइए मेरे साथ मिलकर युगल छवि का ध्यान करते हुए और श्री राधा नाम का आश्रय लेकर ब्रजमंडल के प्रमुख स्थानों का नाम लेते हुए श्रीधाम वृंदावन से अपनी यात्रा को प्रारंभ करिए। और मेरा विश्वास है कि इस मानसिक ब्रज यात्रा से आपको वास्तविक ब्रज की यात्रा करने का ही फल मिलेगा।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

0: आप सुन रहे हैं जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
1: राधा, ओ राधा।
2: क्या है? मैं नहीं बोलती।
1: देखो आज होली है, मुझे तंग क्यों कर रही हो?
2: जा, मैं नहीं सुनती।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

0: मुस्तफापुर वैशाली
1: 9162154619।
2: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
3: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
2: सुनो दिल से।

0: बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM
1: सुनो दिल से।

0: सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है, सुनो दिल से।
1: प्रेम से बोलो विष्णु भगवान।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।